आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के बैसाख मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 मई 2026 सुबह के 5:53 और 13 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे दें हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। हर घंटे देश और दुनिया की जानकारी के लिए समाचार तो आप सुनेंगे ही, साथ ही आज के अन्य कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें। 6:05 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन और इसके ठीक बाद कार्यक्रम सुप्रभात लेकर साथ रहेंगे गौतम। 7:05 पर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में आपके साथ होंगे गौतम और सीमा, आपको रूबरू कराएंगे दिल्ली और उसके आसपास होने वाली गतिविधियों से। 9:00 दिल के तराने, गाने नए पुराने लेकर एक बार फिर आपसे मिलेंगी सीमा।

10:05 पर पाश्चात्य संगीत के कार्यक्रम में अदिति बिष्ट रहेंगी आपके साथ मैचलेस म्यूजिक आर लेकर, और 12:05 पर एक बार फिर अदिति लेकर आएंगी प्लेट कूल cool।

तीन बजे सुनिएगा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, जिसमें आज आपके साथ होंगी डॉक्टर मधु खुराना, योग थेरेपिस्ट, और साथ ही रीता गंगवानी।

0: विरासत की उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। अब से कुछ ही देर में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा, कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित

0: करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: और अब पेश है प्रायोजक प्रोग्राम।
2: This program is sponsored by FR Media Academy.
3: दोस्तों, अपने वादे के अनुसार फिर हाजिर है आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन करिए स्वीकार हमारी। नमस्ते, सलाम और प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, यही सत्य वचन है कि हम सब मिट्टी से बनी ईश्वर की वो रचना है जिसे स्वयं ईश्वर ने अपने हाथों से रचा और उसमें जीवन का श्वास फूंका। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जब बनाया तो उनको अदन की वाटिका में रखा, लेकिन हव्वा के द्वारा जब पाप इस दुनिया में आया तो मनुष्य परमेश्वर से दूर होता चला गया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मनुष्यों का साथ और उनसे प्यार करना नहीं छोड़ा। इसीलिए आदि से लेकर आज तक वो हमेशा हमारे साथ

जी हाँ, यही सत्य वचन है कि मनुष्य सर्वदा अपने लाभ की चिंता करता है और इसीलिए जल्दी शैतान के बहकावे में आकर गुनाहों में गिर जाता है। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि अगर मनुष्य परमेश्वर के वचन को थामे रहे और उसका अनुसरण करता रहे तो परमेश्वर सदा सदा उसकी हिफाजत करता रहेगा और अपनी आशीषों से भरता रहेगा।

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन एसआर यानी संतोष राव के साथ। जी हाँ, यही सत्य वचन है कि मनुष्य खाली हाथ इस संसार में आया है और खाली हाथ ही चला जाएगा। ये धन दौलत मान सम्मान सब यहीं छूट जाएंगे।

ये दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि व्यर्थ की बातों में रहकर अपने जीवन के दिनों को मत गवाओ, बल्कि अपने परमेश्वर की आराधना और महिमा करते हुए उसके नाम को ऊंचा करते रहो, ताकि उसका प्रतिफल तुमको स्वर्ग में मिल सके।

जी हाँ, परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए उसके धर्म और राज्य की खोज करना होगा। अपने आप को धन दौलत के पीछे भागने से बचाना होगा, क्योंकि यही सत्य वचन है कि जो मनुष्य दो नावों पर पैर रखता है वो अपने जीवन को जोखिम में डालता है। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। मैसेज या फोन करने के लिए हमारा नंबर है 9693644242। जी हाँ, 9693644242। और हमारा दूसरा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल यानी शुक्रवार सुबह 6:05 पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेल, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। वॉकिंग करते करते आ चुका हूं मैं। सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉपी टू ऑल। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त आरजे गौतम आ चुका है स्टूडियो में। एंड कहा जाता है कि हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आकर गले। वाह वाह वाह। और चलते चलोगे तो फिर मंजिल मिल ही जाएगी, नहीं तो मुसाफिर तो हुई। सुप्रभात।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

Well, namaskar, sat sri akal, adab and copy to all. This is your host and those RJ Gautam. And कहते हैं कि रात के बाद सवेरा जरूर आता है, लेकिन अक्सर डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ढेर सारे लोग जो हैं वो हार मान लेते हैं। जिंदगी इम्तिहान लेती है और उस इम्तिहान की कहानी ही आज आपको सुनाने जा रहा हूं। आई एम श्योर कि शायद आपको पसंद आए। कहते हैं कि टूटता हूं हर रोज जब आईना देखता हूं, लहरा कर चलता हूं, मुस्कुरा कर मिलता हूं, मैं ना जाने हर रोज ऐसे कितनों को दगा देता हूं। एक गांव था और उस गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। रात में पढ़ाई करने के लिए बिजली भी नहीं होती थी। रवि हर दिन सड़क के किनारे लगे एक छोटे से दीपक के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। और जब लोग आगे बढ़ते हैं तो ढेर सारे लोग मजाक भी उड़ाते, है ना? गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि इतनी मेहनत करके क्या ही मिलेगा। लेकिन रवि हमेशा मुस्कुराकर कहता कि एक छोटा दीपक भी अंधेरे को हराने के लिए काफी होता है। जो लोग अकेले चलते हैं एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। लेकिन कुछ लोग पहले ही हार मान लेते हैं ना, और कहते क्या है कि अब सहन नहीं होता। आगे क्या हुआ स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा, जुड़े रहिए हमारे साथ।

यूं ही नहीं खुलते किस्मत के दरवाजे, मेहनत करनी पड़ती है, और जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने तो इतिहास रचा है, है ना। मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। और जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां कवि नहीं पहुंच पाते हैं वहां हम अपनी स्टोरीज के जरिए आपको पहुंचा देते हैं ना। तो रवि की कहानी में आपको बता रहा था ना, अच्छा मुझे याद आया काफी समय की मेहनत के बाद रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने तो इतिहास रचा है, तो बोलने दो। लेकिन रवि हमेशा मुस्कुरा कर कहता, एक छोटा दीपक भी अंधेरे को हराने के लिए काफी है जनाब। और वर्षों की मेहनत के बाद रवि ने बड़ी परीक्षा पास की और अधिकारी बन गया। उसी गांव के लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे आज उसकी सफलता पर गर्व करने लगे। इसे क्या सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, लगातार मेहनत और आत्मविश्वास इंसान को सफलता तक पहुंचाते हैं। तो मेहनत बस करते चलिए, है ना। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मंजिल मिले ना मिले ये तो अलग बात है, लेकिन हम मेहनत ना करें ये गलत बात है, और मेहनत करने के लिए आपको जागना पड़ेगा और मेरी तरह जॉगिंग करते हुए भागना भी पड़ेगा। सुप्रभात, सुन रहे हैं आरजे गौतम के साथ।

कि माँ बाप का साथ नहीं, किसी के कहे पर भरोसा हो जाए, ऐसी किसी में भी बात नहीं। ए बड़े शहर, तेरा बहुत कर्जा है मुझ पर, सब चुकाऊंगा बारी बारी। वेल, जब कोई हमें नुकसान पहुंचाता है ना जीवन में, और फिर गलती का एहसास होने पर माफी भी मांग लेते हैं लोग, तो गुस्सा ना करें। मतलब वो वाला डायलॉग याद ना करें कि घायल हूं इसलिए घातक हूं, बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा है ना, उसे तुरंत माफ कर देना चाहिए। इससे हमारी जो ऊर्जा बचेगी उसे भविष्य को बेहतर बनाने में खर्च करना चाहिए। और जो लोग खुद पर खर्च करते हैं, आपको तो पता है ना, सोशल मीडिया पर लोग उन्हीं को सर्च करते हैं। और लत लगा लीजिए कि कम से कम अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, आप पानी पीते चले 4-5-6 लीटर, है ना, तो गुस्सा थोड़ा कम, फिटनेस के

फिटनेस की लत होनी चाहिए आपके अंदर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉफी टू ऑल। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त आरजे गौतम आ चुका है। एंड कहते हैं, देखना उसकी उड़ान को तो जाओ और ऊंचा कर दो आसमान को। एक बहुत अच्छा डायलॉग है जो मुझे काफी पसंद है कि आसमान में उड़ने वाले परिंदे कभी पेड़ों से दिल नहीं लगाया करते। डिटैच करना खुद को और खुद को काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर करना, ये बहुत ज़रूरी है। और एक दिन एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था, अचानक उसकी पतंग कट गई और पेड़ में फंस गई। बच्चा उदास होकर रोने लगा और पास खड़े उसके दादाजी बोले, बेटा गिरना और रुकना ये अलग बातें हैं, पतंग गिरी है लेकिन उड़ना नहीं भूली है ना। आप शुरुआत लाइफ में कभी भी कर सकते हैं, रीस्टार्ट करना लाइफ को काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर स्टक हो गए हैं या इससे आगे क्या होगा, तो अगर कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, है ना, एक्सपीरियंस मैटर करता है। और धीरे धीरे हालात अपने आप सही होते नजर आएंगे।

किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है। तो चलिए बेहतरीन अंदाज के साथ ही गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर सीमा आ चुकी है स्टूडियो में, यानी कि अब मुझे जाना होगा। मुझे पता है आप कहते हैं तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ ना, लेकिन मैं जाऊंगा तभी तो सीमा आएंगी। आरजे गौतम इज साइनिंग आउट, लेकिन जुड़े रहिए आप।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: भारत और इटली ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान उग्रिक उला मेडल से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। साइप्रस का शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगे। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के एक साल से भी कम समय बाद हो रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटन्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30

7 बजे खेला जाएगा। भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आपकी वाणी आकाशवाणी पे हाजिर हो चुकी है आपकी अपनी सीमा गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के साथ, और बहुत बहुत स्वागत है। और जल्दी से उठ जाओ जनाब, गुड मॉर्निंग हो गई। सो वेल फर्स्ट ट्रैक इज गुड मॉर्निंग।

उठो ना उठो, अब तो गुड मॉर्निंग हो गई है जी हाँ, 7:09 हो गए हैं और अब तो बनता है उठना और लग जाना है, क्योंकि आप सोचो ना क्या सीमा सुबह सुबह उठा रही हो, क्या सुबह की ट्रेन छूटी जाइए क्या? बिल्कुल छूट सकती है, एक एक पल एक एक लम्हा इतना कीमती है पता है, और हर दिन अपने आप में खास होता है, तो आज का दिन भी बहुत खास है और बहुत खूबसूरत।

एक दोस्ती का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, साथ का रिश्ता, और नहीं है ना तो एक गर्म चाय की प्याली वो सारे कनेक्शन बना देती है। किसी के घर जाओ तो चाय लोगे, ऑफिस में तनाव, चलो चाय पीते हैं। और प्यार की शुरुआत वो भी अक्सर एक कटिंग चाय से ही होती है, है ना। और जब हम कहीं जाते हैं तो बड़े प्यार से लोग हमारे लिए चाय बनाते हैं, बड़ी मेहनत से, बहुत ही स्पेशल चाय हमको मिलती है, है ना। और तो आज के दिन अपने पसंदीदा चाय पार्टनर को याद कीजिए, मम्मी के हाथ की अदरक वाली चाय, दोस्तों के साथ टपरी वाली चाय, और वो अकेले में बालकनी पर साइलेंट चाय। तो चलिए इसी चाय के मिठास के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गाना। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि गर्मा गर्म प्रोग्राम तो आपके साथ है ही, और गर्म चाय की प्याली मुझे लगता है कि घर में तैयार हो रही होगी, और नहीं हो रही है तो अब तो बनती है गर्म चाय की प्याली।

जी हाँ, और ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ ऐसा कर दिखाते हैं कि जिन्हें हम कभी भी भूल नहीं पाते। वो कुछ ऐसा मुकाम हासिल करके जाते हैं जिन्हें हम कभी भी भुला ही नहीं सकते। आज का दिन भारतीय इतिहास में एक भावुक याद लेकर आता है। आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। राजीव गांधी जी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने और उन्होंने देश को आधुनिक तकनीक, कंप्यूटर और दूरसंचार की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका सपना था एक ऐसा भारत जो युवा सोच, नई तकनीक और विकास की राह पर आगे बढ़े। 21 मई 1991 को एक दुखद घटना में हमने उन्हें खो दिया, लेकिन देश के विकास के लिए उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। आज इस मौके पर आइए हम उन्हें श्रद्धांजलि दें और याद करें कि उनकी वो सोच जो भारत को 21वीं सदी की ओर ले जाना चाहती थी, उनको आज हम देते हैं विनम्र श्रद्धांजलि हमारे कार्यक्रम के जरिए। और आज आपको बता दें कि कहते हैं ना कि कुछ लोग जाते नहीं हैं, इतिहास बन जाते हैं। और आज ही का दिन, आज 21 मई जो वो दिन है राजीव गांधी को, जिस दिन हमने खो दिया, लेकिन उनके विचार, उनका विजन और देश के प्रति उनका समर्पण आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। तो भारत की तकनीक और आधुनिक सोच की आगे ले जाने में उनका बड़ा बड़ा योगदान है। तो आज हमारी विनम्र श्रद्धांजलि हमारी पूरी टीम की ओर से।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
4: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो पे आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और मैं तो साथ हूँ, आप मेरे साथ हो? जी हाँ, हम साथ साथ हैं ना, साथ साथ रहेंगे ना तो ये जो ज़िंदगी है ना बहुत बहुत खूबसूरती से निकल जाएगी और पता ही नहीं चलेगा, जैसे कि टाइम निकलता जा रहा है। 7:50 हो गए हैं पता है। चलिए सुनते रहिए आपका खास कार्यक्रम।

टियागर आप साथ हो तो सब कुछ यहाँ पॉसिबल है, हम सब कुछ कर सकते हैं और बस आपका साथ बहुत ज़रूरी है। और आज अगर हम बात करें किसी खास का है जन्मदिन, जी हाँ, आदित्य चोपड़ा जी का आज जन्मदिन है। 21 मई भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माता, निर्देशक और जाने माने स्टूडियो यस यशराज फिल्म्स के चेयरमैन हैं और हिंदी सिनेमा में रोमांस के बादशाह के रूप में जाने जाते हैं। और आदित्य ने केवल

पता है 23 साल की उम्र में ही अपनी पहली फिल्म DDLG से इतिहास रच दिया था। और मैं क्या बताऊं उनके बारे में, उनकी एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्म हम देखते ही हैं। साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं कि अगर उनके हम करियर की शुरुआत करें तो महज 18 साल की उम्र से उन्होंने अपने पिता के साथ चांदनी, लम्हे और डर जैसी फिल्मों में निर्देशन का रूप में काम शुरू कर दिया था। और उनकी अगर द्वारा निर्देशित फिल्मों की हम बात करते हैं तो उसमें आदित्य ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में, मोहब्बतें, रब ने बना दी जोड़ी और बेफिक्री जैसी सुपर डुपर हिट फिल्मों का निर्देशन किया है। तो आइए आज एक बार हमारी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं और इसके साथ से मुझे तो जाना होगा, है ना, क्योंकि आ गए हैं गौतम जी। हाँ, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में बने रहिए, सुनते रहिए गौतम के साथ। और मैं सीमा लेती हूँ इजाजत, फिर मुलाकात करूंगी ठीक 9 बजे आपके साथ। तब तक सुनते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और आदित्य को हैप्पी बर्थडे कहना ना भूलें। बाय बाय।

लगता जो जलेगा उसी के दिए में तो उजाला होगा। और हौसले के मामले में झुकना नहीं और मंजिल से पहले रुकना नहीं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड गॉबी टू ऑल, गुड मॉर्निंग। दिल्ली एनसीआर लेकर आपका होस्ट, आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर है। एंड वही कहना चाहूंगा, पुष्पा पुष्पा राय सिंह के फ्लायर समझे क्या? फायर, वैसे गर्मी ज्यादा होगी है ना।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा, और बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता।

नशा तेरा करके ना जाने हमें क्या हो गया। वेल, नशे की बात कर रहा हूं मैं, चाय के नशे की बात कर रहा हूं। आज है इंटरनेशनल टी डे, यानी कि मुफ्त में दी गए राय। और मैं ही कहूंगा, वो मन को चाहे भाई या ना भाई, लेकिन ना कितनी भी गर्मी हो जाए चाय, ऑब्सेशन चाय के लिए अलग ही रहता है। और खासकर मॉर्निंग में तो थोड़ा बहुत बनता है ना, ये प्रेम इसी तरीके से बनता रहे आपका भी चाय के साथ, गर्मी कितनी भी हो।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: केले का छिलका सड़क पे, ना भाई ना। चिप्स का खाली पैकेट खिड़की से बाहर, ना भाई ना। चलिए अपने शहर, गली, मोहल्ले, घर और दफ्तर को साफ और सुंदर बनाएं और डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कचरा डिब्बे में जाएगा तभी तो भारत साफ नजर आएगा। तो कचरे को बोलो बाय बाय और स्वच्छ भारत को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
10: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
11: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
10: म्यूजिक मस्ती।
12: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
13: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
10: म्यूजिक मस्ती।

सोचिए, वीकडेज में भी आप किसी के घर जाएं और वो आपको कह दे बाय बाय विदाउट एनी चाय, ऐसा कैसे हो सकता है? इंटरनेशनल टी डे है और खूब सारा दूध खुशियों का, थोड़ी पत्तियां ख्यालों की एंड थोड़े गम को कूटकर बारीकी के साथ हंसी की चीनी मिला दीजिए, उबलने दीजिए ख्वाबों को कुछ देर तक। ये जिंदगी की चाय है जनाब, इसे तसल्ली

भारतीय सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक साथ मिल नहीं सकते ना, लेकिन कितनी हसीन मुलाकात है जनाब। जहां जहां जाओगे वहीं हमें पाओगे। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप। और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो चाहत और राहत के इस सफर में कहीं ना कहीं गर्मी ने थोड़ा सा विकराल रूप जरूर ले लिया है और इससे दिल्ली वासियों को राहत मिलने की उम्मीद अभी थोड़ी कम है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक भीषण लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में इस सप्ताह अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। वेल, हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को जितना हो सके, 12 से 4 के बीच में कम बाहर निकले अगर ज्यादा जरूरी नहीं है तो, और हाइड्रेटेड रखना खुद को बहुत जरूरी है। तो जुग जुग जियो और रज के पानी पियो।

well, कमाल का काम करने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करके पसीना बहाओगे तो दूर तक जाओगे, और क्रिकेट के मैदान में अगर पसीना बहाओगे तो हाफ सेंचुरी और सेंचुरी जरूर लगाओगे। वेल, वैभव सूर्यवंशी, नाम तो सुना ही होगा, विश्व क्रिकेट की सनसनी बन चुके भारत के छोटे उस्ताद वैभव सूर्यवंशी ने ठीक वही किया जो उनसे उम्मीद थी। लेकिन इस बार राजस्थान के खुद को टीम की अगर बात करें तो टूर्नामेंट में जिंदा रखने के लिए अपनी टीम के लिए बीच में सबसे जरूरत के समय वैभव ने ऐसा अटैकिंग क्रिकेट खेला कि आने वाले समय में याद किया जाएगा। वो पूरे क्रिकेट जगत को मदहोश उनकी पारी ने कर दिया। एक समय वैभव शुरुआत में थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में खेलते हुए 10 गेंदों पर 5 रन उन्होंने बनाए थे, और लेकिन अगली सिर्फ 28 गेंदों पर वैभव ने तूफानी 88 और कुल 93 रन बनाकर मुकाबला राजस्थान के पाले में कर दिया। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां पर ऐसे धुरंधर खड़े होते हैं वैभव सूर्यवंशी। एज इज जस्ट अ नंबर, इस बात को प्रूव कर दिया है। प्यार होता होता कई बार है, लेकिन एक ही दिल है। कितनी बार जीतोगे वैभव?

बार होता होता होता कई बार है, कितनी बार होता है। एंड दिल से दिल तक 102.6 FM, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। और जाग जाइए, कहीं ना कहीं फिटनेस के मामले में भाग जाइए, रनिंग करना बहुत जरूरी है, या जो भी आप पसंद करते हैं लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। कल करे सो आज करे, आपको पता ही है ना, हर रोज कहीं ना कहीं ये बहाने, इतने सारे बहाने कहाँ तक आजमाओगे। मुझे पता है कि दिल्ली का वेदर जो है वो आपके बॉस की मूड की तरह कभी भी बदल सकता है, लेकिन कभी कभी पेशेंस रखना लाइफ में बहुत जरूरी होता है। कहते हैं खुद की मर्जी का हो जाए तो बहुत बढ़िया, और जब आपकी मर्जी का नहीं होता तो फिर ऊपर वाले की मर्जी का होता है और वो बेहतरीन होता है। जस्ट वेट एंड वॉच।

कम ट्रैवल आप कर सके, गर्मी ज्यादा है, हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को। एक बढ़िया खबर मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली सरकार की पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना ने राजधानी में महिला सशक्तिकरण की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। एंड बताया जा रहा है कि अब तक 8 लाख से अधिक महिलाओं को ये स्मार्ट कार्ड जारी किया जा चुका है और सरकार का दावा है कि यह योजना केवल मुफ्त यात्रा तक सीमित नहीं है बल्कि महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और तकनीक आधारित परिवहन उपलब्ध कराने का बड़ा माध्यम भी बन रही है। तो ये कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ है।

वेल, दहाड़ और पहाड़ कहीं ना कहीं ये राइमिंग मैंने इसलिए बनाई है बिकॉज ढेर सारे आपके दोस्त जो है ना अब कहीं ना कहीं दहाड़ लगा रहे होंगे कि ले चलो उन्हें पहाड़, लेकिन लेकिन लेकिन कोशिश कीजिए।

तेज रनों की गुहार और चढ़ता हुआ बुखार, इन दोनों का इलाज है जरूरी। राज है आईपीएल में मुकाबला, चेन्नई का विसल पोड़ू और दूसरी तरफ है गुजरात। केम छो मजा माचो अहमदाबाद में होने वाला ये मुकाबला, और चेन्नई के लिए मैच करो या मरो जैसा है। टीम ने 13 मैच में से 6 मुकाबले जीते हैं और 12 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल के 6 स्थान पर काबिज है। उसे प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए हर हाल में जीत चाहिए। जीत के लिए बस जुनून चाहिए, जिसमें आग वैसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, इरादों में जीत की गूंज चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। वही दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, एंड ये कहना चाहूंगा गिल क्या आज चुरा पाएंगे लोगों का एक बार फिर से दिल। एंड टीम ने 13 में से 8 मुकाबले जीते हैं और 16 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है। लेकिन चेन्नई के फैंस के लिए मुकाबला, चेन्नई की टीम के लिए मुकाबला बहुत ही इंपॉर्टेंट है।

आरजू झूठ है, फरेब है, आरजू का फरेब खाना नहीं, खुश जो रहना हो जिंदगी में अगर दिल कभी किसी से लगाना नहीं। मजाक कर रहा हूँ, दिल जले नहीं, दिल वाले हैं हम। और यही है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क नहीं है ये, 7-13 मेरे लिए जैसे डिस्काउंट, जितना मिले उतना कम है ना डिस्काउंट का ऑफर। और ये ऑफर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा मेरे साथ तो, बिकॉज मेरे जाने का समय आ गया है एंड सीमा का फिर से आने का स्टूडियो में समय आ चुका है। वेल जेंटलमैन, दिस इज द डे यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट यू ऑलमोस्ट गॉट कैप्टन जैक स्पैरो। नाउ कैप्टन जैक स्पैरो और फारजे गौतम इज साइनिंग आउट, लेकिन हम है रही प्यार के।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: सस्टेनेबिलिटी कर्मा, अ पॉडकास्ट सीरीज ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड ESG और एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस।
2: वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ सस्टेनेबिलिटी कर्मा। आई एम योर होस्ट नैना गौतम एंड टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर अजय माथुर। ही इज द फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। प्रेजेंटली ही इज वर्किंग एज प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एट द School of Public Policy at IIT Delhi. Welcome to the show.
3: I'm delighted to be with you.
2: What is

एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम। जी हाँ, दिल के तराने गाने नए पुराने और गाने नए पुराने लेकर हाजिर हो चुकी हूँ मैं एक बार फिर से आपकी अपनी सीमा आपके आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। और बने रहेंगे पूरे 9 बजे से पूरे 10 बजे तक, बस तुम्हें ही अपना माना है इसीलिए आ जाते हैं हम बार बार, क्योंकि आप अपने हैं, आप हमारे हैं और बस

जी हाँ, धीरे धीरे और ये प्यार भरी बातों में कैसा कमाल हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता। और वक्त जो है इतनी तेज़ी से गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। तभी तो हमारे जो पुराने सुपर हिट गीत हैं वो आज भी हमारे दिलों को जवां बनाए रखे हुए हैं, और जहाँ हमारे नए गीतों की बात होती है तो उनका मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो यही तो कार्यक्रम है हमारा, जी हाँ, दिल के तराने, गाने नए पुराने। और गाने नए पुरानों की बात होती है, और जैसे ही समय होने वाला होता है 9:15, तो बस मन में ना एक सितारे से झिलमिल सितारे दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हाँ, आने वाला है हमारा खूबसूरत सा ट्रैक। जी हाँ, हमारा वो ओल्ड सुपर हिट ट्रैक।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: शहर का कोना कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावरग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
5: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
9: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
8: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
9: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
10: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो।

साथ ही चलो जल्दी जल्दी जल्दी। जी हाँ जी, पूरे मेरे को लगता है कि 9:30 होने वाले हैं और चलते चलते पता ही नहीं चला कि इतना वक्त बीत गया है। और नए और पुराने गीत एक खास जगह बनाए हुए हैं हमारी ज़िंदगी में, हर मोमेंट के लिए, हर लम्हे के लिए। हमारे पास ये खूबसूरत सा गीत होता है जो हमारी खुशी को 4 गुना बढ़ा देता है ना। तो चलिए आज एक ट्रैक और आपको सुनाते हैं, बहुत दिनों बाद सुना होगा लेकिन एक बहुत बड़ी स्माइल आने वाली है, सच्ची।

जी हाँ, और फिर नज़र से मिला दीजिए, और नज़र मिलाते मिलाते पता नहीं इतना वक्त बीत गया कि पता ही नहीं चला, और 9:49 हो चुके हैं। और इसी के साथ मैं सीमा लूँगी इजाज़त, बहुत जल्द मुलाकात करूँगी आपके साथ, तब तक यूँ ही सुनते रहिए आपका अपना कार्यक्रम जी हाँ आकाशवाणी FM रेनबो पर। टेक केयर, बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया

प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शुरू हो गया है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनाधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्ट मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनः मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और कांचीपुरम विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह लगभग इसी समय लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सरकार को कांग्रेस के 5 विधायक वीसीके, आईयूएमएल, सीपीआई, सीपीआईएम के 2-2 विधायक और एसपी वेलुमड़ी के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके गुट के 22 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैचलेस म्यूजिक आवर ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो। आई एम अदिति। आई होप यू डूइंग गुड फ्रेंड्स। वेल, यू नो, रिसर्च सेज फ्रेंड्स दैट म्यूजिक इज स्ट्रांगली कनेक्टेड टू मेमोरी एंड इमोशन, व्हिच इज व्हाई वन ओल्ड सॉन्ग कैन ब्रिंग बैक एन एंटायर चैप्टर ऑफ योर लाइफ, अ स्कूल बस राइड, अ हॉलिडे, और मे बी इवन an old smell from your past. And that is why Matchless Music Hour is all about music from the past. Songs that don't just sound good, they remember things for us. So wherever you are right now, driving, working, daydreaming at a red light, let's meet some old memories together.

0: इस मोड़ से जाते हैं फ्रॉम आंधी. 1975 वॉज अ ग्रेट ईयर फॉर हिंदी सिनेमा एंड गुलजार साहब गेव Bollywood such unforgettable women characters throughout his films, all his films. In 1975 alone, he had 3 releases, Khushbu, Mausam and Aandhi, all now considered masterpieces. And when Gulzar Saab teamed up with R.D. Burman for music and voices like Lata Mangeshkar and Kishore Kumar, well, magic happened. All right, I'm getting goosebumps. Let's take a short break. More of this on the other side.
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा.
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा. NECC द्वारा जनहित में जारी.
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से. केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव.
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें.
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है. यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें. विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in.
4: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान. सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: Welcome back, friends, to Matchless Music Hour on 102.6 Akashwani Rainbow. Now, let's give you some singing and bopping energy wherever you are.

0: नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 4 धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
0: 4 धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धनशोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने, धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में आज मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार में 23 मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। इनमें 3 नई महिला मंत्री भी शामिल हैं। सरकार में पहले से ही 9 मंत्री हैं, जिनमें एक महिला मंत्री सुश्री कीर्तना भी शामिल हैं। अब कैबिनेट में कुल 32 मंत्री हो जाएंगे, जिनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी शामिल हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर चेन्नई के लोकभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 627 अंक की उछाल के साथ 75,945 जबकि निफ्टी 200 अंक बढ़कर 23,859 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस वक्त आपके साथ जुड़ चुकी हूँ मैं दीपिका, लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स, यानी कि बॉलीवुड के गलियारों की सारी अपडेट्स, लेटेस्ट रिलीज हो, लेटेस्ट रिलीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो, या फिर आपके चहेता स्टार से जुड़ी कुछ बातें हो, सब कुछ पूरी अपडेट्स आपको मिलती है यहाँ केवल इसी शो में। तो चलिए आज भी शुरू करेंगे ये सिलसिला, लेकिन शुरुआत करते हैं एक बेहद ही प्यारे गाने के साथ। गाने के उस पार बताऊंगी बहुत कुछ खास, क्या कुछ चल रहा है बी टाउन के गलियारे में, पूरी अपडेट्स आप तक पहुंचाऊंगी।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दीपिका के साथ हैं आप, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप यहाँ पर बॉलीवुड ट्रेल्स, और बॉलीवुड ट्रेल्स में बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वेल दोस्तों, कल मूवी रिलीज हो रही है चांद मेरा दिल। जी हाँ, 22 मई यानी कि कल ये मूवी जो है ये सिनेमा घरों में उतरेगी। फिल्म में लक्ष्य और अनन्या पांडे लीड रोल में हैं और फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ। ये एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी है जिसके ट्रेलर को टीजर को ऑडियंस ने काफी प्यार दिया है और ऐसे में फिल्म को लेकर काफी बज है।

काफी उम्मीदें हैं फिल्म से। यूं भी ये धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है और धर्मा प्रोडक्शन अपनी लव स्टोरीज के लिए काफी फेमस रहा है। कहा जा रहा है अगर रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म पहले दिन 4 से 6 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। अब यहाँ ये भी डिपेंड करता है कि फिल्म को रिव्यूज कैसे मिलते हैं। अगर रिव्यूज अच्छे मिले तो ये कलेक्शन बढ़ सकता है, वहीं अगर खराब रिव्यूज मिले तो ये कलेक्शन जो है ये थोड़ा कम भी हो सकता है। वीकेंड पर भी फिल्म को अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 2026 की टॉप रोमांटिक ओपनर बन सकती है ये फिल्म, क्योंकि इसको लेकर जैसा मैंने जिक्र किया काफी बज है। नई जोड़ी एक पर्दे पर देखने को मिल रही है, अनन्या पांडे और लक्ष्य पहले कभी साथ में नजर नहीं आए हैं। लक्ष्य की एक्टिंग की तारीफ लंबे समय से रही है और इस ट्रेलर में अनन्या पांडे की एक्टिंग भी अच्छी बताई जा रही है। ऐसे में उम्मीद है कि इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। ओपनिंग डे पर टिकट को लेकर भी मेकर्स की तरफ से काफी डिस्काउंट दिया गया है और इस डिस्काउंट का फायदा भी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है कि इस डिस्काउंट की वजह से शायद जो ऑडियंस है वो थिएटर्स की तरफ खिंची चली आएगी और फिल्म को शानदार ओपनिंग मिल पाएगी। देखना होगा अनन्या पांडे और लक्ष्य स्टारर ये फिल्म कितनी कमाई करती है पहले दिन, लेकिन हाँ ये जरूर है कि फिल्म से उम्मीदें काफी हैं।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर दीपिका के साथ हैं आप, प्रोग्राम सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स। वेल, एक तरफ जहां आमिर खान की फिल्म थ्री इडियट्स के सीक्वल का फैंस को इंतजार है, सीक्वल पर काम चल रहा है ये आमिर खान बता चुके हैं, और ऐसे में इस सुपरहिट फिल्म के सीक्वल का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ कुछ वक्त पहले आमिर खान के बेटे जुनैद की फिल्म एक दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी। जुनैद खान और साई पल्लवी स्टारर इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बहुत बेकार रिस्पांस मिला था। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई थी जिससे आमिर खान का दिल टूट गया। इस बारे में हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बात की है और बताया है कि उन्हें कितना खराब लगा जब उनके बेटे की फिल्म जो है ये फ्लॉप हुई। उन्होंने बताया कि इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद काफी वक्त तक वो डिप्रेशन में थे और उन्हें बहुत बुरा लगा था। दरअसल ये फिल्म आमिर खान की प्रोडक्शन में बनी थी, जुनैद खान की फिल्म थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। 25 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया था। बिल्कुल भी इस फिल्म को रिव्यूज कहें या फिर ऑडियंस कहें, कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिला था। आमिर खान ने एक लीडिंग मीडिया हाउस से बातचीत में कहा कि जब दर्शक किसी फिल्म को नकार देते हैं उनकी, तो उन्हें ये बात बहुत पर्सनल लगती है, क्योंकि वो हर फिल्म को अपने बच्चे की तरह पालते पोसते हैं। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि वो इमोशनल लेवल पर ये बातें कह रहे हैं, बाकी वो समझते हैं कि दर्शकों पर ही डिपेंड करता है कि वो फिल्म को किस तरीके से लेते हैं, लेकिन उन्होंने ये साफ किया कि उन्हें इस बात का काफी बुरा लगा था। आमिर ने ये भी कहा कि वो समझते हैं इस बात को कि लोग टिकट खरीदकर थिएटर्स में फिल्म इस उम्मीद से देखने जाते हैं कि उनका मनोरंजन होगा, उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन जब उन्हें फिल्म पसंद नहीं आती तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी तरफ से काम में कोई कमी रह गई है और दर्शक

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी FM रेनबो पर दीपिका के साथ हैं, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप दीपिका के साथ बने हुए हैं। प्रोग्राम आप यहां पर सुन रहे हैं बॉलीवुड रील्स। जी हां, बॉलीवुड की अपडेट से लगातार हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या कुछ खास हो रहा है बॉलीवुड के गलियारों में। फिलहाल एक वीडियो पिछले दिनों कल परसों में बहुत वायरल हुआ था, जहां सलमान खान जो है वो एक हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे थे और यहां वो अचानक पेपराजी पर भड़क गए थे। काफी कुछ हुआ था यहां पर, कहा गया था कि सलमान खान बहुत भड़के थे और ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। दरअसल पेपराजी जो है वो सलमान खान को देखकर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे थे, फोटोग्राफर्स ने उन्हें घेर लिया था और उसके बाद उनकी जो आने वाली मूवी है उसे लेकर जोर जोर से वो आवाज लगाने लगे थे। इस बात से सलमान खान भड़क गए थे क्योंकि वहां वो किसी करीबी को देखने के लिए पहुंचे थे और हॉस्पिटल के बाहर इस तरह शोर करना शायद उन्हें पसंद नहीं आया था। इस वीडियो पर सभी ने अपनी अपनी राय दी, जहां कई लोगों ने कहा कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे तो कई लोगों ने कहा कि पेप्स को भी अपनी लिमिट समझनी चाहिए। अब सलमान खान जब दोबारा स्पॉट हुए तो यहां पर पेप्स ने उनसे माफी मांग ली है। जी हाँ, पेप्स ने सलमान खान से माफी मांगी है और सलमान खान भी अब काफी काम नजर आए और इस दौरान उन्होंने पोज भी दिए और ऐसा लगा कि उन्होंने पेप्स को जो है वो माफ कर दिया है, क्योंकि उनका ये वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। जैसा मैंने कहा, सब अलग अलग रिएक्शंस इसे लेकर दे रहे थे।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप दीपिका के साथ हैं। प्रोग्राम आप यहां पर सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, और अब वक्त हो गया है उस सवाल को पूछने का जिसका सही जवाब आपको बना सकता है बॉलीवुड सरताज। जी हां, सवाल है मेरा, आपको मुझे बताना है कि मूवी जिसका जिक्र मैंने किया था चांद मेरा दिल, जो कल रिलीज हो रही है, उसमें लीड जोड़ी कौन सी है, यानी कि कौन से अभिनेता और अभिनेत्री

उसमें मुख्य रोल निभा रहे हैं, लीड रोल निभा रहे हैं, इसका जवाब आपको मुझे देना है। सही जवाब देने वाले एक लकी विनर को यहाँ पर हम बनाएंगे बॉलीवुड सरताज और करेंगे उससे बात।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी

0: नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: जी हाँ बिल्कुल, ये गाना आप सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, लेकिन कुछ देर में, क्योंकि फिलहाल वक्त हो गया है बात करने का उनसे जो बने हैं आज हमारे बॉलीवुड सरताज। तो चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो मैम, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से मैम।
0: ओके पंकज, बहुत बहुत बधाई हो, आप आज बॉलीवुड सरताज बने हैं। अपना नाम बता, नाम तो आप बता चुके, माफ कीजिएगा, एक बार सही जवाब हमारे सारे लिसनर्स को।
1: चांद मेरा दिल के मुख्य किरदार के रोल में है अनन्या पांडे और लक्ष्य अभिनेता।
0: ओके बिल्कुल सही जवाब है आपका। पसंद करते हैं आप बॉलीवुड फिल्में देखना?
1: फिल्में तो देखता नहीं मैम, ज्यादा कार्यक्रम डेली सुनता रहे।
0: अच्छा, तो रेनबो से जुड़े हैं आप?
1: हाँ, 1.5 साल से मैम, रोज प्रोग्राम सुनती मैम।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई हो, और यू ही हमसे जुड़े रहिए, यू ही हमें प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच मैम।
0: तो पंकज यहाँ पर अमरावती महाराष्ट्र से बने हैं बॉलीवुड सरताज, लेकिन और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने सही जवाब लिखकर भेजे थे, तो जाते जाते उनका नाम भी यहाँ पर मैं ले देती हूँ। प्रवीण चौहान ने सही जवाब लिखकर हम तक पहुंचाया था, मध्य प्रदेश से इन्होंने मैसेज किया था। जयंत ने पटना से मैसेज किया था, इन्होंने भी सही जवाब दिया था। आसिफ सैफी ने मेरठ से, दानिश ने खतौली से, और जोया ने ऑस्ट्रेलिया से, कांट से मोहम्मद फुरकान ने, और शांति नगर सोनीपत से सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी ने, इन सभी ने सही जवाब लिखकर भेजा था। और भी बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आए हैं, लेकिन या तो उन्होंने आधा जवाब दिया है या गलत जवाब दिया है। सोनिया विहार दिल्ली से कंचन ने भी सही जवाब लिखकर भेजा था, तो बहुत बहुत बधाई जिन सभी दोस्तों ने सही जवाब लिखकर भेजे थे। फिलहाल अभी वक्त हो गया है इस प्रोग्राम में आपसे इजाजत लेने का, लेकिन दोबारा आपके साथ जुड़ूंगी मैं 1 बजे, सुनवाऊंगी आपको गाने, आपके साथ करूंगी बातें। फिलहाल के लिए यहां आपको देनी होगी दीपिका को इजाजत। इस प्रोग्राम में आप बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो के साथ।

0: शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धनशोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थीं। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोकभवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 954 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
8: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
7: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
8: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: मैं हूँ प्रगति
5: और मैं हूँ विकास।
4: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
5: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
4: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
6: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें।
7: जनगणना कार्य निदेशालय हरियाणा, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओह यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर, जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने यह बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले

संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 232 अंक की गिरावट के साथ 75,087, जबकि निफ्टी 34 अंक गिरकर 23,625 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुकी हूँ मैं दीपिका। जी हाँ, कहा था मैंने आपसे जब बॉलीवुड ट्रेल्स में ले रही थी विदा कि दोबारा एक बजे फिर आपके साथ जुड़ूंगी, दोबारा से आपसे बातें होंगी और इस बार मैं लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, यानी कि वो गाने जिनकी फरमाइश, जिनकी रिक्वेस्ट आप हम तक पहुंचाते हैं और हम यहाँ पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें प्ले कर सके। तो फिलहाल जो गाना, जो पहला सॉन्ग आज के प्रोग्राम का मैं प्ले कर रही हूँ, इसकी रिक्वेस्ट प्रीति ने मुझे भेजी है रोहिणी नई दिल्ली से, और उन्होंने लिखा है कि ये गाना उनका पसंदीदा है और इसीलिए ये इसे सुनना चाहती है। तो चलिए फिलहाल प्रीति की पसंद पर इस गाने को प्ले कर रही हूँ और दोस्तों के मैसेजेस जरूर शामिल होंगे। फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दीपिका के साथ बना हुआ है आपका साथ। बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग में, अपनी पसंद के गाने वो लिखकर भेज रहे हैं जिन्हें वो चाहते हैं कि हम यहाँ प्ले करें, और हम पूरी कोशिश करेंगे इस बात की, ये तो वादा रहता ही है आपसे हमारा। फिलहाल बागेश्वर गोरखपुर यूपी से मेरे पास मैसेज आया है, बागेश्वर का मैसेज आया, माफ कीजिएगा, गोरखपुर यूपी से, और इन्होंने एक गाने की फरमाइश की है जिसे यहाँ पर अभी मैं प्ले कर रही हूँ। एक और मैसेज मैं शामिल कर रही हूँ, कोशिश करूंगी आपका गाना शामिल कर सकूँ, फिलहाल आपका नाम जरूर शामिल कर रही हूँ। अनीता वर्मा ने पीतमपुरा दिल्ली से मैसेज किया है। इसके अलावा मेरे पास मैसेज आया, खूबसूरत से एक गाना सुनने की रिक्वेस्ट भेजी है। आसाम से ये मैसेज आया है मेरे पास, शान सिंधलो ने ये मैसेज किया है, मुझे लग रहा है मैं नाम सही पढ़ रही हूँ, पर अगर गलत पढ़ रही हूँ तो माफी चाहूंगी। और भी बहुत सारे दोस्त लगातार मैसेजेस कर रहे हैं। मेरठ कैंट से मैसेज आया है दिग्दर्शन और कविता गौड़ का, इन्होंने 3-4 गाने लिख के भेजे और लिखा है कि इनमें से कोई प्ले कर दीजिए, जरूर कोशिश करूंगी आपकी पसंद का गाना प्ले करने की। फिलहाल के लिए ये गाना यहाँ पर इंजॉय कीजिए दीपिका के साथ, अपने इस साथ को बनाए रखिए, मैसेजेस करते रहिए और बस बने रहिए मेरे साथ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग और जिसे

आकाशवाणी एफएम रेनबो दीपिका के साथ बना हुआ है आपका साथ प्रोग्राम, आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग। मेरे पास मैसेज आया है उत्तम नगर दिल्ली से, भोजराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल का। इन्होंने बहुत सारे गाने रिक्वेस्ट किए हैं जिसमें से एक गाना यहाँ पर मैं प्ले कर रही हूँ। एक और मैसेज मैं शामिल कर रही हूँ, दीपिका जी को नमस्कार। ये मैसेज किन्होंने लिखकर भेजा है, अपना नाम नहीं लिखा है, तो कोई बात नहीं दोस्त, अपना नाम लिखकर दोबारा मैसेज कीजिएगा। सना का बिजनौर से मैसेज आया है, इन्होंने भी एक गाना सुनने की रिक्वेस्ट की है, जरूर कोशिश की जाएगी आपकी पसंद का गाना मैं यहाँ पर प्ले कर सकूं। इसके अलावा एक और मैसेज जो मुझ तक पहुंचा है, ये मैसेज मुझे किया है मास्टर राधे श्याम ने कासगंज से, इन्होंने भी एक गाना रिक्वेस्ट किया है। अनुज कुमार का मैसेज आया है लखनऊ से, जरूर कोशिश करूंगी आप सभी दोस्तों के मैसेजेस शामिल कर पाने की, आपकी पसंद का गाना प्ले कर पाने की। लेकिन जिनका गाना प्ले नहीं भी कर पा रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि एटलीस्ट उनके मैसेजेस शामिल करके उनके नाम को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँ, ताकि उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि उनका मैसेज कहीं पीछे छूट गया है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
4: पता का चाय गजब का स्वाद।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: आकाशवाणी FM रेनबो, दीपिका के साथ बना हुआ है आपका साथ। प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग। बहुत सारे मैसेजेस लगातार मुझ तक पहुंच रहे हैं। अगला सॉन्ग जो यहां मैं प्ले कर रही हूं, सना ने बिजनौर से इसकी रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन ये गाना प्ले हो उससे पहले कुछ और दोस्तों के नाम मैं शामिल कर लेती हूं। नवलू वरक का मैसेज आया है गोवा से, इन्होंने गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, जरूर कोशिश की जाएगी प्ले करने की। भगवती ने जबलपुर से हमें मैसेज किया है। इसके अलावा जो मैसेज मुझ तक पहुंचा है ये AK पांडे, हर्षवर्धन पांडे और इन्होंने मैसेज हमें किया है पन्ना मध्य प्रदेश से। अगला मैसेज जो यहां पर मैं शामिल कर रही हूं, ये मैसेज किया है प्रियांशी ने, ये मैसेज हमें किया है दिल्ली से। एक और मैसेज, एक और दोस्त का नाम जो जल्दी से यहां पर हम ले देते हैं, ये मैसेज पहुंचा है दिनेश कुमार, उमेश कुमार, अनुज कुमार और सुनित कुमार का ख्याल से। बहुत सारे दोस्त और भी मैसेजेस कर रहे हैं जानती हूं मैं, जरूर मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी के मैसेजेस मुझ तक यहां पर जो पहुंच रहे हैं उन्हें मैं शामिल कर पाऊं और सॉन्ग्स भी प्ले कर पाऊं आपकी पसंद के। फिलहाल के लिए आप इस गाने को एंजॉय कीजिए जिसकी रिक्वेस्ट सना ने मुझसे की थी, बिजनौर से इन्होंने ये मैसेज किया था। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को और दीपिका के साथ अपने साथ को बनाए रखिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, ये है एफएम रेनबो, आपके साथ मैं हूँ दीपिका और यहाँ आप प्रोग्राम सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग। अगली रिक्वेस्ट जो मैं शामिल कर रही हूँ, भगवती ने जबलपुर से इस गाने की रिक्वेस्ट भेजी है जिसे यहाँ मैं प्ले कर रही हूँ। इसके अलावा और कुछ मैसेजेस आए हैं, फारूक अली, फैजी, फराज, फरहीन, फरहाना, फारिया, ताहिरा का मैसेज आया है कस्बा गुन्नौर उत्तर प्रदेश से, कांट से मोहम्मद फुरकान का मैसेज आया है, इसके अलावा अमरावती महाराष्ट्र से पंकज का मैसेज आया है, सलमा बेगम और मोहम्मद इम्तियाज का मैसेज आया है, जवाहर कैम्प कीर्ति नगर नई दिल्ली से, और साथ ही जो अगला मैसेज मैं शामिल कर रही हूँ, निकिता और प्रिया का मैसेज आया है, इन्होंने मैसेज किया है दिल्ली से, सांवरलाल का मैसेज आया है अहमदाबाद से। बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस किए हैं और लगभग सभी के मैसेजेस मुझे लगता है मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पर। अगला मैसेज जो पहुँचा है मुझ तक, किशन वंजानी, नीलम स्वाति और किशु का रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से है। जी, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपकी पसंद का गाना यहाँ पर प्ले कर सकूँ। फिलहाल भगवती की रिक्वेस्ट पर इस ट्रैक को एंजॉय कीजिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

किशोरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराधना।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो दीपिका के साथ है आप प्रोग्राम। आप यहां पर सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग। मोहम्मद फुरकान ने एक गाने की रिक्वेस्ट भेजी है जिसे यहां पर अभी मैं प्ले करने जा रही हूं और आई गेस आज के इस प्रोग्राम का आखिरी सॉन्ग होने वाला है ये, लेकिन कुछ और दोस्तों के नाम जरूर मैं शामिल करने की कोशिश कर रही हूं। अरुण कुमार का मैसेज आया है मेरे पास भटिंडा से, माफ कीजिएगा आपकी पसंद का गाना तो अभी प्ले नहीं कर पाऊंगी लेकिन नाम आपका जरूर शामिल कर लिया है। मीरा सिंह ने आसाम से मैसेज किया है। इसके अलावा सोनिया विहार दिल्ली से यमुना प्रसाद का मैसेज आया है। सावरलाल का अहमदाबाद से मैसेज आया है। टिंकू का वजीर बाग लखनऊ से मैसेज आया है। और जो अगला मैसेज मैं शामिल कर रही हूं ये मैसेज आया है जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल और दीपांशु खोरवाल का होली चौक उत्तम नगर से। इसके अलावा मुझ तक मैसेज पहुंचा है राकेश कुमार, मनीष कुमार, उमेश कुमार का ख्याला विष्णु गार्डन से, इन्होंने गाने की रिक्वेस्ट भेजी है। इस प्रोग्राम में तो मैं आपकी पसंद का गाना नहीं, माफ कीजिएगा, प्ले कर पा रही हूं लेकिन ये जिस गाने की आपने रिक्वेस्ट भेजी है मैंने अपने पिछले शो में यानी कि बॉलीवुड ट्रेल्स में इस गाने को प्ले किया था। तो चलिए लगभग सभी दोस्तों के मैसेजेस यहां पर मैंने शामिल कर लिए हैं। ओखला संगम विहार दिल्ली से रणवीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता ने भी मैसेज किया है। जिन दोस्तों के मैसेजेस शामिल नहीं हो पाए होंगे उनसे माफी चाहती हूं लेकिन फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में आपसे मुझे लेनी होगी इजाजत। जल्दी होगी फिर मुलाकात। जाते जाते वही कहूंगी जो हर बार कहती हूं, हम सभी यूं ही हंसते हंसाते गाते गुनगुनाते जिंदगी के हर एहसास को गले लगाते आने वाली खुशियों को सजाते और उम्मीदों से हाथ मिलाते रहेंगे और दोबारा कभी सिर्फ यही मिलेंगे क्योंकि यही अपना ठिकाना है, हमें और कहां जाना है। 2 बजे से आपके साथ जुड़ेंगे शाहिद, लेकर आएंगे प्रोग्राम आशियाना। फिलहाल के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत। आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ अपने साथ को यूं ही बनाए रखिए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। आज थर्सडे और आज आशियाना में टॉपिक होता है हमारा वरिष्ठ नागरिकों के, वृद्धों के बारे में, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन्स के बारे में। तो हर थर्सडे की तरह आज आशियाना में हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स के बारे में, हमारे घर में मौजूद हमारे बुजुर्गों के बारे में, जिनका होना ही घर को रोशन रखता है और हमें एक खूबसूरत खुशी का एहसास कराता है।

हमारे बुजुर्ग जब घर पर होते हैं तो उनका घर में होना ही घर को रोशन रखता है और हमें एक खूबसूरत खुशी का एहसास कराता है। आज हम उनकी वेलबींग और केयर के अलावा बात करेंगे हमारे वरिष्ठ नागरिकों की उनके परिवार के प्रति कुछ जरूरी जिम्मेदारियों के बारे में। हमारे बुजुर्ग एक्सपीरियंसेस का खजाना होते हैं। आप उनसे आम जिंदगी की रोजमर्रा सामने आने वाली सिचुएशंस से लेकर के फैमिली के बड़े से बड़े इशू पर भी तजुर्बे से भरपूर जिंदगी के हर कदम पर काम आने वाली राय ले सकते हैं। तो इसलिए उनका जब घर में होना है तो कितना जरूरी है और कितना अहम होता है, यह हम बात करेंगे आज के आशियाना में। आप सुन रहे हैं शाहिद को 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो रेनबो पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
4: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

हम हमेशा अपने बुजुर्गों की, अपने वृद्ध, अपने सीनियर सिटीजन की जो हमारे घर में मौजूद होते हैं, उनकी वेलबींग, उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी फिटनेस और उनकी केयर के बारे में तो हमेशा ही बात करते हैं आशियाना में। मगर आज हम बात कर रहे हैं उनकी अहमियत की, उनके अपने तजुर्बों से फायदा उठाने की और उनके होने से जो फायदा होता है, जो फर्क पड़ता है पूरी फैमिली पर उसकी। हम अपने बुजुर्गों से न सिर्फ आम जिंदगी की रोजमर्रा सामने आने वाली जो प्रॉब्लम्स सिचुएशंस होती हैं उनके बारे में उनसे फायदा उठा सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस से अपने आप को ठीक लेकर के चल सकते हैं अपनी लाइफ में, बल्कि उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस, उतार चढ़ाव, खट्टे मीठे, उनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, उनके अनुभवों से भी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों का आसानी से सामना भी कर सकते हैं, बल्कि उनके अनुभवों से सीख लेकर खुद को उन मुसीबतों से बचा भी सकते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि वो एक्सपीरियंसेस, जो वो परेशानी, मुश्किलें वो झेल चुके हैं, वो आपको समझाते हैं, बताते हैं कि ताकि आपको उन मुश्किलों को ना झेलना पड़े और वो अननेसेसरी जो

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ

0: कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: तो बात वरिष्ठ नागरिकों के हमारे परिवार में होने की, उनकी अहमियत की आज हम कर रहे हैं बात। हमारे घर के बुजुर्ग छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स, डिसएग्रीमेंट्स, परिवार के लोगों की आपसी कलह, रंजिश को मिटाने, दूरियां खत्म करने और आपसी प्यार मोहब्बत, मेल जोल को पटरी पर लाने बल्कि उसे बढ़ाने के लिए भी बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। कभी कभी फैमिलीज में ही नहीं, रिलेशनशिप और रिश्तेदारों के बीच की खाई को पाटने का काम जिस खूबी से ये हमारे वरिष्ठ अपनी सूझबूझ से कर पाते हैं वो हम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हें ही अपने बुढ़ापे में हमारी जरूरत होती है, बल्कि परिवारों को आपस में जोड़कर रखने और आपस में एक हेल्दी एनवायरमेंट और रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए हमें उनकी हमसे ज्यादा जरूरत होती है।

102.6 देश नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेन बबर प्रोग्राम आशियाना सुन रहे हैं आप शाहिद के साथ। बात आज के दिन होती है बुजुर्गों की। यहां तक ये बात तो समझ आ गई कि हमारे बुजुर्ग भी हमारे और हमारे पूरे परिवार की खुशहाली के लिए कितने जरूरी हैं। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि जिनके हाथ में रिश्तों की डोर है वो खुद ही उसे छोड़ देते हैं। जिनकी बात में मजबूती है, असर है और वजन है, वो ही कभी कभार अपने परिवार को, अपने छोटों को उनके हाल पर छोड़ दिया करते हैं। और बस खामोश तमाशाई बन करके रह जाते हैं, अपनी

अहमियत को खुद ही खत्म कर सरेंडर कर देते हैं ईगो और एरोगेंस के सामने। और यही वक्त होता है जब अपनी पोजीशन संभालने का, फिर से अपनी इंपॉर्टेंस जानने का, अपनी बात को मजबूती से रखने का और बिखर रहे परिवारों को आगे बढ़कर आपस में जोड़ने का, प्यार का सबक एक बार फिर पढ़ाने का, जो भूल गए हैं उन्हें फिर से याद दिलाने का कि आप यानी हमारे बुजुर्ग, हमारे वरिष्ठ, हमारे सीनियर्स अभी हैं और अपना फर्ज पूरी तरह से निभा सकते हैं। जिस परिवार में जहां बुजुर्ग अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, अपना फर्ज अदा करते हैं, वहां सब मिलकर मुश्किलों से भी हिम्मत से टकराते हैं, पूरा परिवार साथ साथ हंसता है और चैलेंजेस का डटकर साथ साथ मुकाबला करता है और जीतता है। फिलहाल आशियारा में इतना ही, शायद आपसे लेगा विदा, आपसे मैं मिलूंगा 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स में।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के साथ आ गई है आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। क्या होता है फिटनेस, ये सब जानना चाहते हैं ना आप? और हम समय समय पर आपको जानकारी यहां से देते ही रहते हैं। प्रतिदिन आप जुड़ते हैं हमारे साथ आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर 102.6 पर, और साथ ही साथ प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप सुनते हैं। क्या सुनते हैं? प्रतिदिन रेडियो डॉक्टर सुनते हैं ना। और बिल्कुल हमारे साथ कैसे जुड़ते हैं ये तो आप जानते हैं, लेकिन हमारे वो नए श्रोता जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं और ये कारवां बढ़ता जा रहा है, उनके लिए मैं बता दूं जो नए नए श्रोता यहाँ आए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत। और आपको बता दें कि आज का जो अंक है बहुत खास इसलिए है कि हम फिटनेस की बात करेंगे, लेकिन कैसे जुड़ेंगे, आप अपने प्रश्न कैसे पूछेंगे वो भी आपको थोड़ी देर से बताएंगे। लेकिन आज का जो पहला अंक है ये किस बात पर केंद्रित है इसको हम अच्छी तरह से आपको समझा देना चाहते हैं। क्या है फिटनेस आपके हिसाब से? क्या शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं या पतले दुबले हैं तो आप फिट कहेंगे अपने आप को, या मेंटली अगर आप फिट हैं तो फिट कहेंगे अपने आप को? क्या डेफिनेशन होती है एक फिट आदमी की? ये सारी बातें आज हमें लगता है इस कार्यक्रम के बाद आप पूर्ण रूप से समझ जाएंगे। और ये समझाने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दो रेडियो डॉक्टर्स को, दो ऐसे विशेषज्ञ जो अपने अपने क्षेत्र के जानकार हैं और जो आप तक पहुंचाएंगे फिटनेस का सही मान्या क्या होता है। तो आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहेंगे हमारे दो गेस्ट से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मधु खुराना, आप योग स्पेशलिस्ट हैं, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग में आप काम करती हैं। आप पिछले 13 साल से योग थेरेपी और योग टीचिंग के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार।
2: धन्यवाद मैम।
1: और हमारी दूसरी आज गेस्ट हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीता गंगवानी, आप पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट कोच हैं, आपको ऑनर किया जा चुका है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा। नमस्कार और स्वागत।
2: शुक्रिया मैम, थैंक यू।
1: तो अपने श्रोताओं को बता दें कि आज का हमारा विषय है फिटनेस मंत्रा, और खास आज यानी 21

0: मई को मैंने इस विषय को क्यों चुना है ये भी आपको बता दें कि ठीक एक महीने बाद यानी 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ योग, जो एक बहुत बड़ा दिवस है जिसको अब इस बार हम 12वीं बार मनाएंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ योग का महत्व क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक दिन की, एक महीने की बात नहीं है, फिटनेस हमारे जिंदगी का जीने का तरीका है। और सबसे पहले मैं चाहूंगी डॉक्टर मधु खुराना, आप बताइए व्हाट इज फिटनेस अकॉर्डिंग टू यू।
1: जैसे कि मैम अभी आपने कहा कि क्या फिटनेस सिर्फ शरीर की आकृति से सीमित है कि आप दुबले पतले हैं तो क्या फिट हैं, ऐसा नहीं है। आपने बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस देखे होंगे कि लोग बहुत ज्यादा जिमिंग करते हैं, वो दिखने में तो दुबले पतले दिखते हैं बट मानसिक रूप से तनाव से ग्रसित हैं
0: जी।
1: और बहुत ज़्यादा आजकल हार्ट अटैक और इस प्रकार की जो है आप देखेंगे लोगों में लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डायबिटीज़, हाई बीपी, इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, चाहे लोग दुबले पतले क्यों ना हो। पीएमओ जैसे पीसीओडी जिसे अब पीएमओएस बोला जा रहा है, इस तरह की समस्याएं महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही हैं, चाहे वो दुबली पतली ही क्यों ना हो। तो मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति विधीयते। यानी जब भी कि आपके समदोष यानी दोषास वात पित्त कफ बैलेंस हो, सम अग्नि आपके अंदर अग्नि जो है डाइजेस्टिव फायर है वो बैलेंस्ड हो, सम धातु सप्त धातु से हमारा शरीर बना है वो बैलेंस्ड हो, मल क्रिया प्रॉपर एक्सक्रीशन हो, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रसन्न है हम आत्मा से, इंद्रियों से, सेंसेस हमारी कंट्रोल्ड है मन से, तभी हम कह सकते हैं स्वस्थ कि हम फिट हैं, स्वस्थ हैं। ऐसे ही अगर हम देखें जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO ने भी कहा है कि अगर आप सोचते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है सिर्फ तो आप फिट नहीं हैं। अगर आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से जो हैं स्वस्थ हैं तभी हम कह सकते हैं कि आप फिट हैं। इसमें एक फोर्थ कंपोनेंट आध्यात्मिक भी ऐड किया गया
0: जी,
1: है
0: बिल्कुल
1: जी। तो अगर आप इन सब से अगर आप समझ पाते हैं कि आप फिजिकली भी अपने आप को फिट समझते हैं कि आपके अंदर कोई रोग नहीं है, ठीक है, और ऐसा फील कर रहे हैं आप, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके रिपोर्ट्स में ऐसा दिख रहा है, आप ऐसा अनुभव भी करते हैं, मानसिक रूप से भी आप खुश हैं, तनाव नहीं है आपको, कोई भी समस्या हो लाइफ में आप उसे जो है हैंडल कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं,
0: ये भी इम्पोर्टेंट है,
1: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि तनाव तो देखिए सिचुएशंस तो ऐसी रहेंगी हमारे आसपास, बट क्या आप उसमें समत्वम जिसे हम बोलते हैं योग में उसे अटेन कर पा रहे हैं कि सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, आप बैलेंस्ड हैं। इसे भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ भी कहा जाता है। क्या आप उस स्थिति के आसपास भी हैं, ठीक है, और आप सामाजिक रूप से उससे जुड़ पा रहे हैं। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि योग जो है वो एक एक्सरसाइज नहीं है, योग जो है वो खुद से जुड़ना, उसके बाद आप विश्व से जुड़ रहे हैं और प्रकृति से जुड़ना है। तो क्या आप इस प्रकार इस हर लेवल पर जुड़ पा रहे हैं तो ही हम कह सकते हैं कि हम फिट हैं, हम स्वस्थ हैं
0: जी। बहुत बहुत ज़रूरी बातें आपने यहाँ पर बताई हैं कि योग को भी आपने बताया, हम फिटनेस को एज अ होल लेके चल रहे हैं। बहुत तरीके होते हैं लोगों के अपने फिट रखने के लिए, कई लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ योग करते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम सारी बातें चाहेंगे हमारे श्रोताओं तक पहुँचें। और डॉक्टर रीता हमारे साथ हैं। रीता जी ये बताइए, एक डेफिनेशन मधु जी ने बताई, आपके हिसाब से व्हाट इज फिटनेस?
2: मैं मधु जी के साथ बहुत सहमत हूँ कि लोग यही समझते हैं कि जिम जाना, डाइट करना, वेट लॉस, यही आप फिटनेस को मानते हैं। इन्हीं के जो इन्होंने डिस्क्राइब की अलग अलग धारणाएं, उनमें मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि धरती 5 तत्वों से बनी है, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि। और आप देखेंगे भगवान ने पांचों के पांचों जो भी तत्व हैं वो बराबर रखे हैं। एक ज्यादा होता तो हम रहने लायक यहाँ नहीं होते धरती पे। वैसे ही एक इंसान की एज अ पर्सनैलिटी कोच जो मैं देखती हूँ, वो ये देखती हूँ कि फिटनेस के भी 5 तत्व हैं, फिजिकल यानी कि अच्छा दिखना, इमोशनल अच्छी सोच रखना, स्पिरिचुअल खुद पे विश्वास होना, कल्चरल ऊंच नीच का भेदभाव न करना, और साथ में सोशल लोगों के बीच में उठने बैठने की तमीज। मैं कुछ इस हिसाब से देखती हूँ कि ये पांचों भी बैलेंस होने चाहिए, क्योंकि आजकल के जमाने में ये चीजें भी देखी जाती हैं जो फिटनेस में ही आती हैं। तो फिटनेस मेरे हिसाब से इन पांचों तत्वों का, फिजिकल तत्वों का बैलेंस है जो आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएगा। बस आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि तत्व कौन सा कम है मुझ में।
0: जी, जी।
2: ये पता कर लेंगे जिस दिन और बैलेंस कर लेंगे तो डेफिनेटली जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे।
0: जी, तो अगर ऐसा कोई तरीका है कि इसको कैसे जज करना है तो वो भी हम आज डॉक्टर रीता से जरूर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे श्रोता हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि हर तरह से हम उनको स्वस्थ रहने की दिशा में प्रोत्साहन दे सके। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं, या आपका कोई फिटनेस मंत्र है या आपकी कोई डेफिनेशन है फिटनेस की वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लिखिए हमें, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। और अगर आप फोन पर बात करना चाहते हैं, हमारे विशेषज्ञ यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं, आप उनसे बात करके कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हमारी दो फोन लाइन्स हैं जिस पे आप डायल कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए हमारे नंबर 2342-1080, 2342-1082। और अगर आप दिल्ली के बाहर से आप डायल करेंगे या नंबर मिलाएंगे तो 011 दिल्ली का कोड जरूर लगाएं। तो यहां पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और एक प्यारा सा गीत सुनकर वापस आएंगे, लेकिन आप हमारे साथ रहिए क्योंकि बहुत सी बातें फिटनेस से रिलेटेड आज आपको जानने को मिलेंगी। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और मैं हूं शालिनी मित्तल. मेरे साथ मेरे दो एस्टीम गेस्ट हैं, डॉक्टर मधु खुराना और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीता गंगवानी. बहुत सारे मैसेजेस भी आप लोगों के आ चुके हैं और फोन कॉल्स पर भी हमारे गेस्ट, हमारे लिसनर्स मौजूद हैं. तो पहले फोन कॉल ले लें मैम.
1: जी
0: चलिए. हेलो.
2: हेलो
0: जी, नमस्कार, स्वागत कार्यक्रम में आपका.
2: राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ.
0: जी पूछिए अब सवाल.
2: हाँ, पहले तो शालिनी मैम को, शालिन भाई नमस्कार.
0: जी नमस्कार.
2: और बॉस मैम को भी नमस्कार. मेरे ना तीन चार छोटे छोटे सवाल हैं प्लीज. पहला सवाल मेरा ये है कि चूंकि ये मशीनी युग है तो जाहिर सी बात है महीनों काम सेकंडों मिनटों में करके देने हैं, तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे टिप्स बताएं कि क्वालिटी और स्पीड और कंसंट्रेशन के साथ हम काम कर सकें. कोई डाइट, कोई एक्सरसाइज, पहला सवाल ये. दूसरा सवाल मेरा ये है कि दिमागी तौर पर फिटम फिट गुडमगुड रहने के लिए कई लोग अखरोट खाते हैं और बादाम खाते हैं, कई लोग पिस्ता खाते हैं और केसर खाते हैं, तो इसमें से बेस्ट डाइट कौन सी होगी. तीसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने ये नोट किया कि कई ऐसे शख्स होते हैं मैम कि वो होते पतले दुबले हैं पर फिर भी 25-25 किलो वेट उठा लेते हैं, और कई लोग होते हैं हट्टे कट्टे मुड़े तगड़े फिर भी उनसे 5 किलो वेट भी नहीं उठता. जैसे एक आर्टिकल, एक जो है वो लेख ही बना हुआ है एक टोकरी मिट्टी की, तो इस तरफ हमें क्या करना चाहिए. और चौथा और आखिरी सवाल वो ये है कि मैम क्या कहती है, वॉइस जो हमारी आवाज होती है तो इसको मतलब मेलोडी में मधुर करने के लिए क्या कोई डाइट को एक्सरसाइज भी होती है क्या, जरा ये बताएं चार सवाल. बड़ी
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी. वैसे बहुत सारे सवाल आपके ओवरलैपिंग ही हैं, तो बेसिकली हम डाइट और एक्सरसाइज पर ये तो हम बात कर ही रहे हैं कि किसी की फिजिकल आउटवर्ड उससे देखकर तो नहीं पता लग सकता, लेकिन हाँ एक बैलेंस तो होना चाहिए, हाइट और वेट का एक बैलेंस जो होता है. लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि कुछ लोग दिखते बहुत हेल्दी हैं या मजबूत हैं पर वो कर नहीं पाते उस हिसाब से काम, तो आपने प्रश्न सुन लिया, आप बताएं क्या आप कहना चाहेंगे. आप
1: जी बिल्कुल, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में लगता है कि हट्टे कट्टे हैं बट उनमें इतना स्ट्रेंथ नहीं होता
0: जी,
1: है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस.
0: अच्छा.
1: कि आपकी बॉडी में कितना फैट है, कितना मसल मास है, कितना फैट फ्री मास है, कितना वाटर कंटेंट है, और ओवरऑल आप कितना ज्यादा आपके मसल स्ट्रांग है, आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है. फिटनेस के डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं कि कितना एंड्योरेंस है आपकी बॉडी में, कितना स्ट्रेंथ है आपकी मसल्स में और कितनी फ्लेक्सिबल है, तो इन सब लेवल पर हम फिटनेस को मेजर कर सकते हैं. तो हो सकता कोई दिखने में ऐसा लग रहा हो बट दैट कैन बी इल्यूजन. जब तक कि आप डेली अभ्यास ना करें, एक रेगुलरिटी ना रखें अपनी रूटीन में, दिनचर्या में, तब तक हम नहीं कह सकते. किसी को सिर्फ आउटर अपेयरेंस से हम जज नहीं कर सकते हैं. कई लोग बहुत दुबले पतले दिखते हैं बट वो जैसे कि उन्होंने बोला बहुत हैवी वेट भी उठा लेते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म कैन बी गुड हाई एंड दिस इज पॉसिबल कि उनकी बॉडी में ज्यादा स्ट्रेंथ हो और मोर एंड्योरेंस हो. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी रूटीन, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर ये निर्भर करता है, सिर्फ जेनेटिक्स ही नहीं.
0: तो क्या होनी चाहिए रूटीन और लाइफस्टाइल जिससे कि हम इतने स्ट्रांग बन जाए.
1: जी मैं तो योग एक्सपर्ट हूँ. योग ही सबसे पहले मेरे मन में आता है कि आप अगर रेगुलर जो है योग प्रैक्टिस करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक घंटा करें. अगर आपके पास आधा घंटा है आप आधा घंटा करें, 45 मिनट्स करें, और अगर वो भी नहीं है तो 5 मिनट्स का वाइब ब्रेक जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो है वो बनाया है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है. 5 मिनट का अभ्यास भी अगर आप करें तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनर्जी लेवल्स इम्प्रूव कर सकते हैं, यू कैन रीफ्रेश, रीफोकस योर सेल्फ. तो अगर उतना भी नहीं तो आप अपने सिर्फ श्वास पे ध्यान दीजिए और रिलैक्स कीजिए, तो भी आप अपने आप से जुड़ रहे हैं और आप बेटर फील कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन नॉट जस्ट ऑन द बॉडी बट ऑल्सो ऑन द ब्रेथ, ऑल्सो ऑन द माइंड. तो उन सभी लेवल्स पे वर्क करना जरूरी है.
0: तो माइंड के लिए क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन या कुछ.
1: जी मैम, हमारा ना जो पंचकोश का थ्योरी आता है जो उपनिषद से लिया गया, तित्री उपनिषद से, जिसमें माना गया है कि हमारा जो शरीर है वो सिर्फ फिजिकल आउटर बॉडी नहीं है. मॉडर्न साइंस तो ये समझती है कि हम सिर्फ ये आउटर बॉडी, फिजिकल बॉडी है. योग कहता है कि हमारे 5 कोशाज हैं, दे आर 5 लेयर्स ऑफ आवर एक्सिस्टेंस, जिसमें जो आउटर है वो अन्नमय है विच इज मेड अप ऑफ फूड, कि हम कैसा आहार खाते हैं उस पर डिपेंड करता है. देन उसके बाद आ गया प्राणमय कोश विच इज अ प्राणिक शीत इनसाइड अस, कि हमारे अंदर जो प्राणों का प्रवाह है वो किस प्रकार हो रहा है, कितना बैलेंस्ड है हमारी नाड़ीज में. देन आफ्टर दैट देर इज अ मनोमय कोश विच इज अ मेंटल लेयर, मेंटल शीत. उसके बाद एक विजडम लेयर आती है विज्ञानमय, एंड द इनर मोस्ट इज द आनंदमय विच इज वेरी मच क्लोज टू अवर ट्रू नेचर, सच्चिदानंद ब्लिसफुल शीत हमारी आती है। तो ऐसा माना जाता है, योग वशिष्ठ में ऐसा कहा गया है कि जो डिजीज की शुरुआत

0: होती है वो मनोमय कोष से होती है, मन से होती है। और जब हमारे हम मन से तनाव में होते हैं, चिंता में होते हैं या दुविधा में होते हैं किसी भी, तो लॉन्ग टाइम तक जब ऐसा रहे तो वो हमारे प्राणिक लेयर को इम्पैक्ट करता है नेगेटिवली, यानी आपकी ब्रीदिंग का तरीका बदल सकता है, आप
1: अच्छा
0: गलत तरीके से श्वास ले रहे हो, ऐसा संभव है। और फिर अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्ट करता है एज अ डिजीज। तो आज जो हम किसी को कोई समस्या देख रहे हैं उसकी शुरुआत कई साल पहले से हो सकती है। ऐसा हो सकता है उस व्यक्ति को बहुत समय से तनाव रहा हो और उसने ध्यान ना दिया हो, उसकी प्राणिक शीत भी इम्पैक्ट हो गई हो, उसकी ब्रीदिंग हैफिजिड हो, पैल्पिटेशंस हो। आपने सुना होगा लोगों को कि बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ जाती है, एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, नींद नहीं आ रही है ठीक से, और अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्ट करता है एज अ डिजीज। तो अगर हम इन सभी लेयर्स पे काम करें, नॉट जस्ट ऑन द आउटर बॉडी, हम प्राणिक जो है शीत उसके लिए प्राणायाम की प्रैक्टिस है, मनोमय के लिए हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो ध्यान के अभ्यास हैं उस पे प्राणायाम एंड ध्यान बोथ इस तरह की प्रैक्टिस, विजडम शीट जो हमारी जो है उसके लिए काउंसलिंग इज इम्पॉर्टेंट, योगिक काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी हम जो है अपने क्लोजेस्ट जो हमारा ट्रू नेचर है आनंद में उससे जुड़ सकते हैं और हर परिस्थिति में हम जो है आनंद की स्थिति में रह सकते हैं, जो कि हमें स्वस्थ भी रख सकता है। और साथ ही साथ जो योग के विभिन्न कॉम्पोनेंट हैं, जिसमें कि हमारा आसन आ गया जो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करता है, आसनेन भवे दृढ़म ऐसा कहा गया हठ योग में, कि आसन करने से शरीर में दृढ़ता आती है, घृण संहिता के टेक्स्ट में इसका वर्णन मिलता है। और आसनेन रुजोहंती यानी डिजीज को दूर करता है, और कुर्यात तदासनम स्थैर्यम आरोग्यम च लाघवम, यानी आसन करने से स्थिरता, आरोग्यता, डिजीजलेसनेस और लघुता, शरीर में लाइटनेस आती है इस प्रकार। और ततो द्वंद्वान भी घातः, ऐसा हमारे पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि आसन करने से आपके फिजिकल मेंटल सब तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो दूर होते हैं। तो इस तरह से हम अगर अष्टांग योग की प्रैक्टिस, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और अल्टीमेटली विच इज समाधि, तो अगर हम इसको फॉलो करते हैं, इस रूटीन को, हम डेफिनेटली इन सभी कॉम्पोनेंट्स का ध्यान रख सकते हैं।
1: जी, तो सुनिए श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कि ये फिटनेस इतना एक छोटा सा या ऊपर दिखने वाला एक वर्ड नहीं है, ये कितना डेप्थ रखता है। बहुत सारी बातें डॉक्टर मधु ने बताई, बहुत सारे हमारे श्रोता फोन लाइन पर भी वेट कर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
2: हेलो
1: जी, अपना नाम बता दें।
2: मेरा नाम मिस्टर आसिफ खान है मैम।
1: जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: यूपी मेरठ से बात कर रहे हैं
1: जी। क्या पूछना चाहते हैं?
2: मैडम जी, मेरा मसाले में गर्मी है, इसके लिए प्रॉब्लम होती है मसाले में।
1: जी, आपकी बात स्पष्ट नहीं पहुंच रही हम तक, फिर से बताएं।
2: मेरा मसाले में प्रॉब्लम होती है,
1: पेट में कुछ समस्या है।
2: हाँ, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ ना, तो मेरे को गैस की जब खाना बनता है, तो इसके लिए बताइए क्या कोई उपाय है, दवाई है?
1: चलिए, आपने सुन लिया, हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं आपको। जी,
0: अगर आप खाने में अत्यधिक मसाले का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं, जैसे गैस, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो सकती है। तो पहले तो आपको मिताहार लेने की आवश्यकता है। तो आप किस तरह की डाइट लें? सुस्निग्ध मधुराहार चतुर्थांश विवर्जिते भुजते शिव संप्रते मिताहार से उच्चित, यानी पहले तो भूख से कम, एक चौथाई भूख से कम आपको खाना खाना है, और सरल सिंपल फूड आपको खाना है। सात्विक आहार की बात कही गई है भगवद गीता में भी, कि अगर आप बहुत ज़्यादा तामसिक या फिर राजसिक भोजन, जैसे मिर्च मसाले युक्त भोजन करते हैं, तो ये डेफिनेटली शरीर में रोग और इस तरह की बीमारियां, एसिडिटी, गैस और कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकता
1: और
0: है।
1: समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जी, कहते जी। हैं कि बिल्कुल खाए और आप सो गए या मूवमेंट नहीं किया,
0: जी बिल्कुल,
1: वो भी इम्पोर्टेंट,
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाना खाते ही ना लेटें। अगर आप डिनर कर रहे हैं, एक तो अर्ली डिनर की बात कही गई है कि समय पर भोजन ले लें, और उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे का कम से कम गैप रखें, कि खाना खाते ही लेटेंगे तो वो डेफिनेटली एसिड ऊपर की तरफ आएगा और इस तरह की समस्याएं, जैसे चेस्ट में आपको बर्निंग सेंसेशन इस तरह की फील हो सकती हैं। और साथ ही साथ योगाभ्यास करें कि आपके कोर मसल स्ट्रांग हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेटर काम करें। आप आयुर्वेद की दिनचर्या भी फॉलो कर सकते हैं, आपके किस समय खाना है, कितना खाना है, ठीक है, वो अपनी प्रकृति अनुसार खाना है आपको, कि क्या भोजन मौसम के अनुसार ऋतुचर्या।
1: और हम यहाँ पर समय समय पर आयुर्वेद पर भी आधारित कार्यक्रम करते हैं, तो आप उनको भी आप सुनते रहिए। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर रीता गंगवानी है, जो कि एक पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट कोच भी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी रीता जी, कि जैसे एक फिटनेस की जब हम बात करते हैं, और जब किसी पेजेंट में देखते हैं, हम किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं, या जो लोग बहुत ज्यादा ब्यूटी एंड एक उसमें होते हैं, तो उनके फिटनेस और इनकी फिटनेस, नॉर्मल फिटनेस में क्या फर्क आप देखती हैं, क्योंकि आप उनको कोच करती हैं?
3: जी, उनकी जो आप देखेंगे लाइफस्टाइल बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है
1: जी।
3: सारा दिन कैमरास के आगे, मेकअप रूम्स में इधर से उधर भागना, इवेंट्स में, तो डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा जरूरत है अपने फिटनेस की तरफ ध्यान रखने का। तो ऐसे में उनको सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मधु जी ने कहा, डाइट का बहुत

0: वो है ग्रैटिट्यूड। जिंदगी में अगर आप शुक्रगुजार हैं किसी चीज़ के लिए, और हम लोग ज़्यादातर कंप्लेंट्स में लगे रहते हैं और कंपैरिजन में लगे रहते हैं, क्योंकि ये जो ग्लैमर वर्ल्ड है वहाँ पे बस यही है कि आज आप हैं और कल नया चेहरा आया तो आपको कोई नहीं याद रखता। तो ये चीज होगी, होती रहती है,
1: इनसिक्योरिटी
0: में रहते हैं, तो आपको खुद को बहुत ही बैलेंस करना पड़ता है। तो खुद के लिए एटलीस्ट मेरे पास है क्या। अब जैसे कुछ मेरे स्टूडेंट हैं जो इंटरनेशनल गए थे और वहाँ बोला, मैम इतना टफ रूटीन है, आई एम जस्ट बर्नट आउट, हमें सोने को भी नहीं मिलता, एक घंटा भी नहीं मिलता है। तो फिर उनको मैंने कहा, ठीक है तुम ये सोचो कि कितने ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे शूज में होना चाहेंगे, तुम्हारी जगह होना चाहेंगे। ग्रेटफुल रहो कि भगवान ने तुम्हें ये मौका दिया। तो ये लोग बहुत सारा मेडिटेशन करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में, क्योंकि टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, और कितने ऐसे हैं जो टाइम पर अपने फोन भी बंद कर देते हैं। तो डिटॉक्सिंग करना अपने आप को डिजिटल मीडिया से, क्योंकि अगर हर चीज अपने बारे में पढ़ने लगे तो और ज्यादा टेंशन में आते हैं। तो मेंटल फिटनेस ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट है रादर देन फिटनेस। ऑफ कोर्स बॉडी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि आप एक ग्लैमर वर्ल्ड में हैं, तो जिम के साथ साथ, डाइट के साथ साथ मेंटल फिटनेस बहुत मैटर करती है, स्पेशली ग्लैमर वर्ल्ड में।
1: जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर रीता ने हमें बताई। हमारे एक लिसनर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। हेलो।
2: हाँ जी मैम, नमस्ते।
1: जी नमस्कार, बताएं क्या नाम है आपका?
2: आपको भी नमस्ते, मेरा नाम कमलेश है, ग्रेटर नोएडा से बोल
1: रहे। अच्छा जी कमलेश जी, बताइए क्या पूछना है?
2: ये पूछ रही हूँ कि हम जैसे हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद वो पेट में दर्द हो जाता है, और जैसे जैसे रात का भोजन बचा हुआ होता है थोड़ा बहुत, सोचते क्या फेंकेंगे इसको, खा ही लें, कि आजकल महंगाई बहुत है, वो सही रहता है या नहीं?
1: खाना न्यूट्रिशन पे हम बात करें, कमलेश जी जरूर सुनिए हमारा प्रोग्राम, और सही न्यूट्रिशन के बारे में हमारे जो विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं। एक जो इनका प्रश्न है, बहुत कॉमन है और ज्यादातर लेडीज इस चीज को करती हैं कि कोई चीज बची, और जो उन्होंने कहा वो भी सही है कि इतनी महंगाई है और कोई चीज को फेंकना भी ठीक नहीं। क्या कहेंगी, इस तरह का खाना खाया जा सकता है और कितने घंटों तक बना हुआ खाना खा सकता है आदमी?
3: मैं तो यही कहूंगी कि अपने शरीर को जो है डस्टबिन ना बनाए, और जो है भोजन हमेशा फ्रेश खाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि 3 घंटे के बाद जो खाना बना हुआ है उसको 3 घंटे के बाद नहीं खाना चाहिए, वो तामसिक होने लगता है। तो जो सात्विक आहार भी आपको लगता है आप हेल्दी फूड खा रहे हैं, अगर आपने उसको फ्रिज में रखा और नेक्स्ट डे खाया तो उसके गुणों में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो उतना ही बनाएं जितनी आवश्यकता है, और अगर बच जाता है तो किसी गरीब को दे दें, पर कोशिश करें कि आप हेल्दी फ्रेश फूड खाएं।
1: जी जी, तो कमलेश जी आपको जवाब मिल गया। और कुछ मैसेजेस भी हैं हमारे पास, ये हमें लिखकर भेजा है हमारे श्रोता है युवराज चौहान जी, कहाँ बुरहानपुर एमपी से इन्होंने मैसेज किया है कि मेरी उम्र 30 इयर्स है और हाइट 5'9" है, वेट 52 है, वैसे मुझे कोई परेशानी नहीं है पर लोग बोलते हैं कि कुछ खाया पिया कर, और मैं एक किसान हूँ, वैसे मैं 50 kg की बोरी उठा लेता हूँ, जैसे इन्होंने हम पहले बात कर रहे थे। तो क्या कहेंगे आप लोग बताएं, क्या आपका इनके बारे में? 52 इज क्वाइट लेस वेट।
3: जी वेट तो कम है, बट अगर इतना हैवी वेट भी उठा लेते हैं, हमारे किसान हैं तो डेफिनेटली बहुत शक्तिशाली हैं, और अपना डाइट और बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब हो सकता है वो डाइट कम ले रहे हो, अगर उन्हें कमजोरी फील हो रही होती तो हम डेफिनेटली ये समझते कि कोई समस्या है उनके साथ, पर वो हेल्दी फील कर रहे हैं, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, तो हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि इन्हें कोई समस्या है। तो डेफिनेटली आप योगाभ्यास भी कर सकते हैं और साथ में डाइट को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट बढ़ाई जा सकती है, इसमें प्रोटीन्स बढ़ाए जा सकते हैं, तो समतोमिक बैलेंस स्टेट में पहुंच जाएंगे। योग जो है सिर्फ वो वेट लॉस के लिए नहीं है, आप एक समतोमिक बैलेंस स्टेट में पहुंच जाते हैं उसे करके, तो योग के अभ्यास आसन वगैरह कर सकते हैं, बॉडी में स्ट्रेंथ भी आएगी। जी, और अपने डाइट पर थोड़ा और ध्यान दें, जो हाई कार्ब्स फूड है, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स फूड है, मिलेट्स, ये सब जो हाई एनर्जी फूड जो है वो सब डेफिनेटली अपनी डाइट में शामिल करें तो मदद मिलेगी।
0: मधु जी,
1: हाँ,
0: मैं यही कहने वाली थी कि मधु जी ने जैसे कहा कि अगर उनको कोई तकलीफ नहीं है तो हो सकता है बॉडी कॉम्पोजिशन भी वैसी हो, बट इन्होंने जो ये बात कही ना कि लोग कहते हैं कि तुम बहुत पतले हो पतले हो, तो इन्हें मैं कहना चाहूंगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब भी लोगों को कोई काम होता नहीं, वो कुछ भी डिफरेंट देखते हैं, या हो सकता है आप इतने फिट दिखाई देते हो कि कुछ जेलस भी फील करते हैं लोग, और अगर कोई आपको ऐसा कह रहा है, मेरा तो ये मानना है कि जेलसी एक किस्म की इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, कि कोई आपको बोल रहा है कि आप फिट दिखाई दे रहे हैं, तो लोगों की बातों में मत आइए, खुद को

0: एक्सेप्ट कीजिए, कबूल कीजिए मैं ऐसा हूँ। आप फिट है, सोचने की कोई बात ही नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम होती तो अलग बात थी, बट अगर आप फिट हैं तो कबूल कीजिए कि मैं ऐसा ही हूं। बार बार अगर आप इसके बारे में सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, मैं पतला हूं मैं पतला हूं, तो कहीं ना कहीं आप अपने ही शब्दों से, अपने ही थॉट से खुद को बीमार कर देंगे। और कई बार बीमारी हमारी सोच से ही आ जाती है। हम जब नेगेटिव सोचने लगते हैं, बाहर से किसी ने कुछ कहा और वो हमने सुना और वो हमारी बॉडी में नेगेटिविटी के रूप में बाहर निकलता है। तो आप बिल्कुल फिट हैं, बढ़िया हैं, आप लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, कबूल कीजिए कि आपकी बॉडी ऐसी है और आप खुश रहेंगे।
1: अच्छा एक चीज और बताइए डॉक्टर गीता, जैसे हम जब सेलिब्रिटीज की बात करते हैं और कुछ लोग तो जैसे साइज जीरो की बात भी करते हैं, बहुत बहुत दुबले होते हैं और वो लोग कोशिश भी करते हैं अपने को दुबला रखने की, तो वो फिट होते हैं? जैसे अभी आप कह रही हैं कि बहुत पतले हैं तो कोई बात नहीं, हाँ अच्छी बात है, हाँ तो फिटनेस और एक लुक्स, हाँ ये कहाँ पर बैलेंस कर सकता है, कैसे कर सकता है?
0: आपने बोला साइज जीरो वाले लोग फिट हैं, तो मैं कहूंगी फिट हैं। पहली बात तो ये कि जब आप फिटनेस की बात करते हैं तो कभी आप खुद से ये चीज शुरू मत कीजिए, आपको ऊपर से किसी गुरु की जरूरत है जो आपको प्रॉपर डाइट बताए, प्रॉपर आपका रूटीन बताए, तब आप जीरो में जाएंगे। अगर आप अपने आप को भूखा रख के साइज जीरो के चक्कर में पड़ते हैं, या किसी कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको एनोरेक्सिया की बीमारी होती है, वो खाना खाती हैं फिर उंगली डाल के उल्टी कर देती हैं कि हाँ मेरे को पतला दिखना है, खाना अंदर नहीं रखना चाहिए, तो ये सब भी एक किस्म की बीमारी है। तो आपको पहली चीज, अगर इस तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, तो पहले किसी विशेषज्ञ को ढूंढे जो आपको प्रॉपरली गाइड सके आपके खाने में, आपकी जिमिंग में, आपके हर चीज में। प्लस इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे और चीटिंग नहीं करेंगे, अब सामने खाने आ गया, खाना आ गया, आपसे कहा गया है कि आपको पेस्ट्री नहीं खानी है और आपको मना किया गया, लेकिन पेस्ट्री सामने है और आपसे रहा नहीं गया और आपने पेस्ट्री खा ली, तो फिर डेफिनेटली आप साइज जीरो पे नहीं पहुंचेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जितने भी लोग अपने को मेंटेन करते हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं, मतलब आगे कुछ भी हो सामने नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। तो डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है एक अच्छी परफेक्ट लाइफस्टाइल में। और डिसिप्लिन कैसा, सुबह से लेके रात तक, आपके जगने से लेके सोने तक, हर पहर आपको अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने फिटनेस के गोल को अचीव कर पाएंगे। आसान नहीं है, बट होगा, एक दिन जरूर होगा। हिम्मत मत हारें, क्योंकि जब बीज बोया जाता है तो उसको पेड़ बनने में थोड़ा वक्त तो लगता है।
1: जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने बोली, समय लगेगा पर होगा जरूर अगर आपका निश्चय दृढ़ है तो। हमारे एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार शालिनी जी।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत बेदी जी, कैसी हैं आप?
2: ठीक हूँ, सबसे पुराने योगी मैं ही हूँ।
1: नहीं नहीं, आपसे भी पुराने बहुत सारे लोग हैं।
2: अच्छा, मेरे को 27वां साल है।
1: अच्छा, आप योग करती हैं रेगुलरली?
2: हाँ, मैं वो थी जो दो कदम नहीं चल सकती थी, तो फिर अब मैं 22 साल से उसी सेंटर की हेड हूँ।
1: चलिए बहुत अच्छी बात, लेकिन हाँ, आपको भी कुछ पूछना है क्या, कोई प्रश्न है?
2: नहीं, प्रश्न ऐसे है कि मैं इनके थ्रू एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि लोग जो टीवी देख के करते हैं वो ना सीखें, क्योंकि ये कहेंगे तो लोग मान जाएंगे, हम गलत को करते हुए भी टोकेंगे तो कोई हमारी बात नहीं मानता।
1: तो जैसा हमें आता है, जैसा अभी रीता मैम कह रही थी कि किसी को गुरु मान के और उनकी ही बात को देखे दिखाई मत करिए, तो ये बात कन्वे हमारी हुई है यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं और इसी तरह से जुड़ा रहिया करिए और हमारे साथ इसी तरह से बात करती रहा करिए। चलिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन हम ये बता दें अपने श्रोताओं को कि हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत अच्छी सिंगर्स भी हैं, दोनों की दोनों। तो पहले डॉक्टर रीता आप कुछ सुनाएंगी?
0: जी बिल्कुल, मेरा फेवरेट गाना।
1: हाँ सुनाइए प्लीज।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप हैं रेडियो डॉक्टर में और आज हम बात कर रहे हैं फिटनेस पर, फिटनेस मंत्रा। क्या है फिटनेस मंत्रा? अगर आप भी अपना फिटनेस मंत्रा हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 पर हम इंतजार कर रहे हैं आपके मैसेजेस का। कुछ मैसेजेस हमारे पास हैं। एक मैसेज हमें किया है रवि जी ने और इन्होंने लिखा है दिल्ली से ही कि व्हाट लिमिट्स फ्लेक्सिबिलिटी मोर, मसल्स और नर्वस सिस्टम। और दूसरा इन्होंने पूछा है कि जनरली विच इज मोर इम्पॉर्टेंट इन योग, ब्रीदिंग या स्ट्रेचिंग, आप बताएं।
2: जी, आई वुड से कि योग में जो है नर्वस सिस्टम रेगुलेशन जो है विच इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि इट विल फॉलो। अगर आपका मन शांत है, आपकी ब्रीदिंग जो है वो कोऑर्डिनेटेड है, तो डेफिनेटली आपकी मसल्स भी रिलैक्स होंगी।
1: अच्छा।
2: और दे आर इंटरलेटेड, बेसिकली हमारा जो माइंड और बॉडी है वो एकदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और अगर आप तनाव में हैं, आप देखेंगे आपकी मसल्स टाइट हो जाती हैं, आप उतना फ्लेक्सिबल फील ही नहीं करते हैं। आपका मन शांत हो जाए तो डेफिनेटली आप देखेंगे आपकी नेक मसल्स, शोल्डर मसल्स, ये सब रिलैक्स हो जाते हैं, आपको बॉडी में पेन इस तरह की समस्याएं नहीं
1: आती। रिलैक्सेशन इज वेरी
2: इंपॉर्टेंट।
1: और ब्रीदिंग एंड स्ट्रेचिंग,
2: तो अगर हम क्या करते हैं, जब हम कोई आसन कराते हैं किसी को, तो हम उसमें कहते हैं आप श्वास के साथ करें इसे। तो आप आसन में सिर्फ फिजिकल कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, आप साथ में उसको श्वास को लेके चल रहे हैं। तो हम इसमें, अगर मैं योग सूत्र की बात करूं, तो उसमें यही है कि स्थिर सुखम आसनम, आसन क्या है जिसमें हम स्थिर हैं और सुखी हैं। तो महर्षि पतंजलि ने कहीं भी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी एज सच वर्ड की बात नहीं करी, स्थिरता की बात करी है और कम्फर्ट की बात करी है। तो जब आप स्थिर हैं, सुखी हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी विल फॉलो। एंड देन प्रतन शैथिल्य अनंत समापत्ति, यानी प्रतन के शिथिलता, मतलब रिलैक्स्ड वे में करने की बात की गई। आप जब रिलैक्स्ड वे में एक ही अभ्यास को बार बार बार बार करते हैं तो डेफिनेटली आपकी फ्लेक्सिबिलिटी फिजिकल लेवल पर इम्प्रूव होती है। एंड देन आफ्टर दैट आपके जो फिजिकल लेवल पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मस्कुलर टेंशन हैं, जैसे कि जनरली तनाव में हमारी जो नेक मसल्स हैं, सब ऑक्सीपिटल्स, SCM मसल्स, ये सब टाइट हो जाते हैं, या सोआस मसल जो है जिसे हमारी इमोशनल मसल भी कहा जाता है, इनको स्ट्रेस रहता है, उनकी मसल्स टाइट हो जाती हैं। तो जब आप ब्रीदिंग पे काम करते हैं, श्वास पे काम करते हैं, मेंटल लेवल पर काम करते हैं, अभ्यास करते हैं, योग निद्रा इस तरह के अभ्यास करते हैं, तो आप देखेंगे उसमें एक एक मसल्स को, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन इज देयर, एक एक मसल को हम रिलैक्स करते हैं। तो मन पे काम करके भी हम शरीर पे काम कर सकते हैं और शरीर पे काम करके हम मन पे काम कर सकते हैं।
1: जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात भी थी। और देखिए हमारे जो श्रोता है हमारे साथ जुड़ते हैं।

0: बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखते हैं इस कार्यक्रम से, और ऐसा ही कुछ हमें बताया है हमारी इस श्रोता ने, परिधि हैं दिल्ली से लिख रही हैं, ग्रेट इन्फॉर्मेशन, वेरी गुड टॉपिक, मच नीडेड फॉर आर बिजी लाइफ स्टाइल, थैंक यू सो मच शालिनी जी. माई टेक अवेज फ्रॉम प्रोग्राम सो फार इज डिसिप्लिन एंड ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल फिटनेस बोथ फिजिकल एंड मेंटल. तो ये हमारे श्रोता जब हमें बताते हैं कि हमारा प्रोग्राम जिस पर्पज से हम कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है. और आप भी अगर शेयर करना चाहें कि आप क्या सीख रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम से और आपका फिटनेस मंत्रा क्या है, क्योंकि कुछ लोगों का अपना अलग तरीका होता है फिट रहने का. कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग वॉक करते हैं, कुछ लोग रन करते हैं, कुछ लोग साइकिलिंग करते हैं, कुछ योग करते हैं. तो आप अगर हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आप शेयर करना चाहते हैं कि आप किस तरह से अपने आप को फिट रखते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं. एक लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं. हेलो.
1: हाँ हेलो मैम,
0: नमस्कार.
1: नमस्ते.
0: जी नमस्कार.
1: और डॉक्टर साहिबा को भी नमस्ते मैम.
0: जी अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी मैं गिरीश चंद्रा बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से.
0: जी जी बताइए क्या पूछना है आपको.
1: तो मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरा एक्सीडेंट में एक पाँव कट गया था, घुटने से ऊपर से कटा हुआ है, तो योगा के लिए जैसे मेरे को थोड़ा बलगम वगैरह बनता है, कफ बनता है मेरे को, तो वो स्मोकिंग वगैरह थोड़ा करता हूँ तो कफ वगैरह बनता है, तो इसके लिए कुछ योगा है हमारे इस लिए मैम?
0: चलिए मधु जी बता रही हैं आपको.
2: जी डेफिनेटली योग सभी के लिए है, आप डेफिनेटली योग कर सकते हैं. योग में बहुत सारे ऐसे अभ्यास है जैसे यौगिक सूक्ष्मायाम की क्रियाएं हैं, वत्सल शक्ति विकासक क्रियाएं कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे जो षटकर्म के अभ्यास हैं जिससे हमारी शुरुआत भी की जाती है हठ योग में, तो कुंजल का अभ्यास बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है. जैसे बोल रहे बलगम बनती है उसे बाहर निकालने में, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. तो आप जो है हमारे मोरारजी साई राष्ट्रीय योग संस्थान में भी आ सकते हैं. वी हैव अ ओपीडी हेयर स्पेशली फॉर पेशेंट्स जिन्हें तरह तरह की प्रॉब्लम्स हों. सभी आयु वर्ग के योग और सभी हेल्थ इशूज कंडीशन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिन्हें हैं वो पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं उन्हें बहुत बेनिफिट होता है. तो हम योग की ही विभिन्न टेक्निक्स के थ्रू ने जो है हम ठीक उनको कोशिश करते हैं कि वो क्योर हो पाए, उनमें हीलिंग हो पाए बेसिकली. तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा. पर हाँ एक और बात यह है कि आपको स्मोकिंग छोड़ना होगा, तो आप उसको धीरे धीरे जो है कम करें. विड्रॉल सिम्टम आते हैं कभी कभी एकदम से छोड़ने पर, तो आप उसके लिए जो है डॉक्टर की हेल्प लें. और साथ ही साथ जो है अगर आप यौगिक जो है दिनचर्या जो है उसको अपनाते हैं, यौगिक रूटीन फॉलो करते हैं, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल.
0: और आपने बोला कि एक रिलैक्सेशन की जरूरत होती है और मेंटल रिलैक्सेशन से फिजिकल वेलबींग हो सकती है. तो मैं हमने सुना है कि कुछ चैंट्स भी होते हैं जिसको बोलते हैं कि आप इसको सुने या आप उसके साथ कुछ चैंटिंग करें, तो उस तरह के कुछ मंत्र के बारे में या चैंट्स के बारे में बताएं या कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सके हमारे श्रोताओं को.
2: जी बिल्कुल. मैं तो ये कहूंगी कि जो मंत्राज हैं वो जो है आसन है माइंड के लिए. तो अगर हम कहीं भी हमें एंग्जाइटी होती है, कोई परफॉर्मेंस एंग्जाइटी लाइक बिफोर एग्जामिनेशन या बिफोर एन इंटरव्यू, या आप सोचिए कोई प्रोग्राम ही टीवी में आपका शुरू होने वाला है लाइव, तो उससे पहले अगर आप ओम चैंट कर लें.
0: यहाँ किया है आपने?
2: बनी मन कर लेते ले. तो बहुत ही हेल्पफुल होता है. इसके अलावा जो है हमारा जो वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से प्रेरित जो मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिना, मैं यहाँ पे चैंट करना चाहूंगी. तो वो अगर करें तो आप देखेंगे कैसे अब ब्रीदिंग एकदम रिलैक्स हो जाती है. जी सर्वे भवन्तु

0: शांति ही शांति ही। बहुत
1: वाह
0: बढ़िया,
1: वाह,
0: बहुत
1: क्या बात है।
0: बढ़िया,
1: सच
0: थैंक
1: में एक अभी ही ऐसा फील हुआ कि हाँ, इसको और सुना जाए, ये एक
0: यू मैम। हाँ, सुनते रहे
1: अलग सी
0: सुनते रहे,
1: अनुभूति दे रहा
0: बहुत खुशी।
1: है ना। तो अभी तो हम नहीं ये ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमारा प्रोग्राम खत्म होगा तो हम एक सेशन आपके साथ
0: जी
1: जरूर
0: जरूर।
1: लेंगे। और ये इस तरह के जो आप चैंटिंग्स करते हैं, मुझे लगता है ये काफी रिलैक्स करता है अगर हम इसको बार
0: जी
1: बार सुने, बार बार सुने। इस तरह का कुछ आप लोग क्या भी किया जाता है डॉक्टर गीता?

0: आप लोग जब कोचिंग करते हैं
1: जी
0: तो इस तरह का कुछ चैंटिंग्स भी उसमें आप इंक्लूड करते हैं?
1: जी चैंटिंग्स के साथ साथ हम लोग कुछ ब्रेथ एक्सरसाइजेस भी करते हैं, जिसमें मधु जी भी जैसे बोली थी योगिक एक्सरसाइजेस, क्योंकि टेंशन जब हम लोग होती है हम अपने लंग्स को पूरा नहीं यूज़ करते, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से सांस लेते हैं, लेकिन लंग की कैपेसिटी है कि कम से कम 5 लीटर ऑक्सीजन ले सकता है, हम बस 1 लीटर में काम चला रहे होते हैं। तो जब बच्चे स्टेज पे जाते हैं और वो ब्लैंक हो जाते हैं, बिल्कुल उनको समझ नहीं आता क्या करना होता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम उनको योगिक ब्रीदिंग सिखाते हैं, जब पेट को आप बलून की तरह फुलाते हैं और हाथ रखवा के उनको महसूस करवाते हैं, क्योंकि हम अपना चेस्ट बॉक्स ठीक से यूज़ नहीं करते, एक तो वो कराते हैं, अफकोर्स ओम का उच्चारण कराते हैं, ताकि जैसे पहले भी किसी श्रोता ने बोला था कि आवाज़ को कैसे मधुर
0: जी
1: करें,
0: जी
1: तो आवाज़ को मधुर करवाने के लिए भी यही हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं। प्लस उनको कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे बांसुरी बजाना, क्योंकि उसमें आपका फोर्स लगता है वो जब आप बांसुरी को बजाते हो, तो आवाज़ को ठीक करने के लिए आपकी आपको ठहराव देने के लिए मेंटली, जैसे कि आप स्टेज पे ब्लैंक नहीं हो जाएं। प्लस इसके बाद एक होती है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, मतलब पैरों से उनको भींचना पड़ता है, पैरों के टोज से भींचते हुए ऊपर की तरफ आए और फिर पूरी बॉडी को एकदम टाइट करके फिर धीरे धीरे एक एक बॉडी पार्ट करके छोड़ा, और लास्ट में जब शरीर से आपके पैरों के नीचे से वो अर्थ हो जाती है नेगेटिव एनर्जी। तो बेसिकली यही टेक्निक्स मैम थोड़ी योगिक भाषा में बता रही हैं, मैं थोड़ी मॉडर्न भाषा में बता रही हूँ, पर बेसिकली यही टेक्निक्स हैं जो आपको रिलैक्स कर सकती हैं।
0: जी
1: प्लस इसके साथ साथ बच्चों को ये भी सिखाया जाता है, क्योंकि यंगस्टर्स हैं, दिन में बहुत चीज़ें होती हैं उनके साथ, आजकल रिलेशनशिप इश्यूज है, ये है वो है, तो उनको ये भी सिखाते हैं हम लोग कि रात को सोने से पहले आपको अपने दिमाग को खाली करके सोना बहुत ज़रूरी है,
0: जी जी
1: क्योंकि
0: जी
1: अगर आप दिमाग को खाली नहीं करते हैं और वही चीजें लेके सोचते हैं, परेशानी आती रहेगी आती रहेगी, ठीक नहीं होंगे। तो उनको लिखाते हैं कि किस तरीके से आपको दिन में पहला तो अच्छा क्या हुआ, दिन में बुरा क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ उसके लिए थैंक यू, बुरा क्या हुआ वो पढ़ के, पढ़ना जरूरी है क्योंकि शरीर से निकालना है, जोर से एक बार बोल दो उसको, और फिर हम उसको टुकड़े टुकड़े करवा के उस कागज को हवा में फेंकवा देते हैं कि भाई ये गई अब तुम्हारी, अब इसकी तरफ मुड़ के नहीं
0: अच्छा,
1: देखना।
0: डज इट वर्क?
1: इट डज वर्क,
0: ओके.
1: बट देखिए फेथ, भगवान को किसने देखा, नहीं देखा, पर हमें फेथ है कि भगवान है, तो ये सारी की सारी जितनी भी मॉडेलिटीज हैं वो फेथ पर चलती हैं, आप फेथ से करोगे तो आप कुछ भी पा सकते हैं। तो यस, ये चीजें भी हम लोग भी पैजेंट के या मॉडलिंग के वर्ल्ड में जरूर करवाते हैं।
0: जी. और देखिए, हमारे कुछ श्रोता जो हमारे साथ जुड़े हैं वो अपने फिटनेस मंत्र भी हमें भेज रहे हैं, जैसे हमने उनसे इनवाइट किया था. आलोका जी लिख रही हैं, 54 ईयर्स की हैं, नोएडा में रहती हैं. आई एम प्रैक्टिसिंग योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस डेली फॉर 45 मिनट्स. आई एम फीलिंग सम पेन इन माई शोल्डर्स, बट आई एम वेरी डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड. तो ये सारी चीज़ें ये फॉलो कर रही हैं. इन्होंने लिखा है कि मैं मॉर्निंग वॉक भी करती हूँ. कुछ थोड़ा एलर्जी है परफ्यूम डस्ट एंड पॉल्यूशन से, पर आपका सेशन मुझे बहुत इंफॉर्मेटिव लग रहा है. तो थैंक यू सो मच आलोका जी. और आपके गाने की तारीफ आई है सिलचर आसाम
1: थैंक यू सो मच,
0: से.
1: थैंक
0: जी,
1: यू।
0: हमारे लिखने वाले श्रोता हैं मीरा सिंह, लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा गीत आपने सुनाया और एक्सलेंट वॉइस, मुझे बहुत पसंद आया ये गीत.
1: शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं. और ये नरदेव सिंह चौहान जी ने लिखा है कोटद्वार उत्तराखंड से कि अगर प्रेम से रहा जाए और पर पीड़ा को समझा जाए, जिसका बहुत आजकल अभाव है, तो भी और शुद्ध पर्यावरण हो, तो ये सारी चीजें भी हमें फिट रख सकती हैं. क्या
1: मैम
0: कहेंगे?
1: एक बिल्कुल इनको मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि हमारी इंसानों की आदत होती है कि हम पास्ट को साथ में लेके बहुत चलते हैं, कल क्या हुआ, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इतना पास्ट को जब हम साथ में लेके चलते भी वो तो बीत गई, अब उस पे मुड़ के तो हम जा नहीं सकते, तो आज क्यों खराब करना है पास्ट के बारे में सोच सोच के। तो कई बार वो भी हमारे हेल्थ को खराब करता है, जब हम पास्ट में लोगों को फॉरगिव नहीं करते या खुद को ही फॉरगिव नहीं करते, गिल्ट की फीलिंग में रहते हैं, तो कई बार खुद को भी फॉरगिव अगर आप करेंगे और आप खुद ही देखेंगे कि आपकी हेल्थ में भी बहुत परिवर्तन आएगा।
0: जी, यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, खूबसूरत सा गीत सुनकर वापस आते हैं. आप हमें यूं ही लिखते रहिए, बताते रहिए अपना फिटनेस मंत्र, और रेडियो डॉक्टर के साथ जुड़े रहिए.

0: आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और थोड़ा सा ही समय बाकी है, लेकिन बहुत सारे आपके मैसेजेस हैं। यशपाल जी हमें द्वारका दिल्ली से लिख रहे हैं, वेरी नाइस टॉपिक शालिनी जी। फॉर माय फिजिकल फिटनेस आई ट्राई टू फॉलो अ डिसिप्लिन लाइफ, बैलेंस प्रॉपर डाइट, मेंटल लेवल पे ओवर थिंकिंग नहीं करता हूँ, एंग्जाइटी इश्यूज पर कंट्रोल करता हूँ, मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग भी मैं करता हूँ। बहुत सारी चीजें ये करते हैं, इसके अलावा भी कुछ छूट गया तो बताइए।
1: मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा छूट गया है, लोग उसको इग्नोर ही करते हैं, इसलिए किसी ने बोला नहीं इसके बारे में।
0: अच्छा बताइए।
1: हाइजीन,
0: ओके,
1: हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, साफ सफाई हमारे शरीर की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर आप हाइजीन नहीं रखेंगे आपके बालों में, आपके स्किन में, आप मुंह से बात करेंगे तो आपके मुंह से स्मेल आ रही है, आपके हाथ गंदे हैं, पहली चीज तो लोग ही आपको इग्नोर करने लगेंगे, फिर आप सोचेंगे लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, फिर आप लोनलीनेस में चले जाएंगे, फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज के आएंगे। और इसके अलावा इतना खूबसूरत शरीर भगवान ने हमें दिया जिसमें हमें ना जाने कितने साल रहना है, करोड़ों का शरीर है, सोचिए जिनके पास शरीर के कुछ हिस्से नहीं होते वो उनके लिए कितना तरसते हैं। हमारा एक एक हिस्सा करोड़ों का है और हम उसको इस तरीके से निग्लेक्ट करते हैं कि लोग कई बार ध्यान नहीं देते। तो हाइजीन बहुत जरूरी है ताकि लोग भी आपके साथ बात करना चाहें, आप साफ सुथरे दिखें, और नेचुरली ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एक अच्छी पर्सनालिटी का भी होने का, तो हाइजीन का भी ध्यान।

0: ऊपर
1: जी
0: से
1: जी
0: नीचे।
1: बहुत बहुत
0: बहुत
1: इम्पोर्टेंट
0: जरूरी
1: बात आपने ऐड की, और समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं करना चाह रही थी, क्योंकि हमने जो आज का जो ये विषय रखा है वो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 1 महीना पहले किया है हमने ये कार्यक्रम, तो एक इंटेंशन है ये करने का कि अगले 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, और इस पूरे साल में हम जो जो गतिविधियां करते हैं उसमें तेजी आती है जब इस
0: जी
1: महीने में हम कार्यक्रम करते हैं। तो इस बार जब हम ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, डॉक्टर मधु खुराना हमारे साथ हैं, किस तरह के बदलाव या किस तरह के अचीवमेंट्स पे आप बात करना चाहेंगी या कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसके बारे में बताना चाहेंगी?
0: जी मैम, इस बार जो है हमारे जो योग महोत्सव में 13 मार्च को जो मनाया जाता है, विच इज़ द काउंट डाउन टू 100 डेज, लाइक
1: जी
0: वहाँ से शुरुआत हो जाती है, बिगुल बज जाता है कि अब जो है योग डे आने वाला है अंतर्राष्ट्रीय। तो उसमें एक हमारा कैंपेन है आयुष मिनिस्ट्री का, योग 365, वो लॉन्च किया है हमारे माननीय जो आयुष मंत्री हैं उन्होंने। तो उसमें ये है कि आप एक टोल फ्री नंबर है उस पर जाकर, विच इज़ 1800-315-7008, या फिर आप आयुष मिनिस्ट्री के पोर्टल पे जाकर आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं अपना नेम कॉन्टैक्ट नंबर देकर। वो आपको व्हाट्सएप पर लिंक भेजेंगे जिसमें कि 14 दिन का फ्री आपको योग जो है चैलेंज दिया जाता है, मतलब आप सेशन अटेंड कर सकते हैं। इस तरह की सुविधा दी जा रही है, सभी इससे जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा आप हर साल की तरह इस साल भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं डेली जो हैं, किसी न किसी आइकोनिक प्लेस पर जो है योग जो है सेलिब्रेशन मास लेवल पर किया जा रहा है। अभी रिसेंटली हमारा 50th जो योग डे सेलिब्रेशन 2 मई को हुआ है काना शांति वनम में, तेलंगाना में, हैदराबाद में, जहां पर एक रिकॉर्ड भी बना है जिसमें 6,000 से अधिक लोगों ने भुजंगासन का अभ्यास एक साथ किया है। भुजंगासन इज वेरी गुड आसना फॉर चेस्ट एक्सपेंशन, जो जिनको ब्रीदिंग की समस्या होती है, या फिर इट स्ट्रेंथन द बैक मसल्स, जिन्हें कमर दर्द की जो मस्कुलर इशूज रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, उसे दूर करने के लिए भी और उसकी प्रिवेंशन के लिए भी। तो उसका एक एशियन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, और अभी हमारा 25th डे टू IDY आने वाला है। दिस 27 मई को हमारा जो है खजुरा में, विच इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो, वहाँ पर जो है हमारा 25th डे मनाया जाएगा, जिसमें सब लोग मिलकर कॉमन योगा प्रोटोकॉल का एक साथ अभ्यास करेंगे, क्योंकि तैयारियाँ जो है चल रही हैं साथ साथ। और इस बार नया यही है कि हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये सिर्फ योग इंटरनेशनल योग डे तक ही योग सीमित ना रह जाए, आप इसे अपनी दिनचर्या का पार्ट बनाएं, यानी डेली योग अभ्यास करें,
1: जी
0: ऐसा मैसेज जो है हम देना चाहते हैं। उसी के साथ मैम ने जैसे बात करी हाइजीन की, तो मैं ये कहना चाहूँगी योग में भी हाइजीन का कॉन्सेप्ट आता है, नियम के अंतर्गत शौच की बात की जाती है। हमारे जो षटकर्म के अभ्यास है, वो मैम ने जो आउटर जो बात करी कि हाइजीन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में इंटरनल क्लिनजिंग की बात भी योग करता है। और यौगिक जो एटीट्यूड है वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है लोगों में, जैसे कि ईश्वर प्रणिधान मैम ने बात करी, सरेंडरिंग एटीट्यूड की, एक्सेप्टेंस की, तो योग भी इसी की बात करता है, कर्म योग की बात करता है कि आप कर्म करें और फल की इच्छा छोड़ें। मैं कहूंगी लोग आसन तो कर लेते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, हालांकि प्राणायाम उतना ज्यादा नहीं करते हैं, आसन ज्यादा करते हैं, बट उसके साथ यम नियम को फॉलो अगर करें तो जो है उसका रिजल्ट कई गुना ज्यादा अच्छा आ
1: जी
0: सकता है।
1: जी
0: जी
1: जी जी बहुत ही ज़रूरी बातें आपने बताई, ये हमारे आज के प्रोग्राम की टेक अवेज हैं। आप भी चलते चलते डॉक्टर रीता क्या कहना चाहेंगी, क्या आपका मैसेज रहेगा हमारे इस कार्यक्रम के
0: मैं
1: माध्यम से?
0: श्रोताओं से ये कहना चाहूंगी कि जिंदगी की रेस जीतने से पहले शरीर को दौड़ने लायक तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे इस जिंदगी की रेस में। तो मैं एक शायराना अंदाज में कहना चाहूंगी कि काम इतना करो कि हमेशा व्यस्त रहो, और पैसा इतना कमाओ कि हमेशा मस्त रहो, और व्यायाम इतना करो कि हमेशा स्वस्थ रहो। क्योंकि स्वास्थ्य जब तक आपके पास है तब तक सब कुछ है। जिस दिन स्वस्थ नहीं रहेंगे उस दिन आप कुछ भी जिंदगी में पाना चाहेंगे तो भी पा नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हेल्थ है तो वेल्थ है।
1: बिल्कुल, हेल्थ इज एवरीथिंग। और एक आप बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल मुझे बता रही थी, वो भी बताइए श्रोताओं को।
0: जी
1: एक आपने मुझे बताया था कि लाइफ को हम कुर्सी से कंपेयर कर सकते हैं, तो मैं चाह
0: जी
1: रही थी कि मेरे श्रोता भी उसका उस ज्ञान को लें।
0: जी कि किसी टीचर ने बच्चों से एक बहुत सुंदर कुर्सी दिखा के पूछा था कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट भाग कौन सा है। किसी ने कहा पीठ, क्योंकि पीठ लगती है, किसी ने कहा हत्था जिसपे हाथ रखते हैं, पैर रखते हैं, अलग अलग चीजें बताई, लेकिन टीचर ने कहा नहीं, ये कुर्सी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, कुर्सी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कीलें जो इसे जोड़ के रखती हैं। तो ये ही बात है कि जिंदगी की कीलें जो हमें जोड़ के रखती हैं, जैसे हैप्पीनेस है हमारा, एनर्जी है, लव है, पीस है, हार्मनी है, गुड रिलेशनशिप्स हैं, वो कीलें हैं जो हमारे शरीर को जोड़ के रखती हैं। शरीर का कितना भी ख्याल रख लो, लेकिन अगर कीलें आपकी
2: कहीं ना कहीं ढीली पड़ गई तो कुर्सी गिरेगी ही गिरेगी, तो ये भी बहुत
1: बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है और याद रखने लायक है। और हमारे इस प्रोग्राम की कीले तो हमारे श्रोता हैं जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं और मजबूत

0: से जुड़े रहते हैं, इसीलिए हमारा कार्यक्रम पसंद किया जाता है। हमारे श्रोता हमें लिखते हैं कि उसको पसंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर पाठक जी, आशा पाठक जी, नीदरलैंड से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और सुनिधि चौहान जी ने भी हमें लिख कर भेजा है, नाम है नहीं, इनका गाना सुनना चाहते थे लेकिन अगले कार्यक्रम में आप सुन लीजिएगा। नाम है दिनेश अजय, गोकुलपुरा दिल्ली से आप हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। किरण जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इम्तियाज़, मोहम्मद इम्तियाज़, सलमा बेगम हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ी रही, बहुत सारे कोमल चंद साहू छत्तीसगढ़ से इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। सबके सवाल तो हम नहीं ले पर धन्यवाद देना चाहेंगे। इसी तरह से आप लिखते रहिए, सुनते रहिए और अपना पसंदीदा कार्यक्रम लिखकर हमें बताते रहिए कि कैसा लग रहा है। आप हमें लिख सकते हैं healthaiadelhi@gmail.com पर। अब स्वीकार करिए मेरा नमस्कार और धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे गेस्ट डॉक्टर मधु खुराना को और डॉक्टर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीता गंगवानी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों, यहाँ
1: शुक्रिया,
2: धन्यवाद मैम।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: सलाम है वीर सैनिकों को, हमारे उनके कर्तव्य अदम्य साहस और देश के प्रति उनके जांबाज जज्बे को, उनके बलिदान को नमन है। संदेश टू सोल्जर्स हमारे शूर वीरों को आकाशवाणी रेनबो की तरफ से प्यार भरा सलाम और पैगाम है दिल से दिल तक। शाहिद आपके साथ 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर। और आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट एक ऐसे जांबाज सोल्जर हैं जिन्होंने आतंक के ऐसे जहरीले नाग का सर कुचला था जिसे देश कभी नहीं भुला सकता। देश के दूसरे सबसे बड़े डिफेंस गैलेंट्री मेडल कीर्ति चक्र से सम्मानित, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके, आतंकियों के से जानलेवा मुठभेड़ में शरीर पर एक या दो नहीं 7 गोलियां खाकर भी डटे रहने वाले फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शायद जी, बहुत अच्छा लग रहा।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आज का हम ये प्रोग्राम मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जोश भरा होने वाला है क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस और आपकी जो सबसे खासियत जो एक ऑपरेशन था जिस पर एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है उस पर हम करेंगे बात। तो आप बन रही है हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में, यह है देश का नंबर वन रेडियो आपका अपना रेनबो दिल से दिल तक।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है हमारे सभी लिसनर्स का, देश भर में जो हमें सुन रहे हैं और देश के बाहर भी। आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में जुड़े हुए हैं। और संदेश टू सोल्जर्स में आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो कोई मामूली शख्स नहीं है। फॉर्मर DIG BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शायद जी, थैंक यू सो मच।
0: तो श्री NN दुबे हमारे साथ हैं और मैंने जैसे आपको बताया कि कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं अपने असाधारण वीरता के लिए, और उसके अलावा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। और सर यहां पर जो खास बात जो मुझे बार बार मतलब थोड़ा परेशान भी कर रही है और थोड़ा मैं एक्साइटेड भी हूं ये जानने के लिए, आप साक्षात मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो हम अक्सर मूवीज में जो देखते हैं सर, वो सिचुएशंस जो दिखाई जाती हैं जैसे बैटल फील्ड की या वॉर सिचुएशंस की या जो मिलिटेंसी पर जिस तरीके से जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो मुकाबला करते हैं, और आपकी लाइफ पर तो मूवी भी बनी है ग्राउंड जीरो। तो वो सिचुएशन वहां पर जो हुई आपके साथ उस ऑपरेशन में जिसमें एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी गाजी बाबा को आपने मार गिराया, सर वो सिचुएशन हम जानना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए।
1: कश्मीर में जब आतंकवाद शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं कि शुरुआती सालों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक बड़ा अहम रोल रहा है, और ये एक ऐसी फोर्स है जो जिसका श्रीनगर इसके पाम टॉप पे था, यानी श्रीनगर शहर की मिलिटेंसी को हैंडल करना ये बड़े गर्व की बात थी, बड़े एक अपॉर्चुनिटी और एक टास्क BSF को दिया गया था। और BSF उस समय ऑलरेडी 13 से 14 साल पंजाब टेररिज्म को हैंडल करके निकली थी, एक प्रूवन फोर्स और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बॉर्डर गार्डिंग के साथ साथ उसने इंटरनल सिक्योरिटी में उसका किरदार बहुत ही लाजवाब रहा है
0: जी।
1: तो शुरुआती दिनों के आतंकवाद के इस इतने बड़े बवाल में शुरू में तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ
0: जी,
1: और उन चीजों को एक अज्ञानता से हैंडल करना जिसका कि कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं है, किसी टेररिस्ट की पुरानी हिस्ट्री नहीं है अपने पास, उसके अटैक करने का तरीका नहीं पता है, उसमें तपी और निकली हुई फोर्स थी। और मुझको पहला मौका 1994 में मिला था जब मैं साउथ कश्मीर के अनंतनाग पुलवामा में BSF के बटालियन को लेकर डिप्लॉय हुआ था, और उन 3 सालों ने मुझको बहुत तपाया और मैं कश्मीर साउथ कश्मीर के मिलिटेंसी का एक एक रग समझने में कामयाब हुआ। हेड टू हेड मैं वापस लाया 3 साल बाद बटालियन को।

0: टू कैजुअलिटी और कंप्लीट लिस्ट ऑफ सक्सेस। और मुझे 3 साल के रिस्पाइट के बाद दोबारा 2000 में कश्मीर में जाने का मौका लगा
1: जी।
0: और ये वो साल था जब शताब्दी बदल रही थी, सन 2000, 1999 जो है 2000 हो रहा था, और दुनिया के नक्शे पे टेररिज्म की पूरी एक नई तस्वीर लिखी जा रही थी। और आप अगर 2001 देखें तो 9/11 2001 में हुआ,
1: बिल्कुल
0: जेएनके असेंबली अटैक हुआ 1 अक्टूबर 2001 को, और जहां बैठ के आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे 300-400 मीटर दूर पर जो भारत की संसद है
1: जी,
0: उस पर 13 दिसंबर 2001 को अटैक हुआ। और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं, जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकवादी संगठन जिसकी स्थापना मौलाना मसूद अजहर ने IC-814 की रिहाई के एवज में भारतीय जेल से जिसको छोड़ा गया था कंधार के टारमैक पे, उसने जाके बहावलपुर पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जम्मू कश्मीर की सरजमी पे खुदकश हमले का एक बहुत बड़ा टेरर आउटफिट रहा है और आज भी वो ये काम कर रहा है। इसी दरमियान मेरी तैनाती हुई और पार्लियामेंट अटैक के बाद तो दुनिया का पहला ये संसद था जिस पे हमला हुआ दिन दहाड़े। और इस हमले के बाद इसका जो चीफ आर्किटेक्ट मेन मास्टरमाइंड गाजी बाबा ओवरनाइट भारत का ओसामा बिन लादेन बन गया। और इसी दिल्ली में स्पेशल कोर्ट ने उसे मेन एक्यूज डिक्लेयर किया और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उसका FIR दर्ज हुआ जो आपसे 200 मीटर दूर है, पोटा लीगल रिजीम के तहत 2001 में। और उस FIR के बाद तो हॉट केक बन गया सारी एजेंसी के लिए, इंडियन आर्मी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जेएनके पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
1: मतलब तो इतना बड़ा आतंकवादी और
0: इतना बड़ा
1: जी
0: कि सब कि भारत की संसद में दिन दहाड़े जबकि सत्र चल रहा है, 242 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर बैठे हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट का भाषण कंक्लूड हो रहा है और गेट नंबर 10 से विजय चौक के तरफ से दनदनाते हुए AK-47 से 5 खुदकश पाकिस्तानी इस संसद पे हमला करते हैं, जिसपे अडवाणी जी का बयान है कि हैड दोज खुदकश नॉट बीन किल्ड आउटसाइड द प्रमाइसेस द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट वुड हैव बीन टर्न्ड इनटू पूल ऑफ ब्लड। तो दुनिया ने इसकी आलोचना करी और ये मौका मुझको मिला। BSF के बटालियन के साथ मैं कश्मीर में तैनात था और प्रधानमंत्री महोदय का ही कश्मीर दौरा था
1: जी।
0: 27 और 28 अगस्त 2003 को एक अमन की आशा के उम्मीद में वो गए हुए थे
1: जी।
0: और इस टेररिज्म के पूरे दशाब्दी के अंदर शायद पहला भारतीय प्रधानमंत्री जिनका की कश्मीर के जमीन पर दौरा था, उनको सुरक्षित वेन्यू तक लाना, उनकी सुरक्षित वापसी करना, पूरे उनके प्रोग्राम को पीसफुली कंडक्ट करना, इसमें जेएनके पुलिस BSF का बड़ा अहम किरदार रहा। और हम लोगों ने इंसिडेंट फ्री ये पूरा कंक्लूड किया, लेकिन ज्यों ही वो 28 अगस्त को वापस हो रहे थे
1: जी,
0: उनका शियारा श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ा और एक जिंदा टेररिस्ट जिसको कि 28 अगस्त को खुदकश हमले की जिम्मेदारी दी गई थी मीडिया में आने के लिए कि वर्ल्ड मीडिया में वो जैश ए मोहम्मद ये प्रूव कर सके कि सदर रियासत इस समय कश्मीर के अंदर हैं और उनकी मौजूदगी में हमें हमला कर सकते हैं, ये ऑडासिटी प्रूव करने के लिए। और वो उनका जो एम्बिशन था वो उनके लिए खुदकश साबित हुआ। दैट वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ गाजी बाबा। BSF ने जिंदा पाकिस्तानी खुदकश को पकड़ा मेरी बटालियन ने और मैं करीब 48 घंटे के फॉलो अप ऑपरेशन के बाद 29/30 के रात को अगस्त में डाउनटाउन श्रीनगर के नूरबाग में 3rd फ्लोर पे उसके एक गुप्त तहखाने में घुसकर गाजी बाबा और उसके 2 साथियों को उसको हम लोगों ने मार गिराया। और देश के वाइस मतलब उप प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि द बिगेस्ट पावर ऑफ वर्ल्ड USA इज स्टिल लुकिंग फॉर ओसामा बिन लादेन रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11, लेकिन सीमा सुरक्षा बल पे हमें गर्व है
1: जी
0: कि जिसने एक एंड भारत के सबसे बड़े आतंकवादी को हॉट शॉट मास्टर को सीधा इनकाउंटर में खोज के मारा, हम इस पर गर्व करते हैं। तो ये एक बड़ी भारी कामयाबी रही और
1: बिल्कुल
0: BSF को 12 गैलेंट्री अवार्ड इसमें मिले थे सिंगल ऑपरेशन में, इंक्लूडिंग कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और 10 गैलेंट्री प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। एक बड़े नाज और बड़े एक फक्र की बात,
1: बिल्कुल बहुत सम्मान की बात है और ये देश के लिए भी देशवासियों के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो सर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, जब सिचुएशन आई वो एनकाउंटर वाली, जो मोमेंट रहा होगा वो कैसे आप लोगों ने आपकी टीम ने फेस किया और वो सब जो इंसिडेंट हुआ जब फायरिंग हुई फिर आप घायल हुए और बहुत बुरी तरीके से घायल हुए वो सब जानना चाहेंगे।
0: 28 अगस्त को जब हमने जिंदा पाकिस्तानी को पकड़ा, जैश ए मोहम्मद का डिप्टी चीफ अंसार भाई जो कि उस मिशन पे था कि आज प्रधानमंत्री वापस जा रहे हैं तो आज मुझे श्रीनगर शहर में कहीं ना कहीं
1: कुछ बड़ा करना
0: है, लेकिन उसके उस एग्जीक्यूट करने से पहले हमने उसको जिंदा पकड़ा। हमारी

0: एलन की बड़ी एक सतर्क पेट्रोल पार्टी गली में उसने उसको जिंदा पकड़ा, उसको डिसआर्म किया, आइडेंटिटी स्टेब्लिश किया, उसको लेकर के हम अपने इंट्रोगेशन सेंटर में आए और तब तक तो खबर आग की तरह से फैल गई थी। इसलिए फैल गई थी कि पीएम का श्रीनगर से उसी दिन वापसी था, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था।
1: बिल्कुल।
0: और एक इतना बड़ा सुसाइड अटैक को होने से पहले बचा लिया। अटैक होने के बाद देखिए रिएक्शन सब लोग करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अटैक ना होने देना, उसको बचा लेना एक बहुत बड़ा डिजास्टर को रोकने वाली बात थी। तो उसके पकड़े जाने के बाद जो फॉलो अप में हमने गाजी बाबा के हाइड आउट का पता किया, तो इतना तो हमको पता था कि वी आर नॉट गोइंग टू वॉक ऑन केक।
1: बिल्कुल,
0: एक डिफिकल्ट इनकाउंटर होने जा रहा है और उसका पक्का ठिकाना पता करने में हमको करीब 36 घंटे लगे।
1: 36 घंटे
0: कंटीन्यूअस ऑपरेशन, कंटीन्यूअस पूछताछ, इंट्रोगेशन। हमारे जो गिरफ्त में पाकिस्तानी टेररिस्ट था, उसके एक खुफिया तहखाने का जो मकान मालिक था, और प्लस एक आर्किटेक्ट था जो जिसको कि आप कारपेंटर कह सकते हैं, मैसन कह सकते हैं, जिसने गाजी बाबा के तमाम गुप्त तहखानों को
1: डिजाइन
0: बनाया
1: किया
0: था, डिजाइन
1: अच्छा।
0: किया था और बड़ा साइंटिफिकली डिजाइन किया था। उस जमाने में हमारे पास वॉकी टॉकी सेट के अलावा कुछ होता नहीं था, टेक्नोलॉजी के नाम पे जीरो था, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बल पे ही सारे ऑपरेशन होते थे। उस समय क्लोज सर्किट टीवी विथ नाइट लिवन डिवाइस लगाकर अगर कोई टेररिस्ट बैठा है तो इसका तो हमको इल्म ही नहीं था।
1: बिल्कुल।
0: तो हम लोगों ने उस ऑपरेशन के लिए जब हम रात को 3:30 चले तो एक एक जवान की ब्रीफिंग हुई, खतरात के बारे में डिस्कशन हुआ कि आज क्या ये ऑपरेशन है, इसका कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, और ये भी पता था कि स्टेक्स आर वेरी हाई। अगर इस ऑपरेशन में कहीं वो बच गया या वो अगर गाजी बाबा बचने में कामयाब हो गया तो शायद हमारे करियर और हमारे एक ऑपरेशनल इमेज पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हमारे स्टेक पे था। और सारी कोई आवाज नहीं करेगा, कोई चेन की आवाज नहीं करेगा, शू की आवाज नहीं करेगा, कार में हम नहीं जाएंगे, हम लोग वॉक किए, पैदल गए, शाम को ही हमने मकान की रेकी कर ली सिविल गाड़ी में, और अचानक घर को लाइटनिंग स्पीड से घेरा। 3:45 मॉर्निंग, उसके फर्स्ट फ्लोर पे हम सीधे मेन गेट के ऊपर जंप करके अंदर घुसे। हमने मौका किसी को दिया नहीं कि कोई घर के अंदर से रिएक्ट करे या टेररिस्ट इनिशिएटिव ले हमारे पर फायर करे, हमारे
1: या वो भागने की कोशिश करे,
0: भागने की कोशिश करे, क्योंकि उसने अपने तहखाने से एक इंटरनल सीढ़ी भी बना रखी थी।
1: अच्छा।
0: जो कि उस मकान में इनकाउंटर के बाद हम लोगों ने उसको डिटेक्ट किया कि एक इंटरनली भागने का भी स्केप रास्ता था, और उस पर करीब 9 आदमी की टीम लेकर के, जिसमें 2 और अफसर थे,
1: जी,
0: मैं सीढ़ियों से चढ़ा, फर्स्ट फ्लोर सर्च किया, सेकंड फ्लोर सर्च किया, और ये लगता था किसी भी क्षण कोई भी फायर आ सकता है, किसी कमरे में इनकाउंटर हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और डाउनटाउन का घना एरिया, मकान से सटे मकान, छोटे छोटे कमरे, कहीं आपको एक तरह से कन्वेंशनल हाइड नहीं है जहां बच करके कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, यू हैव टू टेक एवरीथिंग ऑन योर बॉडी। थर्ड फ्लोर पर घुसने के बाद जब लाइट जलाया हमने तो कमरे का आलम यह था कि बिल्कुल जिसको सस्पिशियस सस्पेंस, कोई भी ह्यूमन ट्रेस नहीं, लग नहीं रहा था इसमें कोई रह रहा है। एक बार आया ये बेवकूफ बना दिया इन्फॉर्मर, शायद सही जगह नहीं आए, और पूरा कमरा हम लोगों ने सर्च किया, कुछ नहीं दिखा सिवाय एक आदमकद शीशे के जो कि वॉल में फिट था।
1: अच्छा।
0: और बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज का था, नीचे ट्रे था, कुछ उसमें परफ्यूम और मेकअप के सामान रखे थे, कोई जूता नहीं, चप्पल नहीं, कांगड़ी नहीं, कंबल नहीं, कोई फेरन नहीं, तौलिया नहीं, शूज कुछ भी नहीं था,
1: कुछ भी नहीं,
0: लग रहा था खाली है। और वो सीसीटीवी से हमको
1: देख रहा है,
0: देख रहा था, जिसका हमको इल्म नहीं था।
1: बिल्कुल।
0: तो वो शीशा एक एंट्री पॉइंट था, शीशे के पीछे पैरेलल एक केबिन और एक चैम्बर बना था, और वो केबिन और चैम्बर के अंदर वो और राशिद भाई जो उसका दूसरा लेफ्टिनेंट था,
1: अच्छा,
0: पाकिस्तानी टेररिस्ट, दोनों देख रहे थे। उनको ये नहीं पता था शायद कि जिसने डिजाइन किया है ये उसको लेके आए हैं।
1: अच्छा।
0: अगर ये उसको जरा भी पता होता
1: तो शायद
0: इनकाउंटर का सीन बदल जाता।
1: ओके।
0: हम लोगों को घुसते ही फायरिंग का सामना करना पड़ता, इनकाउंटर लंबा चलता, हमारी कैजुअलिटी शायद बढ़ सकती,
1: ज्यादा होती,
0: मार तो हम तब भी लेते लेकिन हमको शायद उसकी कीमत कुछ ज्यादा चुकानी पड़ती, और अंदर सिविलियन भी 8-9 थे घर के फरीक।
1: अच्छा।
0: अब उन लोगों को भी सेफ रखना है, और इस ऑपरेशन में एक चीज बताऊं आपको, एक भी सिविल मेंबर को सिंगल गोली नहीं लगी, सब सेफ निकले, सब सेफ निकले,
1: मतलब सिविलियन की भी पूरी हिफाजत की गई और अपने ऑपरेशन को भी,
0: और ग्लास हम लोगों ने तोड़ा, हमारा इस्तकबाल हुआ गोलियों,
1: अच्छा,
0: ग्रेनेड और गोलियों से, जिसमें हमारा एक अनफॉर्चुनेटली जवान गार्ड का बलबीर सिंह, उसको गोली लगी, वो गिर गया, एंड वो शहीद हो गया। उसके अलावा बाकी जो दो ऑपरेटर थे, कुछ ऑफिसर्स थे, उनको गोली और ग्रेनेड के छर्रों से चोट लगी, उन्हें सीन छोड़ना पड़ा। तीन ऑफिसर्स अंदर ट्रैप हो गए, फायरिंग शुरू हो गई, भागने का रास्ता एक ही।

0: तब इसका पता भी नहीं लगा, वो तो हॉस्पिटल में जाके जब मुआयना हुआ, डॉक्टरी मुआयना बॉडी का, तब पता लगा सब इतने शॉट्स लगे हैं, इतनी गोली है, एक गोली पेट में है,
1: यानी
0: आंख
1: कि
0: में।
1: आपको जो गोलियां लगी उस टाइम पर, जो आपके ऊपर फायरिंग हुई, अटैक हुआ, उसका आपको अंदाजा भी नहीं हो पाया
0: हाथ
1: आप
0: का,
1: उस वक्त?
0: सिर्फ हाथ का अंदाजा
1: सिर्फ हाथ
0: हुआ,
1: का
0: बाकी इंजरीज का कुछ पता
1: जी
0: नहीं लगा, स्टमक, लेग, चेस्ट का कुछ अंदाजा नहीं लगा।
1: जी
0: और वो तो फिर हॉस्पिटल के टेबल पे ही, सर्जिकल
1: पता
0: टेबल
1: लगा
0: के ऊपर ही ओटी में पता लगा।
1: जी
0: डॉक्टर्स ने अपना काम किया, हम लोगों ने इस टेररिज्म के खिलाफ अपना काम किया
1: जी
0: और
1: सर, हम
0: हमने।
1: इसकी बात जैसे आपने बताई कि जिस तरीके से फायरिंग हुई और आप बहुत बैडली इंजर्ड हुए और आपके साथ ही लोग भी, तो हम इस पर भी आगे बात जारी रखेंगे आपके आज के आज संदेश टू सोल्जर्स में। हमारे साथ हैं कीर्ति चक्र से सम्मानित फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल BSF श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, और आप हमसे बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107 पर, और आप हमको कॉल भी कर सकते हैं 011-2342-1084 और 2342-1080 पर।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, जो फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर हैं, जनरल हैं, बीएसएफ रहे हैं, कीर्ति चक्र से सम्मानित और दूसरे कई पुलिस मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और दूसरे कई अवार्ड से सम्मानित। जानलेवा मुठभेड़ में अपने शरीर पर एक दो नहीं सात सात गोलियां खाने वाले और उसके बावजूद भी दुश्मन के सामने डटे रहने वाले। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये जो मोमेंट था, आपकी बहुत ही सीवियर इंजरी हुई और आपके हाथ पर, दाएं हाथ पर सबसे ज्यादा, और आपके पेट में भी गोली लगी और आपकी कुछ गोलियां बदन को, जिस्म को चीर करके भी निकल गई, वो जो लम्हा रहा होगा, वो मोमेंट, वो सिचुएशन कैसे आपने फेस की, कैसे हैंडल किया और इतने बड़े आतंकवादी को ढेर भी किया?
1: ये बड़ा अलग तजुर्बा है, क्योंकि जब गोली लगती शरीर पे तो दूसरे के तजुर्बे से ही आदमी जानता है कि बेसिकली लगता कैसे है। तो मुझे जो इंजरीज हुई उसमें जो हाथ की इंजरी रही
0: जी,
1: वो बहुत ज्यादा फैटल इसलिए रही कि अल्ना, रेडियस, मीडियन तीनों नर्व उड़ गई।
0: अच्छा।
1: और बोन्स पूरी शैटर्ड हो गई। उससे क्या हुआ, हाथ का सेंसेशन ही खत्म हो गया। तो दाहिने हाथ से राइफल मेरी गिर गई, जो कि करीब हाफ मैगजीन में फायर कर चुका था।
0: अच्छा।
1: मेरे साथ पिस्टल भी थी, तो वो जो हाथ लटक गया, इसलिए उस मोमेंट में ऐसा दिखा कि मेरे हाथ पे तो कई गोलियां लग गई और उससे काफी ब्लड बह रहा था और हाथ में कोई सेंसेशन ही नहीं था।
0: अच्छा।
1: रही बात पैर में जो गोली लगी, तो वो उसने स्किन को चीर करके निकल गई। लेफ्ट चेस्ट में जो लगी, उसका तो अंदाजा ही अगले दिन लगा मुझे।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं एक डायरेक्टर जनरल इंसिग्निया, करीब एक इंच साइज का स्टील का एक होता है।
0: अच्छा।
1: कमेंडेशन
0: जी, जी,
1: मैं
0: जी,
1: अपने यूनिफॉर्म पे लगा रखा,
0: जो छाती पर लगता है।
1: जी जी जी, उस पे कंप्लीट बस्ट लगा, वो क्रश हो गया।
0: अच्छा।
1: और वो मेरे वाइटल पार्ट, जो कार्डिक एरिया है,
0: जी जी,
1: उसमें ना घुस के, यस, उसके साइड से फ्लैशी पार्ट को पेनेट्रेट करके पूरा निकल गया। तो सवेरे ओटी से मैं निकलने के बाद जब देखा स्टिचेस लगे हैं उस साइड में, तो मैंने देखा यहां क्यों स्टिच लगा है, तो देखा को तो पियर्स कर रखी है। और पेट में जो गोली लगी उसका तो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा, वो दाहिने से घुसी और अंदर ही लॉस्ड हो गई, लेफ्ट ग्रेटर सियाटिक नॉच में। तो मेरे इंटेस्टाइन में हैमरेज शुरू हो गया, उसका इमीडिएट कोई आइडिया लगा नहीं। डॉक्टर्स ने जब यूनिफॉर्म काटा, पूरे बॉडी को एग्जामिन किया मेडिकली, तो उन्होंने कहा कि एंट्री पॉइंट तो गोली का दिख रहा है, एग्जिट नहीं दिख रहा है। तो तुरंत एक्सरे हुआ, एक्सरे में गोली अंदर अटकी हुई। तो उन्होंने बोला कि एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, आपका एब्डोमेन हमें तुरंत ही फाड़ना पड़ेगा। मुझे लगता था मेरा दाहिना हाथ बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि मुझे दिख रहा था
0: जी,
1: लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर जो रक्त श्राव हो रहा था वो मुझे दिख नहीं रहा था। तो ओटी में लिया उन्होंने और मेरा एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी हुआ। मॉर्निंग में जब मैं करीब एनेस्थीसिया के होश से वापस आया
0: जी,
1: तो पूरी बॉडी कटी हुई कि कहीं पर यूरिन कैथेटर लगा है, ब्लड लाइन लगी है, इंट्रावेनस लगा है, ऑक्सीजन लगा है, और दाहिना हाथ फिक्सेटर पे है, लेफ्ट चेस्ट के तरफ पूरी सिलाई हो रखी है, पैर में स्टिचेज हैं, पेट पूरा फटा हुआ सामने से, उसके ऊपर टेप चिपका हुआ, और ड्रेन पाइप लगी है जो उसका खराब ब्लड होता है, बैंक के बाहर आता
0: जी।
1: है। फिर मैंने कहा ये तो मेरा पूरा ये पूरा भूत बना हुआ, शरीर में कहां कहां चोट लगा कुछ पता ही नहीं, लेकिन मैं जिंदा था, सांस ले रहा था, मैं पहचान सकता था, और मैं उसी इंजर्ड कंडीशन में चल के थर्ड फ्लोर से नीचे तक भी आया
0: जी। आपने जैसे बताया फायरिंग के दौरान,
1: नहीं तो कमरे में ट्रैप हो जाता मैं, मतलब मैं चल सकता था, समझ सकता था, सुन सकता था, बोल सकता था।
0: आपको ये अंदाजा नहीं था कि आपके ऑलरेडी सात गोलियां शरीर में?
1: सिर्फ हाथ का अंदाजा लगा, क्योंकि हाथ का विजिबल था
0: जी,
1: बाकी इंजरी विजिबल नहीं थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि, तो वाइफ जब मिलने आए तो उन्होंने मुझे वो डायरेक्टर जनरल का इंसिग्निया दिखाया कि ये क्रश हो गया है, और वॉशरमैन ने इस कपड़े को मॉर्निंग में ब्लड संक यूनिफॉर्म को जब धो रहा था तो उसकी पिन उसके हाथ में चुभी। आज भी मेरे पास वो यूनिफॉर्म है जिसमें एक एक होल है गोलियों के, और वो इंसिग्निया है जिसको मैंने एक जीवन रक्षक के तौर पर ड्राइंग रूम में लगा रखा,
0: जिसने आपका दिल बचाया
1: उसमें, यस, और उसमें एक गोली सफिशियंट थी शहीद होने के लिए,
0: सफिशियंट थी। बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जिंदगी और मौत के बीच फासला

0: बहुत ही कम था, बल्कि मैंने एक डेथ का इमेजिनेशंस भी दिमाग में आया कि आदमी फिर गोली लगता है तो प्यास लगती है,
1: अच्छा,
0: फिर वो शायद धीरे धीरे धीरे धीरे डाउन होने लगता है, फिर ये भी ख्याल आया
1: फेंट हो जाता है, फिर
0: हाँ कि मैं अगर कुछ दिन बाद मैं नहीं रहा तो बॉडी सवेरे कल घर गांव जाएगी, तो ऐसे होगा। मतलब ये जो कहते हैं ना कि मन है पाप शंकी, जो खराब ख्याल होते हैं मन में आने लगते हैं।
1: जी जी जी।
0: बट मैं चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि प्यास के अलावा तो कुछ फील हो नहीं रहा है, तो उम्मीद भी जारी थी। और उसके बाद जब अंदर हमने टेररिस्ट मार लिए, जिनका कि तुरंत तो आइडेंटिटी
1: नहीं
0: हो पाया, शिनाख्त बाद में हुई, और नीचे आए पूरा घर ट्रैप करके घेरा था। और हॉस्पिटल में अगले दिन पोस्ट सर्जरी जब डायरेक्शनल बीएसएफ मिले मुझसे, मेरी वाइफ आई, 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा ऑल केम टू सी मी इन आईसीयू, एंड फर्स्ट दे वर विद वेरी ग्रिम फेस कि वी आर वेरी सॉरी, तुम बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो, क्रिटिकल हो, लेकिन डॉक्टर्स हमने डिस्कस कर लिया, योर लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशंस। लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशन दोनों एक साथ बोलना मतलब बड़ा एक अजीब सा भी लग रहा था। मैंने कहा सर फॉर व्हाट? बोले कि You created the history and Ghazi Baba has been killed, main accused of Indian Parliament attack and whole country, whole nation and BSF is proud of you and BSF team. तो वो ऐसा रहा ना कि सारा दर्द काफू
1: खत्म हो गया, सही
0: नहीं लगा कि दर्द में तो हम थे
1: जी,
0: और दर्द तो होता ही है, ह्यूमन बॉडी पेन अगर है तो महसूस होगा, लेकिन जो एक कामयाबी का एक मैसेज मिला तो उसे लगा कि अगर आपका मिशन कंप्लीट होता है, अगर आप फाइनल फतह कर लेते हैं
1: जी, जी,
0: तो फाइनल फतह के साथ जुड़ी हुए जो दर्द है ना, वो कहीं कहीं उसका पेन कम हो जाता है
1: यस, उसका एहसास कम हो जाता है, क्योंकि वो जो अचीवमेंट थी वो इतनी बड़ी थी कि उसका शायद अंदाजा लगा पाना ही बड़ा मुश्किल होगा।
0: ड्रीम चेज फॉर एवरी फोर्सेज,
1: बिल्कुल,
0: हॉट केक इन द वैली,
1: और अगर वो वहां पर उस दिन बाई चांस बच जाता तो फिर पता नहीं और कितने आतंक के वो नमूने पेश करता।
0: 9 ईयर्स वैली में 1994 से 2001 तक ही वाज़ इन किलिंग स्प्री। एक आदमी ने लैंडमार्क अटैक किए, 1984 पहलगांव टूरिस्ट किडनैपिंग, 1995 अगस्त टूरिस्ट किडनैपिंग, IC-814 हाईजैकिंग,
1: और फिर
0: दिस सारी मर्क किलिंग्स फॉलोड बाय सुसाइड अटैक्स इन श्रीनगर सिटी, उसके बाद JNK असेंबली अटैक 1 अक्टूबर 2001, तो उसने तो अटैक के पराकाष्ठा पे था, इम्तहा बिल्कुल, कि अब पार्लियामेंट अटैक कर देना मतलब छोटा मोटा अचीवमेंट थोड़ी है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वो भी दिन में 11 बजे जब पार्लियामेंट सेशन में है
1: जी,
0: परिंदा नहीं पर मार सकता, तो इतना बड़ा प्लान,
1: इतना बड़ा आतंकवादी
0: से लाके 5 सुसाइडर को दिल्ली में रख के
1: जी,
0: लॉजिस्टिक्स वेपन आईडी एक्सप्लोसिव कार को सुसज्जित करना और सरेआम पार्लियामेंट पर टकराना, वो तो मुकद्दर थी कि वो अटैक फेल हो गया थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेज और पार्लियामेंट्री स्टाफ की, उन्होंने इतने बड़े एम्बेरसमेंट से बचाया जान पे खेल के, और उसमें 13 लोग शहीद हुए जिनको कि हर साल 13 दिसंबर को याद किया जाता है, तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी,
1: बहुत बड़ी सर। यहाँ पर
0: ये सब का सिर बहुत ऊंचा हुआ,
1: बिल्कुल,
0: देश का सर मस्तक ऊंचा हुआ,
1: बिल्कुल, और सर इसका सहरा, इसका ताज वो आपके सर पर सजा है,
0: मैं
1: क्योंकि
0: इसको अपॉर्चुनिटी मानता हूँ क्योंकि बीएसएफ एक टीम वर्क करती है,
1: बिल्कुल,
0: सीमा सुरक्षा बल ने मौका दिया सेकंड टेन्योर, इसको टीम वर्क और जान पे जूझने वाले लड़के,
1: बिल्कुल,
0: उस फ्लोर पे चढ़ने में पैर काम।
1: सर मुझे फौजी का जो जज्बा होता है ना, वो जो मर मिटने वाला देश पर जान निछावर कर देने वाला, वो चीज थी ना वहां पर।
0: क्या है जब इस तरह का मिशन होता है
1: जी,
0: और आप जब यूनिफॉर्म में होते हैं और इस तरह का मिशन होता है, तो सबसे पहला आपके मन में फिक्र होती है कॉमरेड्स की जो आपके साथ चल रहे हैं
1: जी।
0: अगर आपके पैर कमजोर हुए, आपके पैर थोड़े से
1: डगमगाए जी,
0: तो आपके जवान का पैर भी डगमगाएगा,
1: बिल्कुल,
0: वो हिम्मत पर चलने वाली फोर्स होती है,
1: तो आपके कंधों पर ही सबका एक तरह से जिम्मेदारी और भार।
0: बटालियन का हेड था
1: जी,
0: मेरे
1: आप लीड कर रहे थे,
0: लीड कर रहा था, मैं चाहता तो अपने किसी नंबर 2 को भेज सकता था, नंबर 3 को भेज सकता था,
1: लेकिन आप फ्रंट पर रहे,
0: खुद के रहने से
1: जी
0: मोराल बड़ा अप होता है,
1: बिल्कुल,
0: जवान बेपरवाह काम करता है, मौत के मुंह में भी घुस,
1: मौत के मुंह में घुस गया
0: और घुसे वो,
1: बिल्कुल,
0: गाजीबाग के माथे में घुसना कोई सिंपल,
1: और जैसे आपने बताया कि जो सिचुएशन थी वो तो बिल्कुल ट्रैप था,
0: 100% ट्रैप था, अदरवाइज वो मिलता नहीं, और वह मौका हम छोड़ देते तो शायद पूरी जिंदगी खुद को कोसते,
1: बिल्कुल,
0: कि इतना बड़ा टारगेट हमारा आज मिस हो गया, बट हो नहीं पाया वो, एंड वी आर प्राउड ऑफ दोस मोमेंट्स।
1: दुबे सर यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे मैसेज मेरे पास लगातार आ रहे हैं, मैं बीच में ले नहीं पाया, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। ये है यश शिंदे मुंबई से, संदेश टू सोल्जर्स लिख रहे हैं, जय हिंद वंदे मातरम, वतन की हिफाजत में जिन्होंने दी है कुर्बानियां, उनके जज्बे और शहादत को दिल से सलाम है, दहशत की हर एक साजिश को

0: काम किया है और करेंगे, हमारे देश का हर नागरिक अब सजग और तैयार है।
1: शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। ग्रेट वर्ड्स एंड अप्रिशिएशन टू द सोल्जर्स।
0: और सर, ऑस्ट्रेलिया से आया है जोया का, मेलबर्न से, ऑस्ट्रेलिया से। सर, आई सल्यूट फॉर योर करेज, यू आर मोस्ट करेजियस मैन आई हैव एवर हर्ड इन माय लाइफ, योर स्टोरी गिव्स मी गूज बम्स।
1: सो ग्रेट वर्ड्स, बिकॉज वी स्टिल रिमेंबर द ब्लडशेड इन ऑस्ट्रेलिया, द बाडी बीच वेरी रिसेंटली बाय द आईसी स्कॉडर्स। हम ऑस्ट्रेलिया में भी जो घटना हुई उसके दर्द को समझ सकते हैं, और इसमें आप हमारे साथ हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी। और एक और है सर ये मैसेज, मेरा भारत मेरा बहुत फेवरेट प्रोग्राम है, सैल्यूट अगेन एंड अगेन एंड दुबे सर को, आप जैसे जांबाज हैं तभी हम सेफ हैं, एकदम फिल्म की तरह स्टोरी लग रही है, आप हीरो हैं, सैल्यूट टू यू, रियली प्राउड ऑफ यू। मीरा सिंह है ये सिलचर असम से।
1: मीरा सिंह जी को मैं बताना चाहूंगा कि जब ग्राउंड जीरो फिल्म बन रही थी
0: जी,
1: तो इसकी स्टोरी जब स्टोरी राइटर लिख रहे थे तो वो जब प्रोड्यूसर के पास ले गए एक्सेल एंटरटेनमेंट के बाद, तो उन्होंने बोला यह स्टोरी फिल्मी से भी ज्यादा फिल्मी है, ये वर्ड उनके थे।
0: अच्छा।
1: उनके बिल्ला नंबर जो आप बिल्ला नंबर सास होता ना कि
0: जी जी बैजो
1: बच्चन,
0: हाँ अच्छा जी,
1: वो बिल्ला नंबर की स्टोरी आपने फिल्मों में देखी थी
0: जी,
1: बट इसमें एक्चुअली मेरे साथ हुई है, और वो रेप्लिका भी मेरे पास रखी है।
0: वो आपकी यादगार
1: काम में सारे होल काउंट कर सकते हैं आज के तारीख में भी, मैंने उसको धो के एक एक होल मार करके लगाया हुआ है।
0: मैं सर मैसेज आगे पढ़ूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि सर मैंने आपसे बात करने से पहले, इंटरव्यू से पहले आपके, मैंने वो मूवी देखी ग्राउंड जीरो, और वो इसीलिए मैंने देखी कि मैं कम से कम वो समझ पाऊं वो सिचुएशन क्या रही होगी। हालांकि फिल्म में काफी फ्रीडम होती है उसको बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने आप में जो सिचुएशन थी उसको समझना और उसको महसूस करना वो बहुत ही मतलब
1: फिल्म
0: अनबिलीवेबल,
1: काफी उन्होंने अथेंटिक बनाने की कोशिश की। फिल्म के अंदर देखिए फिक्शन का पार्ट तो होता ही है
0: जी,
1: क्योंकि वो सिनेमाटोग्राफी का एक फ्रीडम है और एक कमर्शियल पर्पस से बनती है, एक लार्जर व्यूअरशिप के लिए बनती
0: बिल्कुल।
1: है
0: सर एक चीज, लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, अक्सर हम लोग बात करते हैं कि फिल्म में रीटेक के चांसेस होते हैं, लेकिन जब आप फ्रंट पर थे और आप मुकाबला कर रहे थे इतने खतरनाक आतंकवादियों का, वहां पर तो कोई मतलब ही नहीं कि रीटेक होता क्या है।
1: 100% नहीं होता, वहां कैसे होगा, वहां कुछ नहीं होता,
0: वहां जान जाएगी या जान ली जाएगी,
1: वहां या तो सीरियसली इंजर्ड होने का खतरा होता है या मरने का, तीसरा कुछ नहीं।
0: या तो
1: मतलब दो ही चीज होती है, या तो आप सीरियसली इंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं या आप
0: जान से जाते हैं, शहीद होते हैं,
1: दो ही कैटेगरी होती है। मैं पहली वाली कैटेगरी में रहा, हमारी मुकद्दर अच्छी थी कि मैं इतने शॉट्स के बावजूद भी जिंदा रहा, और आज के तारीख में आपके सामने मैं एक लाइव प्रोग्राम का पार्ट हूं
0: और बहुत ही शानदार पर्सनालिटी के साथ। सर सर एक मैसेज और है, हाय सर मैं शशि, जय हिंद सर, मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं अभी क्लास 11 में हूं। सर ये एकदम बच्चा यंग लड़का है ये, कोई पीसीएम से हूं, जी के थ्रू कैसे करें, देश को महान बनाना चाहता हूं, मैं आजमगढ़ से हूं, यूपी से।
1: आपके अंदर ये जज्बात बड़े सही टाइम पे आया है
0: जी,
1: क्योंकि आप पीसीएम से हैं, 11th में हैं, दिस इज द राइट टाइम। आप पीसीएम बहुत बढ़िया रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक एक क्वेश्चन पेपर जो सीडीएस के हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से पब्लिश होता है, उसमें इसके क्वेश्चंस के काफी ज्यादा इसका रेशियो होता है। अगर आपका पीसीएम मजबूत है, आप पहले झटके में रिटर्न निकालिए, उसके बाद फिजिकल होगा, और आपके अंदर जो जज्बात फूटे हैं ना, बिल्कुल सही टाइम पे फूटे हैं,
0: बिल्कुल
1: प्रिपेयर, ऑल द बेस्ट।
0: और सर एक मैसेज और है, ये शबनम है, ये बोल रही है मैं शबनम हूं, बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से ही बात कर रही है। जय हिंद सर, आपको सुन रही हूं, बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसीलिए हम भारतीय हमारे जवानों पर फख्र करते हैं।
1: आप बहुत ही एक बड़े वीर पुरुष की कॉलोनी में रह रही हैं, जिसके नाम पे बीके दत्त
0: जी,
1: तो वो कॉलोनी बड़ी ही पॉश कॉलोनी है जोरबाग के पास, और उस कॉलोनी की मिट्टी में एक बहादुर आदमी की आत्मा है, और आपके तरफ से शुभकामना आ रही है, तो मैं खुद ही महसूस कर सकता हूं कि इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस, थैंक यू सो मच।
0: सर देश पर मरण मिटने का जज्बा तो हर देशवासी में, हर भारतीय में है, लेकिन कुछ ही है जो जज्बा अपना जाहिर कर पाते हैं, और जब आप मौजूद होते हैं, जब आप पूरे देश को, पूरी दुनिया को अपनी बात बता रहे होते हैं, तो वो जोश और बढ़ जाता है। और यहां पर हम बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स में, आज हमारा खास प्रोग्राम, हमारे खास मेहमान हैं फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे।

0: सर हम आगे और भी बात करेंगे, हमारे पास समय इतना तेज भाग रहा है कि हमें पता नहीं लग रहा है कि कब इतना वक्त गुजर गया, और अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी बाकी है। लेकिन आगे बढ़ूंगा मैं आपसे कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूंगा, आपका करियर कैसे शुरू हुआ, आप कैसे आए बीएसएफ में, वो सब जानेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी पसंद का एक गाना चलाया जाए। सर बहुत देर से हम बात कर रहे हैं
1: आप इस मौके पर, मुझे हकीकत फिल्म के गाने की याद आ रही है
0: जी,
1: के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा।
0: ये क्या बात,
1: फील्ड सिचुएशन का गाना है, जब सैनिक चाइना वार के समय एक डिफिकल्ट एरिया में बैठे हैं और उनको कोई एक्सेस नहीं है अपने घर द्वार का, तो उन्होंने वो अपने परिवार के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस गाने से बढ़िया मुझे कोई गाना नहीं लगता, क्योंकि मुझे भी जिंदगी में पिता बनने का जो पहला
0: सौभाग्य
1: चिट्ठी के जरिए आया था।
0: अच्छा, और आप अपनी ड्यूटी पर थे,
1: ट्रेनिंग में था, मेरा बेटा पैदा हुआ, उसके 45 डेज बाद में उसे मिल पाया
0: जी।
1: तो उसके पैदा होने का भी मुझे इतला खत के जरिए मिला 15 दिन बाद।
0: ओके,
1: बड़ा प्रेशियस खत है, मेरे ग्रैंडफादर ने लिखा था, बिकम फादर। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर फील्ड पे हैं, फ्रंट लाइन पे हैं, और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन देश की रक्षा की आ गई, तो वो पहले है,
0: पहले है।
1: तो हो मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, अगर आप सुना सकें।
0: बिल्कुल सर, आपकी पसंद का ये गीत, और हम वापस आएंगे और आपके मैसेजेस काम करेंगे इंतजार। आप सुन रहे हैं संदेश सोल्जर्स, आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे।

0: सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर, यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। शायद आपके साथ और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर DIG BSF श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे। और हम जो कहानियां सुन रहे हैं दुबे साहब से, वो सब सच्ची घटना है जिनको फिल्म में पिक्चराइज किया गया है। उनकी बायोपिक ग्राउंड जीरो आपने अगर नहीं देखी है तो उसमें आप देख सकते हैं, और वही सच्ची घटना जो एक एनकाउंटर किया गया एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी का। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से फोर्सेस में आए, मतलब BSF आपने ज्वाइन की, फैमिली में आपके परिवार में कहीं पर कोई आर्मी से या जुड़े हुए थे फोर्सेस से किसी भी तरह की?
1: देखिए, मैं एक अगर देश का उत्तर प्रदेश का नक्शा आप खींचें तो मैं एक बड़े मुश्किल इलाके में पैदा हुआ था, चोरी चूरा तहसील, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट।
0: अच्छा।
1: हिमालय नदी राप्ती के किनारे मेरा गांव, जो कि मानसून में करीब 4 महीने डूबा रहता था।
0: अच्छा।
1: कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, पेड़ों के नीचे प्राइमरी स्कूल।
0: अच्छा।
1: की पढ़ाई की आंवले के पेड़ के नीचे, उसके बाद की मिडिल स्कूल और टेंथ की पढ़ाई जो कि 13 किलोमीटर दूर की, 20 किलोमीटर दूर की, पैदल और साइकिल हमारी
0: पढ़ाई के लिए
1: होती थी।
0: अच्छा।
1: तो बहुत डिफिकल्ट एरिया में हम लोग पैदा हुए, और जिसके नदी नाले भरे हुए, मानसून के टाइम में आपको तैर के जाना है, तो इतने मुश्किलात में हमारे जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन एक थी, घर के अंदर पढ़ाई और देश प्रेम का जज्बा बहुत ज्यादा था। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी इंडियन नेशनल आर्मी में।
0: अच्छा।
1: थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, और वो 1940 में मेरे फादर को 12 डेज का छोड़ करके चले गए थे जब इस स्वाधीनता आंदोलन का बिगुल बजा। 12वें दिन गांव वालों को खाना वाना खिला के वो चले गए
0: दादाजी।
1: उसके बाद वो 1946 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद, जब इंडियन नेशनल आर्मी
0: जी
1: अपने एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं रह गई
0: जी,
1: उसके बाद वो मांडले जेल बर्मा में बंद रहे और एक साल के बाद छूटे और एक अज्ञात व्यक्ति की तरह से वापस गांव आए यूनिफॉर्म में। और मेरे फादर को उन्होंने 6.5 साल का देखा, जिसको 12 दिन का छोड़ के गए थे
0: जी।
1: और वो बड़े जबरदस्त नेशनल फर्वर के आदमी थे, देश प्रेमी, पूरे टाइम अपने सिद्धांतों पर रहना, पूरी जिंदगी लीड किया सोसाइटी को, कोई सरकारी पद नहीं लिया, कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं ली, खाली पब्लिक की सेवा की,
0: जनसेवा।
1: तो घर के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार की कहानियां वो
0: चारपाई
1: पर बैठ के सुनाते
0: अच्छा।
1: थे। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये एक जज्बात घर में था। और उतने मुश्किल जगह में पैदा होने के बावजूद भी पढ़ाई का माहौल घर में बहुत बढ़िया था। तो हम बस एक इत्तफाक लेके आया सीमा सुरक्षा बल में, तब ऐसे वैकेंसी निकली, पता चला कोई बॉर्डर की फोर्स है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगता है
0: जी,
1: एक्सेप्ट की नेपाल बॉर्डर का पार्ट
0: जी,
1: बाकी तो, और नेपाल बॉर्डर तो ओपन बॉर्डर है, तो उस पर कोई इतनी बड़ी सेंट्रल फोर्स डिप्लाय हो ये तो तब था ही नहीं। ये तो सन 2001 के बाद SSB डिप्लाय हुई है। तो बस सीमा सुरक्षा बल में ऐसे कदम घुसा हमारा, और फिर सीमा सुरक्षा बल ने पूरी जिंदगी बदल दी। उसने उसमें हम वो सब कुछ कर पाए जो शायद उस दुरूह गांव में, डिफिकल्ट गांव में रह के नहीं कर सकते थे, और शायद सीमा सुरक्षा बल ने मुझे वो दिया जो मैं किसी और जगह नहीं पा सकता था।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है।
0: बिल्कुल। तो आपके खून में, नस नस में ही देशभक्ति पहले से ही मौजूद थी, आपने जिस तरीके से बताया। सर, अब जैसे कोई भी बच्चा, कोई यंगस्टर, कोई जाना चाहता है BSF में, तो क्या तरीका हो सकता है जाने के लिए, उसको एंगेज कैसे हो सकता है, वो उसके अंदर शुरुआत कैसे कर सकता है?
1: BSF में एंट्री के लिए 3 लेवल है, एक ग्रुप सी लेवल, एक ग्रुप बी लेवल, एक ग्रुप ए लेवल
0: जी।
1: ग्रुप ए लेवल ऑफिसर्स की डायरेक्ट भर्ती होती है, जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है,
0: ठीक है।
1: उसके साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से उसकी वैकेंसी निकलती है, उसके लिए रिटन टेस्ट होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉलोड बाय मेन रिटन टेस्ट, फिजिकल इंटरव्यू, ये प्रोसेस है ग्रुप ए सर्विस का। ग्रुप बी का भी प्रोसेस यही है, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से उसकी वैकेंसी निकलती है, और ग्रुप सी यानी कांस्टेबल पद की भी वैकेंसी इन्हीं इसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से निकलती है। रिटन शुरुआती में आवश्यक है, और कुछ इसके फिजिकल मापदंड हैं जो किसी भी बच्चे को ट्राई करने से पहले अपने फिजिकल मापदंड और मेडिकल का एक प्रिलिमिनरी एग्जाम जरूर करा लेना चाहिए। हो सकता है कि वो रिटर्न बहुत अच्छा हो, लेकिन किसी स्टेज पे वो इन मापदंडों को पूरा ना करने की वजह से अगर छटेगा तो उसको तकलीफ ज्यादा होगी। तो उसको फिजिकल और मेडिकल पैरामीटर्स का इनफॉर्मल एक जांच कर लेनी चाहिए, और रिटर्न की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक पूल है सरकारी सर्विस का, जो कि भारत के करीब 15,000 किलोमीटर लैंड बॉर्डर पे आपको काम करने का मौका देता है।
0: बिल्कुल।
1: और 6 देशों के साथ जो भारत

0: सीमाएं हैं उस पे आपको वर्क करने की अपॉर्चुनिटी देता है,
1: बिल्कुल
0: और वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट एरिया पाकिस्तान और बांग्लादेश पे भी काम करने का मौका देता
1: मौका
0: है,
1: मिलता है
0: विदेश में जाने का मौका मिलता है।
1: जी। सर ये तो हो गई बात किस तरीके से कोई भी नया बच्चा ज्वाइन कर सकता है, कैसे एनरोल कर सकता है, लेकिन मैं आप यह भी जानना चाहूंगा, आपने न सिर्फ एक डायरिंग सोल्जर के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाई, इतना नाम आपने कमाया, इतने आपको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा भी गया, लेकिन इसके अलावा आपकी और बहुत सारी एक्सपर्टीज हैं जो मैं यहां पर बताना चाहूंगा अपने लिसनर्स को। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, मॉरल बिल्डिंग करते हैं, और आपका जो एक्सपर्टीज रहा है उसके अलावा आपने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसकी बहुत अच्छे से आपको समझ है, और उसकी आप गाइडेंस देते हैं जो नए सोल्जर्स हैं, जो नए ऑफिसर्स होते हैं, और उसके अलावा आपने ओवरसीज असाइनमेंट भी किए हैं, जैसे कि आप यूएसए, रशिया, कनाडा, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, जर्मनी और नेपाल वगैरह में भी आप गए हैं इन्हीं सब चीजों को बताने के लिए और शेयर करने के लिए।
0: इस इंजरी के बाद में दोबारा दूसरी इनिंग में अपनी शुरू किया
1: जी,
0: 26/11 का बड़ा अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ लश्कर तोयबा की तरफ से
1: जी।
0: उसके बाद से देश के अंदर एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए क्रिएट हुई
1: जी,
0: और उसने मुझको 9 साल सेवाएं मुझसे लिया। 9 ईयर्स के दौरान मैंने एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बड़ा क्लोजली देखा और उसी सिलसिले में मैं इन तमाम मुल्कों में
1: जी
0: सरकारी,
1: तो 25 साल जो सर आपने बीएसएफ में दिए उसके अलावा
0: ये 9 वर्ष एनआईए में,
1: अच्छा
0: 2 साल में बाकी एजेंसीज में भी काम किया
1: जी, जी,
0: और
1: जी।
0: कश्मीर मेरे चेस्ट से लगा हुआ है,
1: अच्छा
0: मेरे दिल से लगा हुआ है,
1: बिल्कुल।
0: मैं घूम घूम के वापस कश्मीर में ज्यादा काम किया,
1: अच्छा।
0: और काउंटर इंसर्जेंसी और नेशनल सिक्योरिटी मेरा कोर एरिया है,
1: कोर एरिया है
0: जिसमें मैं हमेशा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूं और अपने को अपडेट करने की कोशिश करता हूं
1: जी। सर आगे बढ़ूंगा मैं, और यहां पर और भी कुछ मैसेजेस आए हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सर एफएम रेनबो की ऑल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्रेटर नोएडा से गिरीश, आज का विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर को बहुत गौर से सुन रहा हूं, बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है, और मैं आज ही ये ग्राउंड जीरो मूवी देखूंगा। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद।
0: थैंक यू सो मच गिरीश, आप तो उस एरिया में रह रहे हैं जहां मैं रिटायरमेंट के बाद रह रहा हूं।
1: अच्छा,
0: थैंक यू सो मच। हिंडन नदी के आसपास आप रह रहे होंगे तो बढ़िया है, आप इस फिल्म को देखिए और उसको एंजॉय करिए, बड़ी प्रोफेशनल और नीट एंड क्लीन फिल्म है। फ्रॉम माई साइड बेस्ट ऑफ लक।
1: जी सर, ऐसे बहुत कम लोग आए हैं हमारे, ऐसे सोल्जर्स आए हैं हमारे संदेश सोल्जर्स में जिनकी लाइफ पर कोई बॉलीवुड की फिल्म बनी हो, फुल फ्लेज कमर्शियल मूवी, तो वो है ग्राउंड जीरो जो आपकी लाइफ पर बनी है।
0: ये सब भारत सरकार का क्रेडिट है, उन्होंने काफी दिन बाद इसके लिए आदेश दिया, गृह मंत्रालय के ऑर्डर से बनी है
1: जी,
0: और सरकारी आदेश के बगैर ये फिल्म इस लेवल की बन नहीं सकती थी
1: जी,
0: और बड़ा उन्होंने अथेंटिक बनाने की कोशिश की थी
1: बिल्कुल।
0: बट हमारे देश में पिछले अप्रैल में एक बड़ी भारी एक ट्रेजेडी हुई थी कश्मीर में, उस ट्रेजेडी के साये में फिल्म रिलीज हुई थी
1: okay.
0: तो थोड़ा सा सारा अटेंशन लोगों का मीडिया पे था, जैसा मेरा मानना है
1: जी।
0: 25 अप्रैल इसका रिलीज था, 22 अप्रैल को एक ट्रेजेडी हुई थी देश में
1: जी, जी, जी।
0: कश्मीर में, तो वो एक वजह है, बट अभी प्राइम पे तो बहुत अच्छा ये
1: जी। सर एक मैसेज और आया है, वो कुछ पंक्तियां आपकी तारीफ में कुछ लिखना चाहते हैं, यश शिंदे हैं ये। डीआईजी नरेंद्रनाथ दुबे सर, आपके सम्मान, कर्तव्य निष्ठा और व्यक्तित्व की प्रशंसा में कुछ पंक्तियां मेरी तरफ से कुछ इस कदर है कि वर्दी की आन देश की शान है, आप मजलूमों का संबल, जालिमों का काल हैं आप नरेंद्रनाथ सर, आपकी कर्तव्य निष्ठा को सलाम, इस खाकी के गौरव की सच्ची पहचान है आप, चेहरे पर तेज, आंखों में ईमानदारी का नूर है, आपके आने से हर जुल्म खाक में मिलने को मजबूर है,
0: क्या बात है, क्या बात।
1: नरेंद्रनाथ सर का नाम ही ऐसा है जिससे अपराधियों का हौसला चकनाचूर है।
0: जबरदस्त आपने लाइन लिखी, आप तो आशु कवि हैं, आप बड़े जज्बाती हैं
1: बिल्कुल,
0: देश प्रेमी हैं, थैंक यू सो मच फॉर सच ए ग्रेट वर्ड।
1: और सर यही जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो हमारा फ्यूचर, देश का फ्यूचर है, जो देश को भविष्य की तरफ, तरक्की की तरफ लेकर के जाएंगे, हम बस प्रोग्राम खत्म होने पर है तो हम चाहेंगे कि सर कुछ ऐसी बात कहें जो लोगों को इंस्पायर करें, जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप गाइड करते हैं लोगों को, आप अपने एक्सपीरियंस से लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, तो यहां पे भी आप जरूर अपने
0: युवा पीढ़ी को ये बताना चाहूंगा कि आपकी एक जिंदगी है, उसको आप अपने तरीके से शेप करिए, उसको बनाइए, बिल्ड करिए, आपके अंदर भी कुछ अरमान है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ पर्पज है अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा देश एक ऐसे जियोपॉलिटिकल एरिया में बसा हुआ है कि जिसका अगर हिमालय उसको टीका लगाता है तो हमारा जो है भारत देश, आपको जो है आप समुद्र देख लीजिए कि हिंद महासागर उसके पैर धोता है, तो ऐसे देश के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, हमारे बॉर्डर्स बड़े ही टफ हैं, तो आप अपनी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और नेशनल सिक्योरिटी को भी मन में ध्यान में रख के चलिए, शायद ये हमारे लिए बड़े काम की चीज होगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, अपना समय दिया, और आप जिस शख्सियत से बात करना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रहे श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे, फॉर्मर DIG BSF।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और अधिक विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे तथा इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन FAO एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वेन ओ यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान बताया गया कि रेलगाड़ियों में हाल ही में हुई आग की कई घटनाओं की असामाजिक तत्वों के शामिल होने का पता चलता है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल RPF इनकी सक्रियता से जांच कर रही है। बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG का पर्याप्त भंडार है और रिफाइनरियां संयंत्र पूरे मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। LPG का उत्पादन बढ़ा दिया गया है और प्रतिदिन रिफाइनरियां संयंत्र में लगभग 46,000 से 47,000 टन LPG का उत्पादन हो रहा है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर मंत्रालयों के बीच हुई एक ब्रीफिंग में संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने पुष्टि की कि इस क्षेत्र में सभी मौजूद भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में ई सिगरेट की तस्करी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 करोड़ रुपए की 3 लाख इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जब्त की हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये प्रतिबंधित ई सिगरेट चीन से मंगवाई गई थी।

चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। ये सम्मेलन 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होना था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये फैसला लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, मैं रेशमा लेकर आई हूँ आपके लिए एक कार्यक्रम सीरियलाइट्स। आपके शहर की हलचल, संस्कृति, मौसम, ट्रैफिक और खास दिनों की बहुत ही खास बातें आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो बस हमारे साथ रहिए और सुनते रहिए कार्यक्रम सीरियलाइट्स आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर।

और हौले हौले ये गर्मी भी चली जाएगी, जिसका सामना आजकल हम सभी कर रहे हैं। जी हाँ, गर्मी अपने पूरे तेवर पर है। हालांकि बीच बीच में ये बात सच है कि कभी कभी हल्की सी हवा का झोंका आ जाता है जो हमें राहत देता है। ऐसे मौसम में पानी और ठंडक का ख्याल रखना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, और अगर हम आज की बात करें तो अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो लगभग 43 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच आज का जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। इसलिए हम सबको ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दिन में हम सभी ने बहुत तेज धूप देखी है, अल्ट्रावायलेट इंडेक्स बहुत कहते हैं कि वेरी हाई स्तर पर रहा। इसलिए दोपहर के समय आपसे हम कहेंगे कि धूप में निकलने से बचें। अगर बहुत ज़रूरी काम ना हो तो भाई घर पे ही रहें, घर पर ही आप रेनबो आपके साथ हैं, आप रेनबो के साथ रह सकते हैं, अपने अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुन सकते हैं, लेकिन धूप से बचने की ऐसी सलाह दी जा रही है। और रही बात रात के मौसम की, तो रात में आसमान साफ रहेगा लेकिन गर्मी में बहुत अधिक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। लिहाजा आपसे हम फिर यही कहेंगे कि कोशिश कीजिए कि अपना ख्याल रखें, क्योंकि लू चल रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। जितना हम घर में रहेंगे उतना ही हम अच्छा फील करेंगे। तो बस, और जहां तक अच्छे फील करने की बात है तो हम तो कोशिश करेंगे आपके साथ के अच्छा आपको फील करा सकें, अच्छा संगीत सुना सकें, क्योंकि ये है कार्यक्रम सिटी लाइट। और सिटी लाइट में जहां हम अपने शहर की बात करते हैं, वेदर की बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं, ट्रैफिक की बात करते हैं, वहीं सुपर संगीत भी हमारे साथ होता है। तो चलिए एक और गीत सुनते हैं, उसके बाद मैं लौटती हूँ आपके पास। कहीं जाइएगा नहीं, कार्यक्रम चल रहा है सिटी लाइट्स।

0: तो आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिटी लाइट्स। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों की यादें, आवाजों और सुनहरे सफर को हमारा एक कार्यक्रम समर्पित है, आकाशवाणी एट 90। तो चलिए आपको हम ये कार्यक्रम सुनवाते हैं, आकाशवाणी के बारे में जानते हैं, लेकिन आपको भी हमसे वादा करना है कि आपको कहीं जाना नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है सैटेलाइट्स और आपके साथ बहुत सारी ढेरों बातें भी करनी है हमें। जी हाँ, और आइए अब सुन लेते हैं आकाशवाणी एट 90।
1: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। श्रोताओं, आज बात होगी ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब पड़ा, वर्ष 1956 में। जी हाँ, वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी का शाब्दिक अर्थ है आकाश से आने वाली आवाज, वॉइस फ्रॉम द स्काई। ये नाम रेडियो की उस शक्ति को दर्शाता है जिसके माध्यम से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के संदेश देश के हर कोने तक पहुंचते हैं। आज आकाशवाणी 23 भाषाओं और 189 बोलियों में प्रसारण कर देश की लगभग 98% आबादी तक अपनी आवाज पहुंचा रहा है। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एट 90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

जी हाँ, आकाशवाणी का रेनबो चैनल इस वक्त आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है सिटी लाइट्स। और सिटी लाइट्स में जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम आपके साथ बात करते हैं अपने दिल्ली शहर की। दिल्ली शहर के बारे में आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली शहर में आजकल चल क्या रहा है। तो ढेर सारी बातें आपके लिए, फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, आकाशवाणी का रेनबो चैनल इस वक्त आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है सिटी लाइट्स। और आइए अब सिटी लाइट्स में आपके साथ बात करते हैं दिल्ली की सड़कों की, ताकि आपका सफर आसान हो सके। आपको बता दें कि इस वक्त अगर दिल्ली की सड़कों की ही बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि शाम के पीक आवर्स की रफ्तार जो इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देती है वो वाकई कुछ अजीब हो जाता है माइंड, जब हम देखते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर इतना ट्रैफिक है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाई ये ऑफिस टाइम है, ऑफिस टाइम होने की वजह से कई मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक धीमा इस वक्त है। जी हाँ, खासकर आईटीओ की बात करें, रिंग रोड की बात करें, आश्रम की बात करें या फिर धौला कुआं की बात करें और नोएडा लिंक रूट्स पर भी इस वक्त ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। और साथ ही अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वहां भी यातायात प्रभावित इस वक्त नजर आ रहा है। अगर आप सफर पर निकल रहे हैं इस वक्त या अगर आप इस वक्त कहीं फंसे हुए हैं तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं और ताकि आप सुरक्षित घर पहुंच सकें। और थोड़ा अगर आपको इस वक्त कहीं निकलना है तो मार्जिन लेकर आप निकल सकते हैं, थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर चलें और ट्रैफिक अपडेट पर भी आप थोड़ी अपनी नज़र बनाए रखें, ताकि आपकी जो ये शाम है, ये जो दिल्ली वालों की शाम होती है, ये और ज़्यादा खूबसूरत हो सके। और अगर आप ऑफिस से घर जा रहे हैं इस वक्त तो भाई ज़रा पेशेंस के साथ, क्योंकि अगर आप इन्हीं रूट्स पर हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया है तो यकीनन इस वक्त यहाँ ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आप हमारे साथ हैं तो हम तो कोशिश कर ही रहे हैं कि आपको संगीत सुनवा सकें, ताकि संगीत आपको माइंड फ्रेशनेस दे सके, आप खुश रह सकें और हमारे साथ रह सकें। तो बस रहिए हमारे साथ, सिटी लाइट्स सुनते रहिए और हाँ, आसान रहे आपका सफर, ऐसे हम दुआ करते हैं आपके लिए।

बिल्कुल, ये गीत जब जब सुनते हैं तो वाकई बहुत बहुत ही अच्छा लगता है और यकीनन आपको भी बहुत बहुत अच्छा लगता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगीत और संवेदनाओं से सजा एक विशेष प्रस्तुति आपके लिए लाए हैं अपनी आकाशवाणी। सुनिए ये गीत सिर्फ

जी हाँ जनाब, यह है आकाशवाणी और आकाशवाणी के रेनबो चैनल के साथ इस वक्त आप जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम चल रहा है सैटेलाइट्स और सैटेलाइट्स में हम आपके साथ बातें करने की कोशिश कर रहे हैं ढेर सारी, और कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा संगीत आप तक पहुंचा सके। और साथ ही साथ हम आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि आज विश्व चाय दिवस है। जी हाँ, विश्व चाय दिवस। अब आप सोचेंगे कि भाई वाह क्या बात है, चाय और वो भी विश्व चाय दिवस। जो लोग चाय से करते हैं प्रेम, जो लोग नहीं रह पाते चाय के लिए, उन्हीं के लिए समझ लीजिए कि आज का दिन मनाया जाता है। तो भाई जब चाय दिवस मनाया जा रहा है तो भाई एक दूसरे को चाय पर आप बुला सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं चाय पर, क्योंकि कहते हैं चाय सिर्फ चाय नहीं होती बल्कि चाय मिलनसारी होती है, चाय दोस्ती होती है, चाय बातें करने का एक मौका होता है, एक मुलाकात होती है। तो भाई अगर आप चाहें तो आज का दिन आप बहुत अच्छे से मना सकते हैं। आपको बता दें कि हर वर्ष 21 मई को इंटरनेशनल टी डे

मनाया जाता है। इस दिन का जो उद्देश्य है वो चाय के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व को उजागर करना है। चाय केवल सिर्फ चाय नहीं है, एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लोगों को जोड़ने वाली एक परंपरा के तौर पर इसको देखा जाता है, एक भावना के तौर पर इसको देखा जाता है। और यहां मैं आपको ये भी बताते चलूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाय दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2005 में भारत और अन्य चाय उत्पादक देशों द्वारा की गई थी। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में 21 मई को आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल टी डे घोषित किया और इसकी पहली यूएन मान्यता प्राप्त ऑब्जर्वेशन जो हुई 2020 में हुई थी। तो कहा जाता है कि ये जो इंटरनेशनल टी डे है, इसके मनाने के पीछे कई सारे उद्देश्य थे। जैसे तो हमने आपको बता ही दिया है कि भाई अपनी जो संस्कृति है, जो क्योंकि जो मिलनसारी है, एक साथ बैठने का एक मौका है, उससे भी हमें जोड़ती है और साथ ही साथ चाय उद्योग से जुड़े किसानों और मजदूरों के योगदान को भी सम्मान देना है आज का दिन। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जब चाय की बात आई है तो चलिए ये वाला गीत सुनते हैं और आपसे तो हम इतना ही कहेंगे कि अगर आप घर पर हैं तो आप चाय बनाइए, चाय पीजिए और एक सिप मेरे नाम का भी जरूर पी लीजिएगा।

0: जी हाँ, आकाशवाणी का रेनबो चैनल इस वक्त आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है सिटी लाइट्स, और सिटी लाइट्स में आपके साथ होंगी ढेर सारी बातें, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा और सुनते रहिएगा कार्यक्रम सिटी लाइट्स।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: जी हाँ, आकाशवाणी का रेनबो चैनल इस वक्त आप सुन रहे हैं और सिटी लाइट्स आप सुन रहे हैं। बातें आपके साथ और करनी है वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, तो कहीं जाइएगा नहीं, चंद ही लम्हों में हाजिर होती हूँ।
1: केले का छिलका सड़क पे, ना भाई ना। चिप्स का खाली पैकेट खिड़की से बाहर, ना भाई ना। चलिए अपने शहर, गली, मोहल्ले, घर और दफ्तर को साफ और सुंदर बनाएं और डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कचरा डिब्बे में जाएगा तभी तो भारत साफ नजर आएगा। तो कचरे को बोलो बाय बाय और स्वच्छ भारत को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
0: तो वही सिटी लाइट्स में आइए, अब बात कर लेते हैं आपके साथ संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस यानी वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। आपको बता दें कि ये दिवस आज यानी 21 मई को मनाया जाता है हर वर्ष, और इसका जो उद्देश्य है दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं, परंपराओं और जीवन मूल्यों का सम्मान करना तथा आपसी संवाद और शांति को बढ़ावा देना है। और इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को ने सांस्कृतिक विविधता को मानव विकास और शांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना था। इसी सोच के तहत 2002 से इस दिवस को मनाया जाता है। जी हाँ, अलग अलग संस्कृतियों के बीच समझ और सम्मान को बढ़ाती है ये आज का दिन जो है, और संवाद के माध्यम से शांति और सौहार्द भी स्थापित करता है आज का दिन। तो देखा आपने आज कितना खास दिन है, और वैसे भी खास दिन होगा ही क्योंकि हम हैं आपके साथ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और कार्यक्रम है सिटी लाइट्स।

0: तो सिटी लाइट्स इस वक्त आप सुन रहे हैं और सिटी लाइट्स में आपके साथ ढेर सारी बातें, कुछ और बातें आपके साथ करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, जल्द हाजिर होती हूँ।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

और अब आइए बात करते हैं कुछ कला प्रेमियों की। जी हाँ, अगर आप अपनी कला से थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं, आप रंगों की भाषा जानना चाहते हैं, लकीरों से बात करना चाहते हैं, तो हम आपसे जरूर कहेंगे कि आप त्रिवेणी कला संगम जा सकते हैं। आपको हम बता दें कि अगर मंडी हाउस क्षेत्र में जो त्रिवेणी कला संगम है, वहाँ जो कहना चाहिए जो स्थान है, वो कलाकारों, कला प्रेमियों और विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। और जब बात हम आपको बता ही रहे हैं त्रिवेणी कला संगम की, जब बात रंगों की हो रही है, जब बात हो रही है लकीरों की, और ये तो हम सभी जानते हैं कि हर रंग हमसे कुछ कहता है, और जब भी हम रंगों के करीब जाते हैं तो रंग हमसे ढेर सारी बातें करते हैं, क्योंकि हमारी जीवन के हर एक हिस्से में इन रंगों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता है। हर रंग एक ना एक कहानी कहता है। तो अगर आप रंगों से बात करना चाहते हैं, रंगों की भाषा सीखना चाहते हैं, तो आपसे हम कहेंगे कि त्रिवेणी कला संगम आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर सोलो एग्जीबिशन नजर आएगी रमेश राणा जी, जो इसके चित्रकार हैं। बहुत ही प्यारी एग्जीबिशन है, मैंने खुद देखी है। और आपको यहाँ बता दें कि 4 मई से लेकर ये आपको एक बहुत ही शानदार, पूरे महीने आपको ये मिलने वाली है, तो आप जा सकते हैं। और एक सुंदर, अगर आप रंगों की भाषा जानना चाहते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं, क्योंकि उनके जो कैनवास है उसमें प्रकृति बहुत करीब से महसूस की जा सकती है, तो आप वहां जाइए और देखिए। और त्रिवेणी कला संगम में कुछ और आर्ट एग्जीबिशन भी आपको नजर आएंगी, क्योंकि वहां आम तौर पर जो चित्रकलाएं हैं वो बहुत करीब से आप उनको देख सकते हैं, इन सभी कलाओं को। फिलहाल तो मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत ये सोचकर सुनवा रही हूं कि आप बेहद इसे पसंद करेंगे। इस गीत को सुनिए, और मैं हूं आपके साथ अभी सिटी लाइट्स पे।

मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं आरज़ू के साथ ऐसे ही आपके साथ बात करती रहूँ, बहुत अच्छे अच्छे गीत आप तक पहुँचाती रहूँ, लेकिन वक्त कह रहा है कि मैं आपसे यहीं इजाज़त लूँ और वादा करूँ एक और मुलाकात का, तो बहुत जल्दी मिलने आऊँगी। सिटी लाइट्स में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल। बाय बाय, टेक केयर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा, ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1,000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। महाराष्ट्र में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने दक्षिण कोरिया के शैक्षणिक संस्थानों के साथ आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ महाराष्ट्र की साझेदारी से राज्य के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: तो ये है आकाशवाणी रेनबो और आकाशवाणी रेनबो पर आपके साथ इस समय, जी हाँ इस समय जो कि समय है मैसेज मसाला मिक्स का। मैं हूँ रमा यादव और मैसेज मसाला मिक्स में आपके मैसेजेस का इंतज़ार करूँगी। यहाँ पर टॉपिक जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिले हैं ना, तो कुछ ऐसा लिया है जो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा फिलोसफिकल भी है और बोलें तो इमोशनल भी है। तो बंधन, अब इसका एक्सप्लेनेशन आपको करना है। टॉपिक दे दिया है मैंने आपको, 9868107070 वो नंबर है जहां पर आपको करना है मैसेज इस विषय पर। अभी तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी, गाना चलाऊँगी और उसके बाद आकर आपसे बात करनी शुरू करूँगी और आपके मैसेजेस लेना शुरू करूँगी। और मैसेज जो हैं वो आपके आने लगे हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं अपनी स्क्रीन पर।

बिल्कुल, अगर आप साथ हैं तो फिर तो क्या कहना, और आप तो साथ हैं ही ना। देखिए कितने प्यारे प्यारे जो मैसेजेस हैं वो आपके आ चुके हैं, और आप साथ हैं तभी तो ये मैसेजेस मेरे साथ हैं। ये आपकी आवाज़ अच्छी लग रही है, गाने भी अच्छे हैं, लेकिन मैंने ना आवाज़ का पूछा अभी ना गानों का पूछा, मैंने एक टॉपिक दिया बंधन। दानिश खटौली, रमा कैसी हैं आप? गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो। बट बहुत दिन बाद आए हो, क्या है, प्लेलिस्ट अच्छी है। अभी प्लेलिस्ट बजी का, ये तो एक गाना ही था, मेरे विषय पर तो आपने कुछ नहीं कहा। रिश्तों में समय सीमा बहुत ज़रूरी है, और एक दूसरे से विश्वास भी बहुत ज़रूरी है। विश्वास ही हमें एक दूसरे को मजबूती देता है और हौसला देता है। रिश्ता भाई बहन का हो, या माता पिता का, या पति पत्नी का, या दोस्त का, भरोसा बहुत ज़रूरी है। सोनू लिख रही हैं बिजनौर से, और मैसेज मसाला मिक्स, गुड इवनिंग दोस्त, वेलकम बैक। सौरभ बनेजा गाजियाबाद से, थैंक यू दोस्त, बंधन पर एक कविता ही लिख डाली और मुझे पता है, और मुझे पूछ रहे हैं कि इतने दिनों आप कहाँ थी। बंधन सिर्फ डोरी का नाम नहीं, ये रिश्तों का प्यारा एहसास है, जो जोड़ दे दिल से दिल को, वही जीवन का सच्चा विश्वास है। माँ की ममता, पिता का साया, दोस्ती का अपनापन न्यारा है, प्रेम सम्मान और विश्वास का बंधन दुनिया में सबसे प्यारा है। मोहम्मद सरफराज आलम, कितने साल हो गए आपको मैसेज पढ़ते पढ़ते। रमा यादव जी, शुभ संध्या। कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं, जो बिन बांधे बंध जाते हैं वो जीवन का सुख देते हैं। नियमित श्रोतागण हैं आप, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक कैथल हरियाणा से, मधु नायक और धन्यवाद भी लिख रहे हो। तो ये तो यही है ना, इस दुनिया में आते हैं उसके बाद बंध जाते हैं, लेकिन वही है कि कौन सा बंधन है, इस चीज़ को तो ध्यान में रखना पड़ेगा। और बंधन में भी फ्रीडम हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती। 6:15 है, मैसेज मसाला मिक्स है, मैसेज मसाला मिक्स में मैं रमा यादव हूँ आपके साथ। बहुत दिनों बाद आई हूँ, इसलिए मैसेज कम मत भेजना, मुझे बताइए। अरे बंधन तो कहाँ से जाकर नहीं जुड़ता ना, कई बार हम बांध नहीं देते किसी को अपने साथ, पक्षी को रोज़ आता है, पानी पीता है हमारे साथ, बन जाता है ना प्रेम से, लेकिन फिर उड़ता भी है और फिर वापस भी आता है। बातें तो बहुत तो हो सकती हैं इस विषय पर, लेकिन जब हम बातें करें तो उसको ना मान भी लेना चाहिए, है ना। तो अभी तो मैं गाना सुनाऊंगी और गाने के साथ रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत दिनों बाद आई हूँ, कोई बात नहीं, मैसेज तो भेज दीजिए, डिलीट मत करिए भेज के। हाँ बिल्कुल, देख रही हूँ कुछ लोग डिलीट कर रहे हैं, कुछ लोग भेज रहे हैं। तो आकाशवाणी रेनबो है ये, और मैसेज मसाला मिक्स पर एक प्यारा सा गाना, फेवरेट सॉन्ग ऑफ माइंड।

आकाशवाणी रेनबो और आपसे भी तो हमारा ये बंधन ही है ना, जिसकी वजह से हम चले आते हैं। और ये एक इबादत ही तो है ना, कितने बरसों की।

ये इबादत हो गई आपके साथ चलते चलते। कुछ बंधन बाय बर्थ होते हैं एंड कुछ जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तब मिलते हैं जिनसे फ्रेंड्स देन लाइफ पार्टनर एंड उससे रिलेटेड पर्सन, सभी बंधन बहुत ही प्यारे होते हैं। ये लिख रही हैं शैलजा नीम राणा से। हेलो मैम, हाउ आर यू? मीना फ्रॉम खरगांव मध्य प्रदेश से। बंधन तो वो रिश्ता होता है जो दिल से जुड़ा होता है, उसको कोई नाम नहीं होता। जैसे कि हमारे घर के सामने रोज दो बछड़े दरवाजे पर आते हैं और हम बड़े ही प्यार से उन्हें रोटी देते हैं, बड़ा ही सुकून मिलता है उन्हें देखकर। बिल्कुल, जब वो बड़े हो जाएंगे तब और भी सुकून मिलेगा। कार्यक्रम पेशकर्ता आदरणीय प्यारी दीदी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। आप कैसे हो दीदी? बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, हमें बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत सुंदर प्रस्तुति, थैंक यू सो मच। बंधन का अर्थ है किसी को स्वयं को प्रेम विश्वास जिम्मेदारी या सीमाओं में बांधना। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है, आध्यात्मिक बंधन भी हो सकता है। रघुनाथ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से ये लिख रहे हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता और हिना। दानिश का मैसेज आ गया खटौली से। रमा, रिश्तों में बंधन का होना ज़रूरी होता है, जैसे आप सब आरजे और हमारे बंधन और प्यारे भी दोस्त हमारे हैं। थैंक यू सो मच, स्वीट वॉइस आपने लिखा। मोहम्मद सरफराज आलम जो कि हर दर्शना बाजार अररिया बिहार से लिखते हैं, थैंक्स आरजे रमा यादव जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। आपका संदेश पढ़ते पढ़ते पुरानी यादें ताजा हो गई, मुझे लगभग दो दशक हो गए आकाशवाणी एफएम रेनबो इंडिया से जुड़े हुए, मैं आपको भी उसी दौर से सुनता आ रहा हूँ। पुराने श्रोताओं में शामिल होना मेरे लिए गर्व और अपनापन दोनों की बात है। रेडियो से रिश्ता आज भी दिल से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल हम सब एक दूसरे से बहुत दिल से जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांत नगर सोनीपत से लिख रहे हैं आदरणीय रमा जी, सादर प्रणाम। बंधन बनाना आसान है, उनको निभाना मुश्किल। बंधन खराब एक पल में किए जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जबकि उनको बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। बंधन दूर रहने से नहीं बल्कि कड़वे बोलने से टूटते हैं, समाप्त होते हैं। आपकी संध्या और जीवन बहुत शुभ हो, सुखद हो, कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत मैसेज, और इसके साथ ही चलते हैं एक और गाना सुन लेते हैं ना, मटर गश्ती खुली सड़क पर।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।

बिल्कुल, ये है आकाशवाणी रेनबो और आकाशवाणी रेनबो पर ये है मैसेज मसाला मिक्स, और मैसेज मसाला मिक्स में बातें आपकी हो रही हैं क्योंकि मैसेजेस आपके हैं। रमा यादव जी, आपकी प्रस्तुति बेहद पसंद आ रही है। जो प्रेम में ना बन पाया उसे रिश्तों में बांधना किस लिए, जिसे रत्ती भर भी फर्क ना पड़ता हो उसे दुख बांटना किस लिए, सहज समन मेरा बस दीवाना हो गया, ये समझना तेरा तो तेरे बस का नहीं तो समझाना किस लिए। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक कैथल हरियाणा से आप लिख रहे हो। नहीं, कोई बात नहीं, समझाया जा सकता है। बाबा जी, ये क्या आजकल आप सब ने कविता करनी शुरू कर दी है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये प्रेमचंद प्रेमी जैतपुरा धामपुर से, बाबा जी की प्यारी हूँ, नन्ही दराज दुलारी हूँ, हर पल घर में हंसती रहती हूँ, मैं फूलों की क्यारी हूँ, मम्मी जब भी बोनी लाएं घर में मैं छुप जाती हूँ, बाबा जो भी टॉफी लाएं पल में चट कर जाती हूँ, दादी हलवा खूब बनाए मेरे मन को भाता है, बड़ी बहन को दूमे कैसे मुझसे ना बच पाता है, तितली उड़े गगन में उन सबसे मैं न्यारी हूँ, बाबा जी की प्यारी हूँ, नन्ही राज दुलारी। मुझे लगता है मैसेज थोड़ा सा छोटा हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं ना जो मैसेज करते हैं हमारे। गुड इवनिंग, मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं भटिंडा से हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरी सिस्टर के साथ मेरा बड़ा ही प्यारा सा बंधन है, बिल्कुल ऐसा ही बंधन मैं अर्थ नेचर और एनिमल के साथ भी फील करता हूँ। आई लव मदर अर्थ नेचर एंड एनिमल्स एज मच एज आई लव माई फैमिली। थैंक यू सो मच अरुण कुमार, बहुत खूबसूरत मैसेज है आपका। मोहम्मद इम्तियाज, जवाहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से, रमा जी जब आपको सुनते हैं तो मनीषा जैन की याद आ जाती है, बंधन के बारे में कहना चाहता हूँ, ये बंधन ही जो मुझे 30 सालों से आकाशवाणी से जोड़ रखा है। क्या बात है। हेलो मैम, आई एम भुवनेश फ्रॉम अशोक विहार दिल्ली, हाउ आर यू ऑन टुडेज टॉपिक। आई वुड लाइक टू से दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशंस, फर्स्ट द रिलेशंस विच वी get automatically by the blessings of God, like our family where there is love of our parents and our friends, and second which we build ourselves over time on the earth with our behavior. My relation with FM Rainbow is a very good example of this, main janti hu aur isiliye gana chala rahi hu khas aapke liye.

सो मैसेज मसाला मिक्स है और आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं. और यहाँ पे पता है बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो इतनी अच्छी लगती हैं कि मैं क्या बताऊँ. तो मुझे बीच में एक ब्रेक लेना पड़ेगा, फिर से म्यूज़िकल ब्रेक लेना पड़ेगा. और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं जो मुझे बहुत प्यारे हैं. लेकिन आपकी और मेरी ये जो बातें हैं ना, ये बहुत खूबसूरत हैं. ये ऐसे ही चलती रहें इसके लिए डेडिकेट कर रही हूँ ये गाना मैं आपको.

0: कुछ कहता है ना इस गाने का म्यूजिक, पता नहीं कितना कुछ कहता है, ऐसा लगता है कि इसे दिल में बिठा ले, है ना। उनके चेहरे को देखकर चांदनी की याद आती है, उनकी जुल्फ लहराए काली घटा छा जाती है। आदिल कुमार कमर गुन्नौर से रंगे महफिल में आपको प्यार। अरे ये मैंने लगता है काफ़ी पुराना मैसेज मैंने ले लिया। नीचे वाले मैसेज की ओर जाती हूँ। आपने मेरे लिए तो सिर्फ ये लिखा है कि गाना बहुत अच्छा है, रेडियो की दुनिया की आवाज़ सिर्फ आवाज़ें नहीं बल्कि हमारी यादों, अपनापन और सुनहरे दौर का हिस्सा है। लगभग 2 दशकों से रेडियो सुनते सुनते इन आवाज़ों ने जीवन के अनेक पलों को यादगार बनाया। आज पुराने दिनों की याद करते हुए इन सभी को दिल से सलाम। मोहम्मद सरफराज आलम ने नाम लिखे हैं, आरजे फखरुद्दीन का, आरजे नरेंद्र जोशी का, प्रदीप शर्मा का, अयूब खान का, श्वेता शर्मा का, प्रीति मोहन का, सुजाता जी का, दिलीप सिंह का, राजेश आहूजा का, अंजुमन अली खान का, मनीषा दुबे का, श्वेता सिंह का, बबीता जैन का, आजम शाह का, राजश्री त्रिवेदी का, आन चित्रा का और लालिमा ने जॉटैंग का। सच में बहुत अच्छा लगा आपके ये नाम पढ़कर मुझे। ये बंधन ही तो है ना जो बन गए यहाँ पे। रमा जी राम राम। तन को झुलसाने वाली इस गर्मी में मैसेज मसाला सुनकर राहत महसूस हो रही है। FM रेनबो देहरादून से आलोक पवार और मिनी, हाँ, द ग्रेट बंधन इज विद आकाशवाणी विच गिव अस प्लेजर इन एवरी आस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ट्रू। शुभ संध्या नमस्कार, मैं लिंगराज सिरदार छत्तीसगढ़ से। बंधन के लिए कुछ लिखा है हमने, जब आप अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं लेकिन अपने मन को भय मोह और आलस्य से पूरी तरह आज़ाद कर लेते हैं तो आप बंधन में रहकर भी पूरी तरह मुक्त आज़ाद होते हैं। बंधन वो धागा है जो अगर प्रेम और जिम्मेदारी का हो तो जीवन को संवारता है। ठीक कह रहे हैं आप। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो। मैसेज मसाला मिक्स शो लाजवाब चल रहा है। गीत संगीत हमें बेहद पसंद आ रहा है। कैलाश खेर का गीत बहुत अच्छा लगा। प्रेजेंटेशन ये क्या है, वैजनी नीलम स्वाति और केशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। थैंक यू सो मच लिखने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले लो।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब

सालों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने। हम आप और विदुषी शुभा मुदकर।

मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मैसेजेस आ रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि आई एम फ्रॉम केरला, आई एम सीन आकाशवाणी करवार कर्नाटका, आई वुड लाइक टू नो वेदर गेस्ट हाउस इज अवेलेबल। ओ ये तो मैं नहीं बता सकती जी आपको। रमा जी, आपके कार्यक्रम में हमेशा की तरह गीतों का चयन काबिल तारीफ और आपकी मधुर पेशकश कार्यक्रम को आखिर तक रोचक बनाए रखती है। अनिल मोहन, उषा मोहल, टिल्लू नायक, मधु नायक लिख रहे हैं, गुड इवनिंग, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। रंजीत कुमार मंडल, सिक्टी, अररिया बिहार से, मैसेज मसाला मिक्स, जय हिंद जी, सुबह संध्या। इकबाल राय, गुलाटी, भगवान नगर कॉलोनी, पीपली, कुरुक्षेत्र से, मैं पिछले 5 दशक से रेडियो सुनता आ रहा हूँ, आपको सैल्यूट करती हूँ, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। यह सब बंधन ही बंधन है, पूरा संसार मोहमाया है, केवल भगवान की भक्ति से ही सभी का कल्याण होगा, ऐसा भी लिख रहे हैं। मधुर आवाज़ में अपनापन का संसार रखती हैं, हर दिल तक पहुँचने का सुंदर सा हुनर रखती हैं। मोहम्मद सरफराज आलम, शुक्रिया।

मैं सज मसाला मिक्स में आरजे साहिबा को प्यार भरा नमस्कार। गुनौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली, शुक्रिया, धन्यवाद। और ये बस इतने मैसेज थे। अब मैं एक घंटे बाद मुलाकात करूंगी, बीच में वेस्टर्न म्यूज़िक का कार्यक्रम होगा। और इतने में आपको ये वाला जो गीत है लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, जो कि मुझे लगता है एक संध्या की उपासना भी है, इसके साथ छोड़कर जा रही हूँ। मिलूंगी जल्दी ही 8 से 9 में म्यूज़िक मस्ती में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार

0: संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की पांच देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कुआन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रों के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकरोधी कार्यसमूह की बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आतंकियों को पनाह देने और समर्थन करने वालों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर बल दिया। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया गया। ये सम्मेलन 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होना था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को

जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं, तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।

0: Yes, that was Dr. Jones lifting the energy up this Thursday evening for you on 102.6 MHz Akashwani FM Rainbow. And it's time for us to take a break and we'll be right back. Please stay tuned in.
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक, हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: Welcome back. As promised, we are back after the break. And this is me, Akanksha Mishra. And you're tuned into 102.6 MHz Akashwani FM Rainbow on the program called Hits and Memories. And we are playing nostalgic music for you to make you go down that beautiful, happy memory lane of nostalgia, of course. And coming up next is another energetic track, which was a very famous sort of called a love anthem of that time, and this is Bon Jovi with the song called You Give Love a Bad Name. Enjoy.

0: What a blast from the past, wasn't that? That was a very high energetic track from Bon Jovi. And it's time for me to take a message which we have from M. Rajkumarji. And he shares his memory with Akashwani. And he says that he remembers taking the metro in Delhi to work, and he could peacefully listen to Akashwani FM Rainbow. And of course, he said that he wasn't able to travel on bike or car because of the traffic. Well, Rajkumarji, I think that is a very wise choice to take public transport that saves pollution as well, and of course saves time. So thanks for sharing that memory with us. And time by the studio clock is almost 45 minutes past 7 p.m. which means that we are stepping into the last quarter of the show, and it's also time for us to take the last break of the show. Please do stay tuned into the station of the nation, and we will be right back.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आपकी वाणी आकाशवाणी।

मिस। सुरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराध्य।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: म्यूजिक मस्ती आकाशवाणी रेनबो पर और म्यूजिक मस्ती में सुन रहे हैं मस्त मस्त गाने और ये गाने जो सुनवा रही हूँ मैं आपके साथ रमा।
6: Yo, what up? This is Big Snoop Dogg. Represent that Punjabi. Hey, yo, hit 'em with this.

0: real cool like.
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए

0: भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: लेफ्ट राइट परेड थम। जवान पीछे से गाना गाएगा।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: केले का छिलका सड़क पे, ना भाई ना। चिप्स का खाली पैकेट खिड़की से बाहर, ना भाई ना। चलिए अपने शहर, गली, मोहल्ले, घर और दफ्तर को साफ और सुंदर बनाएं और डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कचरा डिब्बे में जाएगा तभी तो भारत साफ नजर आएगा। तो कचरे को बोलो बाय बाय और स्वच्छ भारत को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।

म्यूजिक मस्ती से मैं चलती हूँ, मुलाकात करूंगी आपसे जल्दी ही। और अब आपकी याद आती रही, मैं ताहिर हसन आपके साथ रहेंगे, मैं जरूर जल्दी से मिलने आऊंगी। तो अभी रमा को इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। कभी यूं भी तो हो, दरिया का साहिल हो, पूरे चांद की रात हो और तुम आओ। कभी कभी जनाब याद किसी आवाज की तरह नहीं आती, बस एक हल्का सा एहसास बनकर आ जाती है। दिन भर हम कितनी भी बातों में उलझे रहें, लेकिन शाम ढलते ही कुछ चेहरे, कुछ लम्हे खुद ब खुद सामने आ जाके बैठ जाते हैं। ना उन्हें बुलाना पड़ता है, ना रोकना पड़ता है, वो बस आकर थोड़ी देर दिल के साथ साथ बैठ जाते हैं। और शायद इसीलिए कुछ गाने हमें सिर्फ अच्छी नहीं लगते, वो हमें किसी अपने की याद भी दिला जाते हैं। इसी नर्म एहसास के साथ प्रोग्राम शुरू होता है, आपकी याद आती रही, आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जो कि है दिल से दिल तक। मैं हूं आपके साथ ताहिर। आइए शाम को थोड़ा सा जीने की कोशिश करते हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आपकी याद आती रही। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ताहिर, और आप सुन रहे हैं इसे 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जो कि है दिल से दिल तक। कभी कभी एक छोटी सी बात पूरी शाम का मूड बदल देती है। ना कोई वजह होती है, ना कोई प्लानिंग होती है, बस दिल अचानक थोड़ा सा धीमा हो जाता है और लगता है जैसे वक्त ने हल्का सा पॉज ले लिया है। ऐसे ही है ना, बताइएगा।

कुछ लोग जिंदगी से दूर चले जाते हैं, लेकिन उनकी आदतें नहीं जाती, उनकी याद भी कभी नहीं जाती। कभी किसी हंसी में उनका असर रह ही जाता है और फिर समझ आता है ये कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस चुप हो जाते हैं।

कभी एक गाना सीधा दिल के उसी कोने तक पहुंच जाता है जहां हम रोज नहीं जाते, और फिर बिना कुछ कहे बहुत कुछ महसूस होने लगता है। शायद म्यूजिक की असली खूबसूरती भी यही है।

शाम का वक्त भी बहुत ही अजीब सा होता है। दिन भर का शोर धीरे धीरे कम हो जाता है और दिल को अपनी बात सुनाई देने लगती है। ऐसे वक्त में कुछ धुनें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस होती हैं और बहुत ध्यान से महसूस की जाती हैं। दिल ही महसूस करता, हम नहीं करते।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी।

0: चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो, मैं हूं आपके साथ। तारे प्रोग्राम चल रहा है, आपकी याद आती रही, और ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। और उसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं हमारी ऐप के माध्यम से, जिसका नाम है न्यूज ऑन AIR। तो बहरहाल ये प्रोग्राम जारी है, जिसे कहते हैं आपकी याद आती रही। बताइए किसकी याद आ रही है आज।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक, मैं हूं आपके साथ। ताहिर प्रोग्राम चला है, आपकी याद आती रही। कभी लगता है कि सब कुछ बदल गया है, फिर एक छोटा सा लम्हा आता है और पता चलता है कि कुछ एहसास अभी भी बाकी है। बस उन्होंने अपनी आवाज धीमी सी कर ली है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
4: आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। मैं हूं आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चला है आपकी याद आती रही और प्रोग्राम आखिर की तरफ है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और कुछ मुलाकातें बहुत छोटी सी होती हैं जैसे आपकी, हमारी और आपकी रही, लेकिन उनका असर बहुत लंबा रहता है। इंसान आगे बढ़ जाता है, वक्त भी निकल जाता है, पर कुछ पल दिल के कैलेंडर से कभी नहीं निकलते। ये कैलेंडर जो है ना, आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, लेकिन अकेले रहने का सिलसिला कभी ठीक नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर कोई आपके दिल के बहुत करीब हो तो हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है यहाँ उसके साथ आप रह लें और पूरी जिंदगी रह लें।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक, मैं हूं ताहिर। और अब कहना होगा मुझे कि जी बहुत जल्दी मुलाकात होगी, बहुत जल्दी इन द सेंस 11 बजे ही प्रोग्राम रहेगा रंगे महफिल। अभी फिलहाल जाने का तो दिल नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। सुनते रहिए एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस तथा एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। कृषि मंत्री ने कहा कि यह पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 230 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में 3 विकेट पर 32 रन बना लिए थे। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन में अश्मिता चाहिला मलेशिया की गो चिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लाइन हॉजमार्क से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर ट्यून्ड इनटू 102.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम रेनबो ऑन द प्रोग्राम कॉल्ड ऑल दैट जैज़। एंड दिस इज मी आकांक्षा मिश्रा होस्टिंग फॉर द नेक्स्ट 55 मिनट्स टू हेल्प यू डियर लिसनर्स अनवाइंड योर डे। You know, psychologists often say that jazz is the musical equivalent of a deep breath. It's been proven to lower your cortisol and also spark creativity in the brains. So yes, let's start the journey to help you unload the week's stress. It's a Thursday evening. And let's start with a track by Ella Fitzgerald, which was released in the year 1968. This track's name is called It's Only Love. Please enjoy. Thank you.

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: वेलकम बैक, इट्स 10:30 PM विच मीन्स वी आर हाफ वे थ्रू द शो ऑन द प्रोग्राम कॉल्ड ऑल दैट जैज़ विच इज कमिंग टू यू लाइव ऑन द स्टेशन ऑफ द नेशन 102.6 MHz आकाशवाणी FM रेनबो एंड दिस इज मी योर होस्ट फॉर दिस शो आकांक्षा मिश्रा। Well, talking about jazz, have you ever wondered that why a sudden saxophone solo, it makes you feel alive? Or how such a complex piano riff can completely clear your cluttered mind? Well, it turns out that science has an answer, and jazz music is considered a high-intensity workout for your brain. You know, neuroscientists and researchers have found out when jazz musicians improvise, their brains behave exactly as if they're having a spoken conversation. And the brain switches off its inner critic entirely. It drops its guard and self-doubt, and it's just pure, unfiltered creativity. But you know what? It isn't the musicians just who benefit really from the music. It's you, dear listeners, who benefit from such beautiful, silky, soft music. And therefore, lined up, the next track for you is by the artist Nat King Cole. The track's name is called Mona Lisa. Please enjoy.

होगी, शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम अराध्य।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: वेलकम बैक। यस, आकाशवाणी इज कंप्लीटिंग 90 ग्लोरियस ईयर्स नेक्स्ट मंथ एंड वी आर वेरी इलेटेड दैट यू डियर लिसनर्स हैव बीन पार्ट ऑफ जर्नी एट आकाशवाणी एंड थैंक्स एवरीबडी फॉर ट्यूनिंग इन ऑलवेज एंड ऑल फॉर लवली मैसेजेस एंड being the dearest of listeners that we can only hope and imagine for. And a gentle reminder, this is the program's name is called All That Jazz, and this is me, Akanksha Mishra, hosting the show. And the program comes to you live every Thursday from 10:05 to 11 p.m. And the next track we've queued up for you is called Like a Lover. So please do enjoy the track and stay tuned in.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी

खाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपकी वाणी आकाशवाणी। वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। रात फिर अपनी नरमी के साथ उतर आई है और दिन भर की भाग दौड़ के बाद अब दिल को थोड़ा सा ठहरने का वक्त मिला है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिन की रोशनी में नहीं कही जाती, वो रात का इंतजार करती हैं। एक धुन, एक शेर या किसी गजल का कोई मिसरा, और दिल धीरे से अपनी बात कहने लगता है, जैसे कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए। मैं हूं आपके साथ ताहिर और आप सुन रहे हैं रंगे महफिल, आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पे, जो कि है दिल से दिल तक। तो जनाब, इस रात को जरा आहिस्ता आहिस्ता जीते हैं, गजलों, अल्फाजों और उन एहसासों के साथ जो अक्सर खामोशी में ज्यादा सुनाई देते हैं।

कभी कभी जिंदगी एक हिडन में बहुत कुछ सिखा देती है। सुबह किसी बात पर दिल मुस्कुरा होता है और शाम तक वही दिल थोड़ा सा खामोश हो जाता है। शायद इसी का नाम जिंदगी है, जहां खुशी पूरी तरह रुकती नहीं और गम पूरी तरह जीत नहीं पाता।

इंसान दोनों को साथ लेकर चलता है, कम से कम कोशिश तो यही करता है। थोड़ा हंस के, थोड़ा चुप रहकर, थोड़ा सा रोकर।

कभी कभी साहब इंसान रोता किसी एक लम्हे पर नहीं है, वो उन सारी बातों को रो देता है जिन्हें वो बहुत अरसे से अंदर संभाले बैठा हुआ होता है। जिंदगी चलती रहती है, लोग मिलते रहते हैं, मुस्कुराहटें भी साथ साथ चलती रहती हैं, मगर कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो दिल के किसी कोने में खामोशी से ठहरे रहते हैं, और फिर एक शाम, एक धुन, एक लफ्ज, सब कुछ फिर से महसूस होने लगता है। शायद इसीलिए कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, वो दिल को भी दिल की बंद किताब में छुपे रहते हैं और दोबारा से खोल देते हैं।

0: कुछ लोग हमारी जिंदगी में बहुत देर तक नहीं रहते, लेकिन उनका असर बहुत देर तक रहता है। कभी उनकी बात हंसा देती है, कभी वही बात रात को सोचने पर मजबूर कर देती है। और अजीब बात यह है कि इंसान उन एहसासों को छोड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि वही तो उसके सबसे सच्चे लम्हे होते हैं। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्दी वापस आते हैं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: हाय
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
5: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक, मैं हूं आपके साथ। ताहिर प्रोग्राम चल रहा है रंग महफिल। कभी कोई पुरानी सी बात अचानक याद आ जाए तो दिल पहले मुस्कुराता है, फिर थोड़ा सा रुक जाता है, जैसे किसी ने एक ही पल में खुशी भी दे दी हो और हल्का सा दर्द भी। शायद कुछ यादें इसीलिए खास होती हैं, वो हमें पूरी तरह से उदास भी नहीं रहने देती और पूरी तरह से बेपरवाह भी नहीं रहती।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

रात का वक्त सच में अजीब होता है। दिन भर हम जिन बातों को इग्नोर कर देते हैं, रात में धीरे धीरे सामने लेकर आ जाते हैं। कोई चेहरा, कोई आवाज, कोई छोटी सी मुलाकात, सब याद आने लगता है। और फिर लगता है कि दिल के पास अपनी एक अलग ही दुनिया होती है, जहां हर एहसास अभी भी जिंदा रहता है।

सही बात है, जब हम चले जाएंगे तो हम सोचेंगे कि हमने क्या खोया और क्या पाया। फिलहाल तो यही कहूंगा कि पिछले एक घंटे में हमने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत पा लिया, बहुत सोच लिया। अब यही वक्त होगा कि कहूंगा आपसे खुदा हाफिज, शब बख़ैर, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी किसी अच्छे मूड पर। ये वही वक्त है जब हमें थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन हाँ, आपको नहीं लगना चाहिए क्योंकि आप जुड़े रहते हैं हमेशा आकाशवाणी FM रेनबो के साथ। फिलहाल ताहिर को दीजिए इजाज़त इसी वादे के साथ कि बहुत जल्दी वापस आऊँगा, और ख़ास तौर पर उन लोगों का ख्याल रखिए अपना, जो आपका बहुत ख्याल रखते हैं, और अपना और ख़ास तौर पर ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरोरे को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरोरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। 3 सदस्यों की एसआईटी का नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का यह फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे

बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोली चलाई थी। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे ही स्थिति पूरे हफ्ते बनी रहेगी। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स 140 रन पर ही सिमट गई। शिवम दुबे ने सबसे अधिक 47 रन बनाए। गुजरात की ओर से मोहम्मद सिराज, राशिद खान और कगिसो रबाडा ने 3-3 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान दिल

0: डिश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

किशोरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराधना।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बनें। हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अल बद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। 3 भारतीयों सहित 274 पर्वतारोहियों ने नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर एक दिन में सबसे अधिक बार चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कीर्तिमान बनाने वाली टीम में शामिल 3 भारतीय पर्वतारोही तुलसी रेड्डी पालपुनुरी, संदीप अरे और अजय पाल सिंह धालीवाल हैं। नेपाल के कामी रीता शेरबा ने भी एक नया कीर्तिमान बनाया है। उन्होंने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर अपना ही कीर्तिमान तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी स्थिति पूरे हफ्ते बनी रहेगी। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स 140 रन पर ही सिमट गई। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी रेनबो पर अब समय है कार्यक्रम सुहानी रात का, तो आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम।

हमेशा ये फरियाद करते रहोगे रहोगे हमेशा ये फरियाद करते रहोगे। करो आज तौबा तौबा करो आज तौबा मुसीबत कर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में

0: द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर भी बल दिया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाईं। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। भारत और फ्रांस के बीच 8वां समुद्री सहयोग संवाद कल पेरिस में आयोजित किया गया। बैठक की सह अध्यक्षता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर तथा फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने की। बैठक में समुद्री डकैती, समुद्री आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध मछली पकड़ने जैसी गैर कानूनी समुद्री गतिविधियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अंक तालिका में बेंगलुरु पहले और हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। शीर्ष दो में बने रहने के लिए यह मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। वहीं अहमदाबाद में कल हुए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। गुजरात के 230 रन के लक्ष्य को चेन्नई की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी रेनबो पर हमारे स्टूडियो में वक्त हुआ है 2:06 और 8 सेकंड्स। समय है कार्यक्रम भुलाए न बने के लिए, तो आइए सुनते हैं कुछ कभी न भुलाए जा सकने वाले गीतों को।

सुरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वसाधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराध्य।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। भारत और फ्रांस के बीच 8वां समुद्री सहयोग संवाद कल पेरिस में आयोजित किया गया। बैठक की सह अध्यक्षता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर तथा फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने की। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में आपसी समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। भारत और फ्रांस ने स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। दिल्ली में अगले महीने की 1 तारीख को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन फिलहाल टाल दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि अफ्रीकी संघ और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ विचार विमर्श के बाद 4थे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को भी आगे की तारीख पर आयोजित करने का फैसला लिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। लगातार 5वें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बुंदेलखंड के ज्यादातर इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं अहमदाबाद में कल हुए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और

0: प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर बल दिया गया। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। दिल्ली में अगले महीने की 1 तारीख को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन फिलहाल टाल दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि अफ्रीकी संघ और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ विचार विमर्श के बाद 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को भी आगे की तारीख पर आयोजित करने का फैसला लिया गया है। भारत और फ्रांस के बीच 8वां समुद्री सहयोग संवाद कल पेरिस में आयोजित किया गया। बैठक की सह अध्यक्षता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर तथा फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने की। भारत और फ्रांस ने स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अंक तालिका में बेंगलुरु पहले और हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। शीर्ष दो में बने रहने के लिए यह मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। वहीं अहमदाबाद में कल हुए मुकाबले में गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। गुजरात के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस हार के साथ ही चेन्नई प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: सुरों की शाम होगी यादगार, आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित।
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे। कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने। हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं 8:00 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडिस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडिस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कॉम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री एलेक्सिस वाफियाडिस, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी साथ है। राष्ट्रपति बनने के बाद श्री निकोस की ये पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों की यात्रा के बारे में नई दिल्ली में कल श्री गोयल ने कहा कि ये यात्रा समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने जांच दल को 25 जून तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। परिवार ने आरोप लगाया था कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है और तथ्यों को छिपाया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इसे मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। दिल्ली में 1 जून को होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन

स्थगित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि अफ्रीकी संघ और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ विचार विमर्श के बाद चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को भी बाद में आयोजित करने का फैसला लिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा। वहां कल का अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अंक तालिका में बेंगलुरु पहले और हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। अहमदाबाद में कल गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: प्रातः के 5:05 और 37 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम आराधना।